0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, When they are under stress, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

02 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: देखो मेरा रोल डिपेंडेंट था
1: उनके कहने
0: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल। तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
1: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
0: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन? एक दिन नहीं करते।
1: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
0: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
1: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
0: तो एक घंटा, एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील। आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, आई गेट सक्ड इन टू योर रोल। यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस। आई कुड बी सेइंग दिस, बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग, आई एम थिंकिंग लाइक दिस। बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे
1: एक्चुअली,
0: सोच तो सारा
1: मेरे दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ।
0: बात सोचने की हो रही है, जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में। तो एक घंटा अगर ट्राई करे कि जो है जैसा है, एवरी वन इज ओके, एक घंटा आई एम नॉट गोइंग टू जज, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे सक, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this. So it's not everyone sucking, I am giving my energy
1: out
0: to everyone. Yeah, I'm giving it out. And after giving it out, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं। और जब judgmental हो रहे हैं तो quality of thoughts positive भी नहीं है ज्यादा, it's more of हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते, तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है। फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ। मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स
1: सो मच आउट।
0: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें।
1: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से
0: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा। एक घंटा सोचेंगे क्या हो,
1: क्या फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा?
0: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
1: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता,
0: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। तो जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन, राइट ना वी आर नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन। सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग, सी नो वन शुड डू इट अननेचुरली कि ओ मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना। आप अपना नॉर्मल चलो जैसे आप चल रहे हो, सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो।

0: तो ये जब हम एनर्जी पहली बात जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिमुलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है एंड ये स्टिमुलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं। लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
1: रिजेक्शन है,
0: रिजेक्शन मिला। मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी। अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए। लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो। हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है। अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है। ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है। तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड। जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करे, एक स्टेप पीछे जाए। ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम। एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है। तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजे कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट। हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिस एम्पावर करता है। आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए, आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा। और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो,
1: उससे भी पहले अपने आप को तो भरे, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, एंड वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप।
0: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
1: आई एम नॉट बैड,
0: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट। आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है, और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
1: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग,
0: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस। तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट। जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं। आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
1: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
0: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना, जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ। एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस। तो साइलेंस है एक तो यहां से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस। तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे। कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट से नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल, लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस। ये एक्सपीरियंस करना है। क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट। दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट। 25 टू 30 थॉट्स
1: पर मिनट,
0: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में। इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में। और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000

0: 40,000 to 50,000 thoughts hum create karte hain. This is my production. Ye jaise ek company hai aur uski ye production hai. 40,000 thoughts a day. Quality?
1: It's all waste actually. maximum times, you know.
0: Usme kai thoughts bahut powerful, positive hote, kai negative hote hain, gussa, resentment, chinta. Kai necessary hote hain ki ye karna hai, aaj ye jaan. Aur bahut sare waste hote hain. Waste matlab bahut zyada jo beet gaya ya bahut zyada uske bare mein sochna jo abhi hua hi nahi, to usme koi power nahi hai kyunki it is not in my control, neither the past nor the future. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 टू 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फेक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कम्फर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कम्फर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल है, कंटेंटेड है. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ ना वो ठीक हो गया. आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीजों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती है.
1: तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम फिर वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
0: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ न कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना?
1: इसको बाहर नहीं जाने देना.
0: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए, क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में. फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवर सेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
1: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
0: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया
1: तो जब वो नहीं होगी तो
0: हाँ. और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
1: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो
0: इट गिव्स अ वेरी
1: पिट ऑफ माय स्टमक. ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
0: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई दे
1: शरीर पर.
0: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है? नहीं. डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल? एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है. Physiology पर तो दिखाई दे रहा ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा? Situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ

0: 24 आवर एक्सपेरिमेंट, 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल, और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत इजी है। इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक, ट्रैफिक में अचके ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये, तो ये है सारी सारा दिन। सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना, एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से, इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना, एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव। डेफिनेटली,
1: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है, एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है। तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा, और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, खुला निमंत्रण हर बार की तरह। तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। सीधा शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
0: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें। लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बींग। आई, द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, हैज अ चॉइस। मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी। चाहे कोई कुछ भी कहे, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग। ओम शांति,
1: ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, इन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नीयत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी. ओम शांति. इन दिनों हम बात कर रहे हैं क्रोध की, यानी कि एंगर की. हमने ये देखा कि इमोशन, जिसे हम अभी तक बहुत अपनी ताकत मान लेते थे, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी है और उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको आने से पहले एक पॉजिटिव फीलिंग को रख सकते हैं. हमने ये भी जाना कि जिस एंगर को हम कई बार जस्टिफाइड मानते थे, कई सारी गलत मान्यताओं को लेकर हम उसे जस्टिफाई करते थे या उसे सही मानते रहे थे, वो कितना अनहेल्दी हो जाता है हमारे लिए. और एक कारण कि हम क्रोध क्यों करते हैं वो भी सामने आया था, क्योंकि जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं, जब वैसा नहीं हो रहा होता कोई व्यक्ति या सिचुएशन, तब हमें गुस्सा आता है. उसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं कि क्यों गुस्सा आता है. इस पर और किस तरह से इस क्रोध को कम किया जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए आइए मुलाकात करते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी से. ओम शांति. ओम शांति सिस्टर शिवानी. एक कारण जिस पर हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था वो जो था कि जिस नजर से हम दुनिया को चाहते हैं, जो चाहते हैं हम कि ऐसा हो, जब नहीं हो रहा होता ऐसा, तब गुस्सा आता है. मुझे अभी भी एक वो फिल्म याद है कि अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. तो उसके अलावा, ये तो एक बात हुई, उसके अलावा और भी कई कारण है.
1: ये ही सबसे बड़ा कारण है और यही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आप हर टाइम पर देखेंगे. अंदर यहाँ पर हमने एक इमेज बनाई हुई है कि चीजें कैसी होनी चाहिए, या लोगों को कैसा होना चाहिए, या लोगों को मेरे साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए. इसकी एक इमेज हर एक की मेरे अंदर बनी हुई है. अब जो आउटर रियलिटी होगी वो सेम तो होने वाली नहीं है. तो जब भी वो आउटर रियलिटी मेरी वो इमेज के साथ मैच नहीं करती है, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होना शुरू होता है, विच इज अ साइन दैट मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी अंदर की इमेज को जो आउटर रियलिटी हो रही है उसके साथ एडजस्ट कर पाऊं. मैं अपनी अंदर जो इमेज बनाई है उसको पकड़ कर रखा है
0: किसी भी सिचुएशन
1: किसी भी व्यक्ति को. आपको इस तरह से बिहेव करना चाहिए, ये मैंने इमेज बनाई है. अब आप थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, या आपका काम करने का तरीका अलग है, या आप शायद उतना एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, वट एवर डिफरेंट रीजन्स. तो यहाँ अंदर डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं है कि मैं अपनी इमेज को चेंज कर सकूं जल्दी से.
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इससे मुझे एक बात याद आती है कि हमने जब पहले बात की थी ईगो की बात की थी, अगेन दैट वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माय ओन सेल्फ. सो जो इमेज है, मुझे लगता है जो फिक्स चीजें हम कर लेते हैं अपनी लाइफ में वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है कहीं ना कहीं.
1: तो फ्लेक्सिबिलिटी फिनिश हो जाती है ना. आपको इस तरह से काम करना चाहिए था, नाउ दैट्स एन इमेज. अगर आप थोड़ा सा भी उससे कुछ डिफरेंट कर देते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट, देन आई विल गेट एंग्री. तो एंगर हमेशा इसी बात से होगा कि आप वैसा क्यों नहीं कर रहे जैसा मैं चाहती हूँ, या आप वो क्यों कर रहे हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता.

0: I want you to be the way I want you to be.
1: Mm-hmm.
0: I want things to be the way I want them to be. और जब वो उस तरह से नहीं होंगे तो मेरा गुस्सा करना जायज है. तो उस समय पर अगर हम देखा जाए, क्योंकि अंदर ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस समय पर इसको टेम्पररी पागलपन हम कह सकते हैं. दैट्स वाई एंगर इज यू नो मैडनेस, इट इज टेम्पररी मैडनेस. हमेशा अगर हम सारा दिन में चेक करें कि जब भी गुस्सा हमें आता है तो तीन चीजों के साथ हमारा गुस्सा होता है, हमारा अंदर युद्ध एक चल रहा है. या तो जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, उसके साथ हमारा गुस्सा है. क्योंकि जब भी किसी सिचुएशन पर हमें गुस्सा आएगा तो सिचुएशन तो जस्ट
1: गुजर चुकी है.
0: अब उसके गुजरने के बाद हम गुस्सा कर रहे हैं. मीन्स व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड.
1: Oh, that's wonderful. Before we go ahead, I think इसको रब इन ऑन कर लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अभी हमारे साथ भी, दर्शकों के लिए भी, मेरे लिए भी शायद, कि इम्पॉसिबल है किसी भी सिचुएशन या किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करके उसे चेंज करना.
0: Absolutely. It's impossible.
1: And we always think it's the easiest thing.
0: It's impossible. ये असंभव है. बिकॉज वही जो सेकेंड चीज, एक चीज हम करते हैं, हम पास्ट को सारा दिन कंट्रोल कर रहे हैं. सेकेंड, हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि दूसरा, पहली चीज मेरी एंगर होगी एक सिचुएशन पर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, सो आई एम फाइटिंग इनसाइड विद दैट. सेकेंड, आई एम फाइटिंग अगेंस्ट पीपल इंटरनली. वाई? क्योंकि लोगों को वो करना चाहिए जो मुझे चाहिए. तो जब वो वैसा नहीं करते तो मुझे गुस्सा आता है. तो मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ? दूसरे लोगों को. विच इज अगेन इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज द डिक्टेटर्स, जो भी डिक्टेटर्स भी आज तक हम सुनते हैं, थिंक ऑफ द वर्स्ट डिक्टेटर, दे कैन नॉट कंट्रोल पीपल. बिकॉज हरेक की अपनी पावर है सोचने की और डिसीशन लेने की. हरेक अपने अनुसार डिसीशन लेता है. हमें लगता है कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं. वो चूज कर रहा है डर में जीने का. उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चूज करेंगे कि वो डर की जीवन नहीं जिएंगे. इफ आई हैव द पावर टू कंट्रोल, देन आई शुड बी एबल टू कंट्रोल
1: एवरीवन.
0: देन व्हाई ओनली अ फ्यू? तो नोबडी कैन कंट्रोल पीपल. इसलिए लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. दैट विल कॉन्स्टेंटली क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट. अंदर एक डिस्टर्बेंस सारा दिन चलना रहेगा और ये फिर कॉन्स्टेंट रहेगा. ये ऐसे क्यों कर रहा? इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, इसे ऐसे बोलना चाहिए. यू नो, ये एक कॉन्स्टेंट हैबिट बन जाती है सारा दिन लोगों को करेक्ट करने की, उनको चेक करने की, चेंज करने की कोशिश करने की. और फिर जब वो नहीं कर पाते
1: तब इरिटेशन शुरू हो जाती है. तो छोटी सी बात नहीं समझ सकते. yes.
0: आपको कितनी बार कहा, आप अभी भी नहीं करते हो, तो फिर वो और एंगर जनरेट होता है. तो इट्स ईदर फाइटिंग विद द पास्ट और फाइटिंग विद पीपल. एंड द थर्ड इज फाइटिंग इनसाइड विद योर सेल्फ. हमारा अपने आप से भी एक युद्ध जो है वो सारा दिन अंदर चलता ही रहता है. क्योंकि बहुत बार हम अंदर अपने आप से भी हार जाते हैं. तो वो एक अंदर एक लड़ाई अपने आप से चलती रहती है जो हम बाहर बताना नहीं चाहते हैं. तो वो फिर एक एंगर के रूप में निकालते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, और अंदर युद्ध भी क्यों चलती है? क्योंकि ये जो दो चीजें थी, पास्ट को चेंज करने की आदत और लोगों को चेंज करने की आदत, दोनों में हम फेल होते हैं. हम कोशिश कॉन्स्टेंटली वो करते हैं, फेल कॉन्स्टेंटली होते हैं दोनों पर. तो अंदर क्या होगा?
1: गुस्सा अपने ऊपर, फ्रस्ट्रेशन, यू नो, लाइक दिस इज बिकॉज फेलियर विल एक्चुअली ऑलवेज ब्रिंग डिप्रेशन.
0: सो आई एम फेलिंग ना, आई एम ट्राइंग कॉन्स्टेंटली एंड फेलिंग कॉन्स्टेंटली टू कंट्रोल सिचुएशंस एंड पीपल. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एंगर इन माई सेल्फ, ऑन मी. मेरा अपने ऊपर गुस्सा कि ये क्यों मेरी बात नहीं मानते. तो इसका मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगता है. तो इसलिए जो डीपेस्ट लेवल ऑफ एंगर होता है कि हमें अपने आप पर गुस्सा क्यों आता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आप किसी शॉप में गए कुछ लेने के लिए, या आप किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, और आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया और आधा पौना एक घंटा हो गया आपका ऑर्डर नहीं आया. ठीक है, और फिर आप उसको फिर से बुलाते हैं और उसको पूछते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो तो भूल ही गया था या उसने गुमा दिया था या वट एवर. राइटियस एंगर क्या है? राइटियस है ना. आप एक घंटे से वेट कर रहे थे उस टाइम, तो आप उसके ऊपर तुरंत से गुस्सा कर देते हैं. अब अंदर एक्चुअली क्या

0: चल रहा है कि आपको ये पता है कि मैं एक घंटा वेट करता रहा, अगर मैं 10 मिनट के बाद ही इसको बुला के पूछ लेता तो मेरे इतने 45-50 मिनट्स जो वेस्ट हुए ये तो बच जाते। तो अंदर सबसे पहले हमें अपने ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक गलती हो गई है, मुझे 10-15 मिनट बाद चेक कर लेना चाहिए था कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, तो मुझे अपने ऊपर वो गलती हुई। और दूसरा, मैंने जो गुस्सा कर दिया तुरंत सामने वाले पर, वो भी मुझे पता है अंदर से कि मेरी एक गलती हुई, आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो दो गलतियां मेरे से हो चुकी है इस टाइम, एक मेरा टाइम बहुत सारा वेस्ट हुआ एंड दूसरा आई वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। तो मेरे अंदर यहाँ एक गिल्ट डेवलप होना शुरू होता है कि मेरे से ये दो गलतियां हो चुकी हैं। अब लेकिन इसको सप्रेस करके मैं बाहर प्रोजेक्ट क्या करूंगी, गलती किससे हुई है, एंड देन आई शाउट इट आउट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड आई मेक इट साउंड दैट आई एम जस्टिफाइड, बट एक्चुअली हु एम आई एंग्री विद, आई एम एंग्री विद माई सेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द होल डे इफ यू चेक, वी आर एंग्री विद आवर सेल्फ, इट्स ऑलवेज, इन फैक्ट ऑलवेज आई वुड फाइंड दैट देयर इज सम डिसहार्मनी, समथिंग गोइंग ऑन रॉन्ग इन साइड, लेकिन उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं दूसरे के ऊपर। आई कैरी दिस बैगेज विद मी कि मेरे से मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, और सामने जब कोई आ जाता है उस पर वो प्रोजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं मैं आपसे गुस्सा हूं। बट ये टेम्पररी है कि हमने दूसरे के ऊपर उठाकर उसको फेंक दिया, बट एक्चुअली दैट बिटरनेस इज इन साइड मी। तो जब भी गुस्सा आए, यू विल रियलाइज इट्स वन ऑफ दीज थ्री रीजन्स, सिचुएशंस को कंट्रोल करने के प्रयास, लोगों को, या फिर अपने अंदर अपने आप से झगड़ा। तो जब भी गुस्सा आ रहा है, इस तरह से हम गुस्सा कर रहे हैं, अपने आप से रुक कर, इफ यू कैन स्टॉप अगेन, आस्क योरसेल्फ किसको गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा क्रिएट कौन कर रहा है, और इसमें सफर कौन कर रहा है। ये जैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दोगे कि इस टाइम सफर कौन कर रहा है, भोगना किसकी हो रही है, यू विल गेट द आंसर। एंड अगर आपका अपने आप से युद्ध चल रहा है तो अपने आप को याद दिलाओ कि इट्स ओके, यू हैवंट फेल्ड एट एनीथिंग, इट्स जस्ट ओके, इट्स फाइन, इट्स ओवर। एंड फिर भी अगर गुस्सा नहीं कम हो रहा हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ वन मोर क्वेश्चन, कितनी देर करना और। इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल इजिएस्ट वे, बिकॉज करना क्या है, कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करना है ना, अंदर अपने हालचाल पूछना है। तो जैसे अगर कोई गुस्सा कर रहा हो एंड यू नो हैव टू टेल हिम कि आप अपना नुकसान कर रहे हो, तो पहले तो आप पूछो आप किसका नुकसान कर रहे हो। अब किसी और से नहीं पूछना, अपने आप से पूछना कि इस टाइम किसका नुकसान हो रहा है, और फिर भी वो करते जाओ, आप करते जाओ, तो जस्ट एक सेकेंड के लिए अपने आप से पूछो और कितनी देर,
1: फॉर हाउ लॉन्ग, यस,
0: यू नो, इफ यू कैन आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग, जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस, बिकॉज अपना नुकसान खुद से कोई नहीं करना चाहता।
1: इट्स एक्चुअली लाइक यू नो कोल्ड शावर, यू नो इट्स लाइक अ स्लैप, ओके कम ऑन, होल्ड ऑन,
0: अपना नुकसान करो कितनी देर के लिए और करना, एंड इमीडिएटली यू विल वॉन्ट टू टेल योर सेल्फ नो मोर,
1: नो
0: मोर, अपना नुकसान मैं क्यों करूं। तो इट्स यू नो, ये जो हैबिट अपने आप में डालनी होगी, ये एवरीडे बेसिस पर चलती है, और इसलिए वो जो वन घंटे में एक मिनट का पॉज होता है, इट हेल्प्स टू डू ऑल दीज थिंग्स। इसलिए वो वन मिनट की प्रैक्टिस को तो इमीडिएटली डाल देना चाहिए कि हर एक घंटे के बाद एक मिनट के लिए पॉज करें और अपना हालचाल चेक करें, How is it all going here inside? Is there anywhere? क्योंकि गुस्सा एकदम से नहीं आएगा हमेशा, sometimes it starts with a little and then it will increase and then it will increase.
1: कहते भी तो हैं कि किसी और का गुस्सा कहीं निकला, कुछ गुस्सा कहीं और था और निकल कहीं और गया। अच्छा, बिफोर वी गो, बिकॉज वी माइट मूव आगे आगे जाते जाएंगे, एक बात ये थी कि हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, ये सिचुएशंस को। यहाँ टीचर और स्टूडेंट की बात अगर हम देते हैं, टीचर इज ऑलवेज देयर टू टीच समथिंग, यू नो, एक कहीं ना कहीं, और उसमें ये लगता है कि उन्हें समझाना जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है। तो कई बार टीचर फील्स कि दे नीड टू चेंज द पीपल, द स्टूडेंट। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन है कि
0: तो वही हमने पहले भी देखा कि कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस। You want to change the student, या आप उनके अंदर जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, सबसे पहले वो परिवर्तन, you know, it's आप किसी के अंदर कोई गलती को सुधारना चाहते हैं, उसके लिए आप गलती नहीं कर सकते, that is no justification at all, क्योंकि जब हमें समझ में आ गया कि गुस्सा

0: फ्रीडम वैसे भी आप फोर्सफुल नहीं, वो देनी नहीं पड़ेगी, आपके पास चॉइस भी नहीं है. अगेन वी डोंट गिव फ्रीडम, द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दैट फ्रीडम. आप ये नहीं कह सकते ठीक है मैंने आपको बता दिया आप करना या नहीं करना ये आपकी मर्जी है, वो तो वैसे भी उसकी मर्जी है. हम जबरदस्ती तो करवा ही नहीं सकते, ये तो सिर्फ हम अपने आप को ही इस तरह से खुश करते रहते हैं. बट एक्चुअली इट्स देयर चॉइस. तो हम पूरी तरह से उनको सारी राय दें जो देनी है, लेकिन उसके बाद वी हैव टू leave it. We can't say, you know, that's detachment. कि आप दे दें, बता दें और फिर साक्षी हो जाएं and wait for them to do it.
1: देन तब हमें प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती है कि अभी चेंज क्यों नहीं हो रहा.
0: तो देन एक्सपेक्टेशन, फिर वो एक्सपेक्टेशन है कि वो हमारे कहे अनुसार क्यों नहीं चलते. यू नो, गुस्से को खत्म करने का सिंपल, बहुत ईजी तरीका, हैव नो एक्सपेक्टेशन. आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो. एक दिन के लिए करके रखो. If you find this very difficult to do, एक दिन के लिए करना कि मुझे आज सारा दिन में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जिसको जैसा करना है जैसे चलना. We don't have to say to them कि आपको जो करना है जैसे.
1: लेकिन प्रॉब्लम ये है सिस्टर शिवालिया, जरूर मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक हम में से हर कोई, हर बार जब ये बात हो रही होती है कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखो, हमें से हर कोई ये कहता है कि हम तो कोई उम्मीद नहीं रखते, मुझे तो अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे तो दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय
0: एक्सपेक्टेशन इज एट एवरी स्टेप. एक्चुअली हमें एक्सपेक्टेशन है. आपको टाइम पर आना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन है. आपको मुझे फोन क्यों नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने अपना काम ठीक से क्यों नहीं किया, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने प्यार से मुझसे क्यों नहीं बात की, ये एक्सपेक्टेशन है. आपने उल्टा जवाब क्यों दे दिया, ये एक्सपेक्टेशन है. एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं हमेशा होने वाली है कि मैं जब बड़ी हो जाऊं, बच्चे बड़े हो जाएं तब वो मेरा ध्यान. वो तो मोटे रूप एक्सपेक्टेशन, हर स्टेप पे एक्सपेक्टेशन. तो वो हर स्टेप पे जो एक्सपेक्टेशन है, जब वो मीट नहीं होगी तो गुस्सा आएगा. बिकॉज एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मेरा वो इमेज है एंड आई वॉन्ट यू टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट इमेज. आप नहीं करेंगे, डिस्टर्ब.
1: लेकिन हम उसे कहते हैं कि तो आपका कर्तव्य था, आपको करना चाहिए. सी
0: अगेन एक्सपेक्टेशन,
1: अगेन
0: कर्तव्य था, ये भी किसने डिसाइड किया. मैंने डिसाइड किया कि ये आपका कर्तव्य था. तो फिर मेरी इमेज, तो अब आपकी इमेज डिफरेंट है, ये मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूँ. सो प्लीज बिकम लाइक माय इमेज एंड इफ यू डोंट बिकम लाइक माय इमेज आई एम अलाउड टू गेट एंग्री. द होल डे दैट इज गोइंग ऑन, सारा दिन, हर स्टेप पे यही है. सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट ये करना एंड जस्ट सी हाउ यू फील. टुडे होल डे नो एक्सपेक्टेशन. कोई कैसा भी बात करे, कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे भी काम करे, आई विल डिसिप्लिन देम बट नो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा एक और बात है. ओके दिस इज वंडरफुल. आई एम से लाइक विल ट्राई टू डू दैट. एक तो सबसे पहले बात जो हमें समझ में आई वो ये कि एक इम्पॉसिबल जो चीज है वो ये कि मैं कभी भी ना सिचुएशंस को चेंज कर सकती, कंट्रोल कर सकती हूँ, ना मैं लोगों को कंट्रोल कर सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इट्स इन माय हैंड्स. सेकंड, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस हैं या लोग हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस एक दिन के लिए हम खत्म करके देखें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें. हमसे जब उम्मीद की जाती है, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाता,
0: कोई हमें गुस्सा करे
1: नहीं, गुस्सा ही नहीं, हमसे उम्मीद, गुस्सा मुझे तब भी आता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो. आई एम आई गॉड, क्या मैं सब कुछ कर दूंगी, क्या मुझसे कितनी उम्मीदें रखोगे, मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस करोगे. और उन एक्सपेक्टेशंस को जब हम नहीं मीट कर पाते, विच आई एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट, सो एंगर इज देयर, यू नो आई डू गेट एंग्री कि मुझसे कितनी उम्मीद करोगे.
0: दैट इज वाई इज इट हैपनिंग, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली दूसरों को खुश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है. मेरी सेल्फ एस्टीम उस चीज पर बेस्ड है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं. तो इसलिए आपको खुश करना ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं उसके अनुसार करना शुरू कर देती हूँ. विच इज ओके व्हेन वी आर वर्किंग इन रिलेशनशिप्स टुगेदर, वी डू थिंग्स फॉर ईच अदर. लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी अपने आप से एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले उसको सेट करें. क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट जाके कुछ करने की कोशिश करेंगे, जैसे हम कहते हैं हम करना तो ये चाहते थे लेकिन कर ये रहे हैं इनके लिए, तो कभी खुशी नहीं होगी. यू नो, फिर हम बार बार बोल भी देते हैं मुझे तो ये करना था, आपके लिए ये किया. तो आपके लिए नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपको क्योंकि ये अच्छा लगता है, आई विल डू इट. लेकिन आपके लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैंने किया. तो देन देयर इज नो पेन अटैच्ड विद इट. Because let's start doing things what we want. Even if it is the things what other people

0: want, but I have to make them things that I want.
1: Mm.
0: You know, I can't hold it like I did it for you.
1: Mm.
0: No. You want me to drink tea. यहाँ चाय पड़ी आपके लिए, प्लीज मेरे लिए आप चाय पी लीजिए. आई नेवर हैव टी, मुझे चाय नहीं पसंद है, वो फिर भी आप चार बार फोर्स करते हैं, आप मेरे लिए चाय पीजिए, आप मेरे लिए चाय पीजिए. अब मुझे चाहिए इफ आई फील कि आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, सी इट्स माई डिसीजन. अगर मैं पी लू और कहूँ मैंने आपके लिए पी लिया, दैट्स रॉन्ग, दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. एक्चुअली मैंने आपके लिए नहीं पिया, बट मैं आपको खुश देखना चाहती थी, एंड आई फेल्ट कि अगर ये पीने से यू आर हैप्पी, आई फेल्ट, सो आई थॉट आई विल डू दिस नॉट फॉर यू, फॉर माई सेल्फ.
1: एक्चुअली
0: सीइंग यू हैप्पीनेस गिव्स मी हैप्पीनेस,
1: गिव्स मी हैप्पीनेस अल्टीमेटली. ओके, अगेन इट ऑल कम्स टू मी,
0: एट मी, एवरीथिंग.
1: अगर मैं कुछ कर रही हूँ किसी के लिए, तो मुझे ये बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी या रखनी चाहिए, या अपने थॉट को हमें ऐसे बदलना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक हम करते ही इसीलिए क्योंकि हमें अच्छा लग रहा होता है, और हर बार हम दूसरे पे एहसान ये डाल देते हैं कि आपके लिए
0: पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मैं अपने लिए कर रही हूँ. दैट मेक्स मी ऑलवेज वेरी लाइट, वेरी हल्का.
1: लेकिन मैं क्यों कभी भी नहीं लेना चाहती, क्यों मैं अपने आप को यू नो सेल्फ सेक्रीफाइस में क्यों बनते रहना चाहते हैं?
0: क्योंकि उससे लगता है हमें औरों से वो मिलेगी सहानुभूति.
1: बट वाई डू वी नीड दैट?
0: बिकॉज माई सेल्फ एस्टीम इज वेरी लो. क्योंकि मुझे हर एक हर समय सबसे चाहिए, क्योंकि अंदर बर्तन बहुत खाली है. यू नो, तो आपसे प्यार चाहिए, तो मुझे लगता है अगर मैं आपको कहूंगी कि मैंने आपके लिए ये किया, तो आई विल गेट सो मच लव फ्रॉम यू. मैंने आपके लिए ये कर दिया, तो आई विल गेट सो मच अप्रिसिएशन फ्रॉम यू. मैंने आपके लिए ऐसा कर दिया, आई विल गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम यू. आई वॉन्ट फ्रॉम यू सो मच, तो आई मेक यू फील मैंने आपके लिए किया, इवन दो आई डिड इट फॉर माई सेल्फ. इट्स बिकॉज हमें सारा दिन चाहिए, क्योंकि ये अभी तक ये नहीं समझ में आया कि मैं ऑलरेडी हूं, मुझे प्यार चाहिए नहीं,
1: मैं तो हूँ ही,
0: मैं हूँ ही. तो जब वो चेंज हो जाता है, देन मुझे चाहिए नहीं, इट इज मैं हूँ ही, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं हूँ ही वो, एंड आई कैन इनफैक्ट गिव.
1: शिवानी, अभी आपने कहा कि एक दिन ऐसा रखते हैं कि नो एक्सपेक्टेशंस. तो नो एक्सपेक्टेशंस बेसिकली किस चीज में, किस तरह से रहेगा वो?
0: मतलब एक दिन आई विल लेट एवरी वन बी द वे दे वॉन्ट टू बी. मतलब एनी वेज आई हैव टू लेट देम बी वॉट दे वॉन्ट टू बी. लेकिन माइंड में सारा दिन माइंड में ज्यादा कंट्रोल चलता है कि ये ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं. और फिर वो वर्ड्स में भी आ जाता है, लेकिन जितना वर्ड्स में आता है उससे कई गुना ज्यादा मन में चल रहा होता है. यू नो, हर एक को देखते देखते हम अंदर की टोकाटाकी तो बहुत ज्यादा चल रही होती है. अभी तो कर करके हम अपने आप को काफी रोक लेते हैं कि बाहर नहीं बोलना चाहिए उतना. तो एक अंदर से हल्का रहना है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट जस्ट आउटसाइड. तो एक दिन लेट एवरी वन बी द वे दे वॉन्ट टू बी, लेट एवरी वन स्पीक द वे दे वॉन्ट टू स्पीक, एंड डू वॉट दे वॉन्ट टू डू इंटरनली. लेट एवरी वन गो.
1: ओके, जो इस सिचुएशन बच्चे का एग्जाम होने वाला है, कल ही है एग्जाम, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है. अभी ट्वेल्थ के एग्जाम रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, और इतना ज्यादा एंग्जाइटी से गुजरे हैं माँ बाप. वो उससे उम्मीद ना करूं मैं कि वो पढ़ रहा है, पढ़े, क्योंकि कल ही एग्जाम है. तो वो एक दिन बिना एक्सपेक्टेशंस के कैसे जाए?
0: उससे उम्मीद ना मैं करूं, मतलब क्या? वो पढ़े, आई विल इंस्पायर हिम टू स्टडी, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन जो मैं क्रिएट कर देती हूँ कि उसको इतने ही लाने चाहिए, एंड देन व्हेन ही डजंट एबल टू गेट दैट मच, दैट क्रिएट सो मच ऑफ टर्मोइल. मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए कि अपनी स्टडी के साथ साथ वो मेंटली भी बहुत स्टेबल होकर उस एग्जाम को क्रॉस करे. नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स इतनी एंग्जायटी अपने अंदर क्रिएट कर देते हैं, तो वो एंग्जायटी सिर्फ उन तक नहीं रहकर बच्चों तक भी पहुंचती है, और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एंग्जायटी वो क्रिएट कर देती है. अब आपकी एक्सपेक्टेशन का क्या कर सकते हैं? अगर वो इतनी ज्यादा एंग्जायटी उस बच्चे के अंदर क्रिएट कर देगा, हाउ फार इज इट गोइंग टू बी हेल्दी? इज दैट गुड? सी, एट एवरी स्टेप वी डोंट से कि ओके डोंट, यू वॉन्ट हिम टू डू वेल, बट ये जो आप एंग्जायटी क्रिएट करेंगे उसके साथ, इज दैट गुड? क्योंकि एक्सपेक्टेशन करके क्या होगा, आप सारा दिन उसको ये रब इन करेंगे कि मुझे चाहिए कि आपके 90% आने चाहिए, मुझे चाहिए कि आपके 90% आने चाहिए. तो उसके अंदर भी एक वो बर्डन आ जाता है, एंड दैट इज व्हेन इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन द बेस्ट एफर्ट, अगर उनके वो 90% नहीं आते, तो हमें पता है बच्चे क्या क्या कर लेते
1: हैं. अब तो और भी ज्यादा आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक हियर इज कि अब हम ये नहीं कहते हैं कि मुझे चाहिए, बिकॉज ये तो माना नहीं जा रहा, ये तो इतनी बात की जा रही है कि अपने बच्चों से उम्मीद मत करो. सो वी क्रिएट एन एटमोसफेयर कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आज की डिमांड यही है. ये कहीं अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं,
0: कहीं ना कहीं हमें बहुत रियलिस्टिक

0: होकर चलना पड़ेगा कि सबसे पहले ध्यान रखें कि बच्चा मेंटली स्टेबल होकर क्रॉस करे उस एग्जाम को. मार्क्स तो आ जाएंगे लेकिन व्हाट अबाउट द मेंटल टर्मोइल, क्योंकि जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, ओवरऑल हम एक पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं. पर्सनालिटी सिर्फ मार्क्स नहीं है, पर्सनालिटी इज मेंटल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड देन योर एकेडमिक्स एंड एवरीथिंग. प्रायोरिटी को सेट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई नहीं करें, इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स नहीं चाहिए, लेकिन वेयर इज द बैलेंस. आपको मार्क्स चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट कि आप इतना टेंशन क्रिएट कर दें कि एक बच्चा बीमार पड़ जाए या मेंटली डिप्रेस्ड हो जाए या उसके अंदर वो एक सप्रेशन हो जाए जो उसके पर्सनालिटी पर आगे जाकर रिफ्लेक्ट करे. समवेयर आई विल हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस, क्योंकि कई बार हम इतना रब इन कर देते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो कुछ भी नहीं हो, आसपास के बच्चों को देखो वो, तो उससे हम बच्चे की सेल्फ एस्टीम को बहुत नीचे गिरा रहे. नाउ इज दैट हेल्दी? एट एवरी स्टेप आई हैव टू सी द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, नॉट जस्ट मार्क्स आ गए. और अगर नहीं आए तो फिर उसके अंदर सारा दिन रबिन, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे से तो कुछ नहीं हो सकता. हम उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है ये सब सुन सुन के. वो इस गिल्ट में जीने लगता है कि मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता. तो आगे जब वो कुछ करने जाएगा लाइफ में, उसका ये लो सेल्फ एस्टीम जो हम जिम्मेवार थे क्रिएट करने के, दैट विल बी एन ऑब्स्टिकल. सो हाउ फार एम आई डूइंग गुड फॉर द चाइल्ड, यू नो. तो जब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम उसके हर एस्पेक्ट को देखकर फिर करें, एक दूरादेशी जिसको बोलते हैं.
1: और उसके बाद फिर अल्टीमेटली यू नो अंडरस्टैंडिंग दिस दैट

0: सो वहां से शुरू करके फिर एक दिन कम से कम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो गुस्से के कारण आज हम तलाश रहे थे। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। गुस्से का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुस्से के कारण क्या है, इनको जानने के बाद अभी भी सफर बाकी है, क्योंकि ये जानना है कि कितने प्रकार के गुस्से होते हैं और गुस्से को खत्म कैसे किया जाता है। तो आने वाली कड़ियों में इसको साथ मिलकर तलाशेंगे। अब दीजिए इजाजत। ओम शांति।

0: आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सोच के समझ के अपने हर कदम को आगे बढ़ाता है, वो न केवल सफल होता है लेकिन कईयों को सफलता का मार्ग दिखा सकता है। एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक हृदय स्पर्शी व्यक्ति का हर कर्म हर कर्तव्य लोगों के दिल को छूता है, लोगों को मार्ग दिखाता है और कईयों को आने वाले समय तक प्रेरित करता रहता है कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ उम्दा करने के लिए। 107.8 FM रेडियो मधुबन पर आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत और मैं आरजे शांतनु आज आपके बीच में दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ डॉक्टर शरद काले जी के साथ। डॉक्टर शरद काले जी को भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया उनके कई विशेष वैज्ञानिक योगदानों की वजह से। उनमें से एक विशेष योगदान है निसर्ग प्रेम, जिसमें बायोगैस के द्वारा किस प्रकार से ईंधन की उत्पत्ति होती है, फ्यूल गैस जो कि हमारे काम में आता है, बट साथ ही उसी बायोगैस के द्वारा विद्युत की उत्पत्ति, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये भी करामत करके दिखाया है काले जी ने। आइए बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं डॉक्टर शरद काले जी के साथ। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: आप जो कहानी पहले आपके माता जी के सुना रहे थे, जहाँ पर उन्होंने अलक्ष्मी और लक्ष्मी का जिक्र किया था, कई बार ऐसा हो जाता है कि लोगों में ज्ञान नहीं होने की वजह से वो ज्यादा गलतियां करते हैं। जो अवेयरनेस फैक्टर है, वो अवेयरनेस फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हम जो श्रोता सुन रहे हैं, जो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई स्कूल में टीचर होगा, अलग अलग प्रोफेशन में जिनका प्रोफेशन अनुसंधान भी नहीं है और अवेयरनेस लाना उनको पता भी नहीं है, खुद भी अवेयर नहीं होंगे, तो पहले वो जागृति कैसे लाए, वो अवेयरनेस कैसे लाए और फिर उस अवेयरनेस को आगे कैसे बढ़ाए?
4: बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है मेरे पास। ये तीन प्रवृत्ति बहुत इम्पोर्टेंट होती है इस विश्व के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए। एक होती है शिक्षक प्रवृत्ति, एक होती है किसान प्रवृत्ति और एक होती है अनुसंधान प्रवृत्ति। और ये तीनों जिसे क्रिएटिव कहते हैं, सृजनशील कहते हैं, ये तीनों प्रवृत्ति, और हर आदमी ने ये तीनों प्रवृत्ति खुद में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इतनी अच्छी तरह से इंटरव्यू ले रहे हो, मधुबन रेडियो चला रहे हो, तो आपका ये कर्तव्य बनता है। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं ये एक मिसाल के तौर पे ले रहा हूं कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप रोज नए लोगों को बुलाएं। आप बुलाते भी होंगे, नॉट दैट यू आर नॉट डूइंग, बट मैं ये चाहूंगा कि आप नए लोगों को बुलाएं, उनके जो नए सृजनशील आइडियाज हैं उनको

0: तो उनसे का साथ शेयर करें। अगर जिसको वो लेने जैसे लगेगा वो ले लेगा, क्योंकि ये तो महासागर है। जैसे मैंने करा लोगों को, गूगल मिला मतलब ये मत समझो कि तुम्हारे पास सारा ज्ञान है, क्योंकि गूगल तो वैसे विश्व बुक्स की किताब स्वरूप में महासागर तो था ही, तो ये महासागर अभी गूगल में आ गया, छोटा कर दिया उसे। लेकिन जब तक आप उसे समझते नहीं तब तक कोई मायना नहीं इसका, क्योंकि गूगल पे तो सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन आप अगर वो डेफिनेशन पढ़े बिना कुछ आप कहेंगे कि अन्न है पूर्ण ब्रह्म, अन्न पूरा पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन वो बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग फूड, देन अन्न है पूर्ण ब्रह्म। अगर नहीं होता है तो फिर उसका फायदा नहीं। तो आप ये प्रवृत्ति सिर्फ पहले मन में लाइए कि मुझे जो मालूम है वो मैं किसी हद तक किसी को पढ़ा सकता हूं क्या। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ा सकते हो, ये सोसाइटी में काफी आगे जाने की ताकत पैदा होगी। क्योंकि हम ये नहीं करते, हम सिखाने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। तो सीखने की कोशिश करना कि टू बी ए स्टूडेंट एंड टू बी ए टीचर, सेकेंड इज टू बी ए रिसर्चर। लाइक योर प्रॉब्लमली सबसे उपेक्षित हमारा देश का वैज्ञानिक है हमारी माता रोहिणी, इतने अच्छे पदार्थ करके देती है। कभी कहते हो कि अच्छा बना है आज, अगर बोलेगी तो वो बोलेगी क्या इतने दिन खराब होता था क्या, उसको भी आदत नहीं आती सुनने की। ऐसी स्थिति हमने लाके पैदा की। तो किसान हमारा एक अच्छा उपेक्षित साइंटिस्ट रहा है, इतने अच्छे मेहनत करके अनेक क्रॉप्स बनाए उसने। तो इनकी तो ये जो सृजनशील प्रवृत्ति खुद में कैसे आए, इसके लिए अगेन पढ़ना ये सबसे शुरू में। इसलिए मुझे मैं हमेशा अभी जिस स्कूल में जाता हूँ रोज, वहां उनको मैं अपनी किताबें उनको बोलता हूँ कि बोलो जी आपको किताब पढ़ना ही है, और जब तक आप किताब नहीं पढ़ते और मोबाइल दूर नहीं रखते, कम से कम आज अभी आपको इतनी आदत हो गई है ये मोबाइल अगर सुबह हाथ नहीं लगा तो वो परेशान हो जाता है आदमी,
1: जैसे कहाँ गया, कहाँ गया फोन।
0: ये कम हो जाएगा ना, आपको एक एहसास होने लगेगा कि मेरे में ये प्रतिभा जाग रही है, तो ये डिपेंड निकाल दो आप। ये होना जरूरी है, मैं मेरे भी मोबाइल रखता हूँ इसलिए आपको कॉन्टेक्ट कर सके, अगर मोबाइल नहीं रखता तो कॉन्टेक्ट नहीं होता था। तो कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, लेकिन उसका मतलब उतना ही है, पढ़ाना नहीं है मोबाइल। हम मोबाइल में पढ़ाई करते हैं, नहीं गलत कहते हो, आप कभी मोबाइल में पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही मोबाइल ऑन करते हो तो एडवर्टाइज आती है, आपका ध्यान एकलव्य था, वो द्रोणाचार्य से सीखा कैसे, पुतला बनाया था वो, और पुतला बना एक के पीछे एक दिन भर बाद छोटा तीर छोड़ता रहा तभी वो अच्छा धनुर्धर बना। उतनी लक्ष्य में
1: साधन का इस्तेमाल करना है साधन के जैसे, लेकिन साधन को साधना से बड़ा नहीं बनाना है।
0: नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, और खुद की को तरक्की होनी चाहिए। ये तरक्की मैं अभी भी बच्चों को कहता हूँ, केवल आपको आने चाहिए, आपको कविताएं बाय हार्ट आनी चाहिए, ये पाठांतर नहीं है, ये आपका समझने का तरीका होता है। आज मैं आपको मेरे स्कूल में पढ़ी हुई 300-350 कविताएं बिल्कुल दिला रो के मैं बता सकता हूँ, क्योंकि वो शिक्षकों ने उसकी जान डाली थी। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला मुझे याद है जैसे की तैसे, क्योंकि वो जान डाली थी सर, क्या शब्द इस्तेमाल किए थे, एक एक शब्द। और यही मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप नहीं समझ रहे हो कि आपने क्या मिस कर रहे हो, क्यों आप सुमित्रानंदन पंत जी का, आप गुलशन नंदा का, आप महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं पढ़ोगे तो आपने क्या पढ़ा, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। कितनी हिंदी कविता, हिंदी साहित्य कितना बड़ा है, इंग्लिश लिटरेचर वर्डसवर्थ की कविता डेफोडिल की से नहीं आता है, मतलब मेरे हिसाब से वो बड़ा रईस होके भी बहुत पोर आदमी है, गरीब आदमी। बस मन की श्रीमंती होनी चाहिए, रईस की होनी चाहिए।
1: तो ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि मन की श्रीमंती होनी चाहिए, रईसी मन का होना चाहिए। मन में साहूकारी अगर है तो फिर चाहे आप साधारण जीवन भी जीते हैं, लेकिन आपको एक रिच एक्सपीरियंस एवरीडे होता रहेगा, एक आपको बहुमूल्य अनुभव रोज गिफ्ट में मिलेगा। एक सवाल मन में उठता है, जब आप मिस्टर ब्रेन की जर्नी को शुरुआत किया, मतलब जब आपने शुरुआत किया एक्सपेरिमेंट करना, और जब मिस्टर ब्रेन सामने आया, तो दोस्तों पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि निसर्ग ग्रीन जो है डॉक्टर

0: सेल्फ्टैलेजी का एक ऐसा अनुसंधान है जिसके माध्यम से बायोगैस प्लांट और जिसके तहत जो गीला कचरा होता है उसको वो न केवल ईंधन में परिवर्तन करते हैं लेकिन ईंधन के साथ साथ उसका जो मैन्यूअर है खाद में भी परिवर्तन होता है। तो एक मिस्टर ग्रीन के तहत वो बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक तो कचड़े को ईंधन में और ईंधन से आगे उसको खाद में परिवर्तित कर रहे हैं। और ये जो अनुसंधान है आज भारत देश में कई जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है जिसका श्रेय डॉक्टर शरद कार्य जी को जाता है। तो डॉक्टर शरद कार्य जी, ये जो निसर्ग ग्रहण जब आप इसका अनुसंधान कर रहे थे तो इसको करते समय आपके सामने कुछ परीक्षाएं आई और इसको एस्टेब्लिश करने में भी कुछ परीक्षाएं आई, उन परीक्षाओं को तो आपने पार किया ही तब आज हमारे सामने निसर्ग ग्रहण है, उसको पार करते समय आपने कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया, कौन सी वो शक्तियां थी या कौन से वो वैल्यूज थे जिनका आपने इस्तेमाल करके इन परीक्षाओं को पार किया?
1: जैसे मैंने कहा कि मेरे माता जी का एक बहुत अच्छा बहुत अच्छी नसीहत मुझे याद है, मेरे माता जी ने उनका जो दूध के दही बनाने का कल्चर है 50 साल से ज्यादा संभाल के रखा है और वो मेरे पास आज भी 50 साल मैंने रखा है तो 100 साल का मेरा कल्चर है। तो माइक्रोबियल कल्चर में कितनी ताकत होती है ये तो मुझे पता था, तो यही माइक्रोबियल कल्चर में मैं इस्तेमाल किया निसर्ग ग्रहण में। तो दिक्कतें कब आई कि वो जो दिक्कतें आई वो कचरा अलग नहीं रखते थे, कचरा एक उसमें, और भारत में बहुत कुछ समस्याएं गंभीर है जैसे गुटखा खाने की और छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उसके। मैं कभी वो एक दिन का पंतप्रधान बना तो ये गुटखा मैं बंद करूं, ये गुटखा बहुत तकलीफ देने वाली बात है, शरीर को भी तकलीफ देती है और पर्यावरण को भी बहुत तकलीफ। जैसे पैकेट कितने निकालेंगे, इतने भारे छोटे छोटे टुकड़े, ये मैंने कहा दूध के थैली के टुकड़े तो वेफर्स के थैली के टुकड़े वो पैसे निकलते और वो जब जाते हैं तब उसमें वो फाइनली वो बायोलॉजिकल डाइजेस्टर है उसमें प्लास्टिक जाएगा। अगर शरीर में मुझे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, कोविड का इन्फेक्शन भी हुआ तो मेरा शरीर लड़ सकता है, प्लास्टिक से नहीं लड़ सकता, प्लास्टिक बंद कर देता है, मेरा फ्लो बंद कर देता है, हार्ट अटैक आता है। तो ये जो समस्या वहां भी होती है मेरे बायोडाइजेस्ट में, प्लास्टिक जब जाता है तब बायोगैस प्लांट बंद हो जाते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे इसका टेक्निक तो चलता नहीं है, टेक्निक नहीं है, टेक्निक में गलती नहीं है, गलती आपके वो सेग्रेगेट नहीं
0: रॉ मटेरियल है जो आपने रॉ मटेरियल पहले डाला उसमें गलती।
1: एक कोई कंपनी फ्रूट जूस बनाती है तो उसके फ्रूट्स तो सारे अच्छे आते हैं, वैसा हमारा रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आता ना, सारा मिक्स आता है और जितने प्लास्टिक उसमें आएगा, और ये जो काम करने वाले लोग ये भी सिर्फ दूध के थैली को स्मेल आएगी तो आप 24 घंटे घर में नहीं रख सकते, सारे गांव की थैलियां इकट्ठा आ रही है एंड यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन विल डू ऑल द सेग्रीगेशन एंड देन प्रोसेस द वेस्ट, कितनी अमानवीय अपेक्षा हम कर रहे हैं क्योंकि हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम उसे अलग रखे घर में और फिर वो गीले कचरे में ना जाए तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो ये अवेयरनेस पैदा करने में जो सवाल आपने मुझे कहा आपुड़कर साहब ने किया था, ये अवेयरनेस का काम कितना चलेगा, मैंने कहा सर 2 जनरेशन लगेगी, अभी एक तो खत्म हो रही है मेरी, अभी और एक जनरेशन, अगर ऊपर जाके कहूंगा भाई और एक जनरेशन देता है तो दे दो, नहीं तो अगले किसी के हाथ में बैटन देना है और चला लाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। बहुत आसानी से लोग कहते नहीं नहीं सर, सुनने में तो बातें अच्छी लगती लेकिन घर जाके वो प्लास्टिक की थैली कोना काटते समय आप में से कितने लोग जो सुन रहे हैं कितना कोना काटेंगे, देखिए बिना काट के भी हम खोल सकते हैं, इसे सिर्फ एक छेद लेना है और फिर पूरा ओपन करना है तो कोना कटेगा और फिर फंस करके रखना है, इतना ही काम करना है, उसमें ना कुछ समय लगने वाला ना कोई पैसे लगने वाले, लेकिन नीचे
0: अगर ध्यान से और अगर दिल से अगर हम उस चीज को करते तो मैं समझता 5 सेकंड अधिक ही काम होगा उसमें, उससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला।
1: और जो मैंने खाद बनाने की रीत भी बताई 10 मिनट लगते हैं एक मिक्सर लग, बस उससे ज्यादा नहीं लगता और घर में 10 मिनट तो आप आसानी से निकाल सकते।
0: ये इस विषय में मुझे ये चीज जानना था, जैसे मान लीजिए मैं एक श्रोता हूँ रेडियो मधुबन का जो आज यशस्वी भारत कार्यक्रम में डॉक्टर शरद काले जी से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे घर में

0: कचड़े को अलग करूंगा और खुद का जो गीला कचरा है, जो बायो वेस्ट है, उसको मैं खुद ही डिकम्पोज करूंगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ से मैं शुरुआत करूं और कैसे उस चीज को अंजाम
1: तक? बहुत सिंपल चीज है, आप एक बकेट ले लीजिए, आपके घर में 3-4 लोग हैं तो एक 15 लीटर की आप बकेट ले लीजिए, प्लास्टिक की बकेट लीजिए या कोई जो पुराना डब्बा है कलर का वगैरह, वो डब्बा ले लीजिए,
0: एशियन पेंट का डब्बा होता है,
1: एशियन पेंट का डब्बा डब्बे आते हैं, तो वैसे एक कभी 5 लीटर के डब्बे आते, वो भी चले, वो डब्बा लीजिए, 10 लीटर का लीजिए, थोड़ा बड़ा लीजिए, या दो रखिए तो आसान रहेगा। और उसे नीचे छेद डालिए, एक 0.5 मिलीमीटर के ड्रिल्स बना दीजिए, 20-25 फुट बना दीजिए, उसके ऊपर नारियल की छिलके बिछा, और उसके ऊपर एक जाली मिलती है स्टेनलेस स्टील की, उस हिसाब से काट के वो जाली उसको लगा दीजिए, ताकि अगले ऑपरेशन में वो नीचे के छिलके डिस्टर्ब हो। इतना इसको कोई पैसा नहीं लगने वाला, पुरानी बकेट ली आपने, ये सिर्फ जाली खरीदनी है, शायद घर में वो जाली भी मिल जाती है, नहीं तो जाली खरीद के लाए, उतना बस उतना ही खर्चा है। और नारियल के छिलके, वो तो आपके नारियल से निकलते छिलके डाल दीजिए, तो क्या हो गया आपका रेडीमेड बकेट तैयार हो गया, जो निसर्ग लक्ष्मी बकेट तैयार।
0: तो बकेट में सबसे पहले नीचे में छेद और छेद के ऊपर जाली, जाली के ऊपर फिर नारियल के छिलके, या नारियल के छिलके उसके ऊपर जाली,
1: बस नीचे जाली नहीं होगी, छिलके में तो भी चलेगा, जाली के ऊपर। उसके ऊपर जो बाजार में सेंद्रीय खाद मिलता है, वो बहुत सारे नर्सरी बेचते हैं, वो सीव्ड किया हुआ चाहिए, अच्छा बारीक चाहिए, तो 2 किलो के आसपास वो खरीद के लिया, बस एक ही बार खरीदना पड़ेगा, कभी कभी 150 रुपए किलो भी बेचते हैं, कभी 30 रुपए किलो भी बेचते हैं, उतना खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो 2 किलो सेंद्रीय खाद लेके आइए और वो खाद इसके ऊपर डाल दीजिए, उसके ऊपर घर में जो चार बनाया है, घर में जो दही लगा के, बाजार से दही ला के नहीं, घर में दही लगा के छाछ बनाया, वो छाछ एक 200 ml छाछ उसके ऊपर छिड़क दीजिए, और थोड़ा सा पानी, जैसे गार्डन वेट सॉइल जितनी वेट होती है उतना पानी, तो वो बना के 2 दिन छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप जो भी आपके केले के छिलके, आजकल आम चल रहा है, आम के छिलके, वाटरमेलन चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, सब्जी के बैंगन है उसका पीछे वाला पार्ट काट देते हैं, तो कोरिएंडर है उसके डंडी काट देते हैं, पालक की डंडी काट देते हैं, वो सारी डंडी वगैरह लेके एक कटिंग बोर्ड पे लेके उसे पहले बारीक टुकड़े टुकड़े कर लो, और एक मिक्सर का एक पॉट, ड्राई पॉट, मतलब पानी नहीं डालने वाला, चटनी वाला, वो ड्राई पॉट एक अलग रखिए, ये ताकि आपकी बीवी में झगड़ा ना हो जाए कि हम ये देंगे, एक पॉट तो एक खरीद सकते हो, तो एक पॉट ले लीजिए, वो पॉट में ये सारी मिक्स जो पेस्ट बना हुआ है वो डाल दीजिए, और 2 किलो ऑर्गेनिक मैन्योर सेव किया हुआ है डाल दीजिए, फिर बटर में छिड़किए, फिर मॉइस्चर करिए, फिर आपने जो भी मटेरियल रखा है उसमें केले के छिलके, आम के छिलके, सब्जी के पार्ट्स, उसे बारीक बारीक टुकड़े करके कटिंग बोर्ड पे एक पॉट उसको मिक्सर का अलग रखिए, और मिक्सर में चटनी बना दीजिए, डोंट ऐड वाटर, एक्सटर्नल वाटर, उतना जो उसके पानी होगा उतना रहने दो, और वो जो एक बार वो चटनी हो गई ना, वो पूरी चटनी दिन की लेने की, और वो इसमें घोल देने की, हाथ से, दोनों हाथ से घोल देने की, पहले आपको गंदा लगेगा तो हाथ में चाहिए तो सॉक्स पहने, जो ग्लोव डालते हैं, लेकिन मैं तो कभी मेरी जिंदगी में ग्लोव ने हाथ से ही करता हूँ, क्योंकि मेरे ही घर का, मैंने ही खाया हुआ केले का छिलका है तो उसमें गंदगी क्या है, तो मैं उन्हें, लेकिन वो ऐसे दोनों हाथ ऐसा रब करके मतलब वो मटेरियल लेने का और खाद में ऐसा मिक्स कर देने का, तो पूरा घोल दिया जाए तो शाम तक आपको अच्छा खाद बनेगा, 12 घंटे में भी बनता है, अगर सुबह किया तो 24 घंटे में बनता ही बनता है।
0: तो वो जो अभी आपने बताया, इसमें सारे आपने सब्जियों और फलों के बारे में बताया, क्या इसमें कुक्ड मटेरियल भी डाल सकते हैं, पका हुआ भोजन भी डाल सकते हैं?
1: यूजुअली क्या है कि मैंने कहा कि पका हुआ भोजन हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो शपथ लेनी है, और अगर बाय चांस अगर कोई बच्चे ने छोड़ दिया और नहीं खा पा रहे, कोई गलत तरीके से बाहर रख गया, धूप की वजह से खराब हो गया, तो इसे

0: प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन उसमें जो छलनी से निकाल के सिर्फ सॉलिड पार्ट आप मिक्सर में डालिए और उसका उसको घोल दीजिए, जाएगा। उसमें सांभर मत डालिए, मतलब नो लिक्विड गो इनटू दिस। लिक्विड गया तो फिर कीड़े आते हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाकी सारा खाना जो पका हुआ भोजन भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं नहीं डालना चाहता हूँ। तो अगर हम कम करें, और अगर खराब हुआ जो मटेरियल है वो आप डाल सकते हो, या किसी ने गिरा दिया नीचे हम नहीं खा सकेंगे, तो उठा के उसे मिक्सर के पॉट में डालिए और हमारे इस निसर्ग लक्ष्मी में डाल दीजिए, वो आपको दूसरा दिन उसका खाद बना के दे दीजिए।
1: जी, और कई परिवार में जहाँ पर लोग नॉनवेज आदि खाते हैं, क्या वो नॉनवेज का?
0: मेरा कल्चर नॉनवेज है, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरा कल्चर कुछ भी खा लेता है, उसे कोई चिंता नहीं है।
1: जी, ये बहुत मतलब बारीक चीजें हैं जो लोग सोचते हैं कि बहुत भारी चीजें हैं, बट एक्चुअल में केवल ध्यान देने वाली चीजें होती है और चीजें बड़ी आसान सी होती
0: है। और 10 मिनट अपने 10 मिनट लगते हैं, मैं रोज करता हूँ। श्रीमती जी से अलग से पूछिए मैं झूठ बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो आपको बताएगी। नहीं, वो बहुत प्यार से, मैं व्रत जैसे रोज शाम को जितना भी मटेरियल उन्होंने जमा करके रखा है थोड़ा प्रोसेस कर।
1: जी, झूठ बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता जब आपको सत्यमेव जयते जैसे प्लेटफॉर्म में बुलाया जाता है, जहाँ सच की बात दम लगा करके बोली जाती है। वहाँ पर मुझे याद है टेलीविजन में जब ये शो आया, उसमें आप एक छोटा सा ग्लास जार लेकर के आए थे, जिसमें 14 ईयर्स से आप 14 वर्षों से लगभग,
0: अभी 25 साल हो गए उसे।
1: 25 साल हो गए, तो जरा उसके बारे में लोगों को बताइए।
0: हाँ, मैंने एक ग्लास का डेसिकेटर लिया था। डेसिकेटर मतलब एक कांच का बर्तन समझिए आप, उसे ढक्कन लगा रहता है तो हंडी होती है वैसे। वो कांच का बर्तन हमारे लैब में कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मैंने लोगों से पूछा मैंने ले लू क्या, तो हाँ बोले ले लो आप। मैंने उसे क्लीन किया, उसमें 800 ग्राम मट्टी और 100 ग्राम खाद 1 जून 1999 पे डाला, और उसमें 540 ml पानी डाला, और एक मनी प्लांट हाथ को लगा, पौधा उधर था वो निकाल के उसका टुकड़ा उधर लगा दिया, और पश्चिम दिशा में रखा वो बर्तन, और पश्चिम दिशा से डूबती हुई सूरज की किरणें उसके ऊपर गिरती थी, फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, प्रकाश संश्लेषण, और वो पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। अभी वो पेड़ बढ़ते बढ़ते 3, 4, 5, 6 पत्ते हो गए, तो 31 अगस्त 1999 का दिन आया, उस दिन मैंने वो बंद कर दिया, ढक्कन लेके अरनलाइट से सील कर दिया। आज तक मैंने, अभी 25 साल हो गए, अभी भी वो पौधा बीआरसी पे पड़ा हुआ है, वो मैंने आज तक खोला नहीं है, और वो अभी भी हरा भरा है, ग्रीन है, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम बन गई। जो मैंने 540 ml पानी शुरू में डाला था, आज भी वो 540 ml पानी उस डेसिकेटर में है। वो पत्ते लेते हैं, रात शाम को छोड़ते हैं, और वो फिर कंडेंस होके मेरे डेसिकेटर में रोज सुबह बारिश होती है। तो ये जल चक्र शुरू है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से CO2 और O2 उनका चक्र चालू है। जब पत्ता गलता है तब उसका विघटन होके उसके सारे मूलद्रव्य, जो 23 मूलद्रव्य शरीर में होते हैं हमारे शरीर में और पौधे के शरीर में, वो सारे मट्टी में गल जाते हैं, और वो सूक्ष्म जीव फिर नए पत्ते को देते हैं। तो ये पूरा चक्र उसमें चल रहा है। मैं निकल जाऊंगा, लेकिन ये डेसिकेटर जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये चलता रहेगा सिस्टम। अभी इसकी अगर आप तुलना पृथ्वी माता से करो, तो पृथ्वी माता भी एक क्लोज डेसिकेटर है। ये पृथ्वी माता जब बनी थी तो जितना सोडियम बना था, जितना कार्बन बना था, उतना ही कार्बन आज है। इसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये जो पुनर्चक्रांकन है, ये सृष्टि का नियम है, ये कालेश्वर का नियम नहीं है, ये सृष्टि का नियम है, ये सदियों से चलता आ रहा नियम है। और ये धरती भी बंद की है किसी ने, ये डेसिकेटर शरद काले ने बंद किया। और धरती किसने बंद की, आपके पास 33 करोड़ ऑप्शन है, किसी का भी नाम लिखिए आप, उसी ने बंद किया। तो ये लेकिन बंद तो है, यहाँ से पानी बाहर नहीं जाता। तो ये पुनर्चक्रांकन इसका नियम है, ये समझने के लिए, ये कचरा नहीं है। अगर मेरे इसमें गलने वाला पत्ता कचरा था तो आज तक वो खत्म हो जाता था सिस्टम, लेकिन वो सिस्टम खत्म नहीं हुआ, ना कोई कचरा उधर दिखता है। मैं वही मैंने कहा कि प्रकृति के विश्वकोश में कोई कचरा शब्द नहीं है। ढूंढने लगा। जो चीज हमें गलत नहीं चाहिए उसे हमने कचरा कहा, लेकिन वो इतनी हद तक लेके गए कि पूरे देश को वो भुगतना पड़ रहा है डंपिंग यार्ड की तरफ से। लेकिन वो
1: कचरा जो है वो बेसिकली एक मानसिकता का शिकार है, और मानसिकता अगर हम वो मानसिकता को बदल सके तो हम कचरे को कचरा न समझ करके उसको हम एक अपॉर्चुनिटी समझेंगे, एक और नया करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ पर एक और मजेदार सवाल मेरे मन में ये आता है कि जब आप विज्ञान सुधा के द्वारा बहुत सारे बच्चों को प्रतिवर्ष मिलते, मैं समझता हूँ हजारों की तादाद में बच्चों से मिलते हैं जो विद्यार्थी हैं और देश का वर्तमान भी है तो कल का भारत भी वही है, जब आप उनसे मिलते हैं तो कौन सी एक चीज आपने अब तक पाई है इन सभी बच्चों में जो कि आपको अंदर के अंदर बहुत खुशी भर देता?
0: बच्चे जो है ना, अगर उनको समझ जाए तो वो अपनाते हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम यही होती है कि सर थाली में खाना फेंकना नहीं है, किसी ने हमें बताया नहीं है, मम्मी सिर्फ डांटती है क्योंकि वो उठा के कचरे में डालना पड़ता है, लेकिन आपने पीछे उसके जो कारण बताए अभी हम जाके बताएंगे, और बहुत आनंद से प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम थाली में खाना नहीं फेंकेंगे और किसी को नहीं फेंकने देंगे, ये भी बोलते हैं और घर में जाके बोलते हैं। तो ये जो बच्चों का ओरिएंटेशन है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये ओरिएंटेशन करना बहुत जरूरी है। मैं टीचर्स को वही बताता हूँ कि हमारे स्कूल में पिकनिक लिया जाया करते थे। कहाँ पिकनिक जाती थी आपको पता नहीं, आपको आश्चर्य होगा, मेरी पिकनिक बैंक में गई थी, रेलवे स्टेशन पे गई थी, और बैंक में बैंक के सारे व्यवहार समझाए थे, जेल में लेके गए थे, अपराधियों से सातवीं में हमने बातें की थी, तो जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए वो लेसन हमें उस पिकनिक में मिला था। तो डंपिंग यार्ड पे मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चों को डंपिंग यार्ड पे ले जाए, उनको दिखाए हमने क्या किया है धरती माता को, कितना तकलीफ दे रहे हैं हम। तो घर में आपके बच्चे अलग अलग रखते हैं, एम्बेसडर, एनवायरमेंटल एम्बेसडर बन जाते हैं और बहुत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। मेरे पास मैसेज ऐसे आते हैं उनके लिखे हुए, बस बहुत सुंदर लिखते हैं बच्चे कि सर हम ये हमारे जिंदगी में कभी गलती नहीं करेंगे कचरे को कचरा कहने की।
1: ये जो बात आपने बताई कि बच्चों को देख करके आपको दिल में ये सुकून आता है कि बच्चे एक बार जो बात समझ लेते हैं उसको वो जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, वो समझ अपना लेते हैं। तो ये दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं और अगर आपके आसपास में बच्चे हैं तो उन्हें डांटने के बजाय उन्हें समझाने का प्रयास करें कि क्या वो गलत कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं उसमें गलत क्या है। तो अगर आप उनको समझाएंगे दोस्तों तो वो जरूर समझेंगे, क्योंकि बच्चों का जो मन होता है वो कभी दूषित नहीं होता है, वो पहले से ही साफ होता है। आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे हैं उनको आपने डांट भी दिया, अगले दिन वो फिर से आपके साथ दोस्त हो जाते हैं, आपस में भी वो लड़ते झगड़ते लेकिन वापस फिर से खेलने लग जाते हैं। लेकिन यही चीज अगर दो बड़ों में झगड़े हो जाए तो फिर वो कितने सालों तक याद रखते हैं, उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले भी उस झगड़े को याद रखते हैं। बच्चों का दिल जो साफ है, तो इसलिए डॉक्टर शरद काले जी का ये सुझाव बिल्कुल ध्यान में रखेगा कि जो भी जीवन में नाने जैसी अच्छी बातें हैं उन्हें समय रहते बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाए। एक और सवाल शरद जी आपसे ये जानने का मन करता है कि आपने देश विदेश दोनों का बड़ा विस्तार से भ्रमण किया है, ना केवल अपने काम के सिलसिले में लेकिन आपने यूं ही बहुत विजिट्स किए हैं। इन सभी ट्रैवल्स में, इन सभी यात्राओं में आपने बहुत कुछ देखा है, समझा है, भारत को भारत क्या बनाती
0: है? देखिए कि एक तो हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में तो रहता ही है, और ये जो वसुधैव कुटुंबकम ये पूरा विश्व मेरा घर है। अभी आजकल हम थोड़े से ज्यादा सेल्फिश हो गए, ये बात सही है, लेकिन जो हमारे जिसे ओरिजिनलिटी कहते हैं, मूल प्रवृत्ति जो है हमारी, एक आतिथ्यशील प्रवृत्ति है, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी देना जानते हैं। अभी आजकल के जमाने में वो शायद थोड़ा कम हो गया है, या अति परिचय अवज्ञा जैसे कहते हैं, वैसे व्हाट्सएप के इतने बातें कर जाते कि सामने आने के बाद बात नहीं करते, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेम्पररी जैसे डिरेलमेंट है, ये टेम्पररी डिरेलमेंट नहीं रहने वाला। मैं बहुत

सकारात्मक आदमी हूं, मैंने कहा मुझे एटॉमिक एनर्जी ने सकारात्मकता सिखाई है, तो मैं यही ये भारतीय मेरा ये मैं देखता हूं उसका, ये वसुधैव कुटुंबकम और ये प्रकृति के से लिया हुआ ऋण प्रकृति को वापस देना, ये जो मूलभूत कल्पनाएं भारत ने विश्व को दी है ये भारतीय है और बहुत सारे देशों ने इसे अपनाई है। जापान में आपको आश्चर्य होगा, तीसरी के बच्चे घर क्लास में आने के बाद ना तो प्रतिज्ञा लेते हैं जापान मेरा देश है, सारे जापानी मेरे भाई बंद है, लेकिन वो क्या करते हैं अंदर आने के बाद पूरा वर्क जो क्लास है वो क्लासरूम साफ करते हैं, दो बच्चे फ्लोर साफ करते हैं, दो बच्चे विंडो साफ करते हैं और बाकी सारे बच्चे वो टर्न लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट पे क्लास शुरू होता है। ये जब मैं स्टोरी बताता हूँ ना भारतीय बच्चों को, कई बार मुझे फोन आते हैं हेडमास्टर से, सर आपने क्या जादू किया, हमारे बच्चे अभी हमारा स्कूल खुद साफ कर रहे हैं। ये होता है, तो ये मूल प्रवृत्ति अगर है हमारे यहाँ तो उसे बढ़ावा देने का सिर्फ सवाल है, वो याद दिलाने का जरूरी है, जागरूकता करने की जरूरत है। अरे ये हमारे ब्लड में है, हमारे खून में है, हम कोई अलग बात नहीं कर रहे, हम ये धरती माता को माता कहते हैं, हम सुबह जब ये धरती पर पाव रखते हैं तो उसकी क्षमा मांगते हैं कि भाई धरती पे माता मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूं इसलिए मुझे क्षमा करना। तो अगर ये जो हमारी परंपरा रही है, और इसे धर्म मत कहिए, ये परंपरा है, भारतीय परंपरा है, ये भारतीय संस्कृति की परंपरा है, यहाँ ना तो कोई धर्म की बात आती है ना किसी भगवान की बात आती है, मेरे लिए भगवान विज्ञान है क्योंकि विज्ञान में मुझे सब उत्तर मिल जाते हैं। तो वैसे आप मैंने भगवान को विज्ञान कहा, आपने उसे आपके ब्रह्म कुमारी में आप इसे वो चक्र में डालते हो या आप कॉन्सेंट्रेट करने, आप क्या करते हो, आप कॉन्सेंट्रेट ही करते हो। तो ये कॉन्सेंट्रेट करना और ये विश्व में आया हूं मैं, मेरा कुछ कर्तव्य बनता है, ये भावना मन में रखना, ये भारतीय है। और ये भारतीयत्व जो है ये कई

0: आता है। कई बार हमारी संवेदनाएं जो है हमें हमारे भूतकाल में लटका देती है या हमारे भविष्य में अटका देती है और वर्तमान में जो हमारे सामने जो मुद्दे हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन डॉक्टर शरद काले जी जैसे लोग जो है वो भारत का ध्यान बार बार उसके वर्तमान पे लेकर के आते हैं, क्योंकि दोस्तों वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है हमारे भविष्य का सुनहरा कल। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर शरद काले जी से हम पूछेंगे कुछ रैपिड सवाल, कुछ सवाल ऐसे जिनका जवाब उन्हें एक एक शब्द में देना है। तो डॉक्टर शरद जी, आर यू रेडी?
1: Yeah, I'm sure. Before that, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, एक श्री कृष्ण जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने गीता के विज्ञान के बारे में एक किताब लिखी हुई, एक मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने कहा अहंकार जरूर होना चाहिए, लेकिन अहंकार खुद से होना चाहिए, कॉम्पिटिशन खुद से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं होनी चाहिए। मैं खुद कितना अच्छा था, आज उससे ज्यादा अच्छा बनना चाहता हूँ, ये कॉम्पिटिशन अगर आपके मन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अहंकार होना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन वो अहंकार को इतना मत बढ़ाओ कि आप सामने वाले से झगड़ा कर बैठे, मोल बैठे। कई बार कई मैं तो ये कहता हूं कि आप 10% आपका अहंकार पीछे रखो, आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये मुझे श्री कृष्ण जी से बहुत अच्छी नसीहत मिली भगवदगीता से।
0: जी, ये जो खुद से प्रतियोगिता करने की बात है, ये व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो खुद के लिए समय निकाले, जो आपने शुरुआत में कही थी कि इस वजह से लोगों को आप ये नसीहत दे रहे हैं कि दिन में कम से कम कोई एक चीज नया सीख करके सोने जाए या एक चीज नई पढ़ करके सोने जाए। खुद के प्रति अगर आप समय निकालेंगे तो खुद से प्रतियोगिता कर ही रहे हैं। अगर आप कुछ नया पढ़ रहे हैं तो अपने कल से प्रतियोगिता कर रहे हैं और आज आप अच्छा बन रहे हैं, एक नई बात सीख रहे हैं। कल जब आप दोबारा कोई नई चीज पढ़ेंगे तो आप आज से बेहतर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों रोज पढ़ने का ये जो सुंदर आदत डॉक्टर शरद काले जी ने अपने जीवन में साझा किया है और हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, वो जरूर कीजिएगा। तो डॉक्टर शरद जी, आपसे पहला सवाल।
1: हाँ जी, बोलिए।
0: शुरुआत वहीं से करते जो आपको बहुत पसंदीदा है, विज्ञान क्या है?
1: विज्ञान जीवन जीने का तरीका है। जीवन विज्ञान ना तो फिजिक्स है ना केमिस्ट्री है, जीवन जीने का तरीका विज्ञान।
0: ज्ञान क्या है?
1: ज्ञान का महासागर हमारे आजू बाजू में है, लेकिन ज्ञान जो हमें समझे वो ज्ञान होता है। जो जैसे महासागर में आप तैर रहे हो लेकिन पानी पीने के लिए एक बूंद भी नहीं मिलेगा, तो ज्ञान के महासागर में आप रहोगे लेकिन आपके जिन में जो है वो ज्ञान है।
0: सेवा क्या है?
1: सेवा ये जो भावना है कि मानव के प्रति एक सेवा की भावना होनी चाहिए, पृथ्वी माता के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए, और सेवा ये मानव का धर्म है। मानव धर्म के जो रास्ता है वो सेवा है।
0: सेवा जो है मानव धर्म है। धर्म क्या है?
1: धर्म ये जीवन जीने का तरीका है। विज्ञान और धर्म में कोई फर्क नहीं है।
0: धर्म जो है धारणा है, जीवन जीने का तरीका है। जीवन क्या है?
1: जीवन ये जो जिसे हम कहते हैं कि ऐहिक, जैसे फिजिकल शरीर मिला है, उस शरीर में ऊर्जा है, चेतना है, और वो चेतना जब तक है तब तक जीवन है। जिस चेतना जब खत्म होती है तब जीवन खत्म हो जाता है। तो ये जीवन का जो काल होता है, जीवन का काल हम तय नहीं कर सकते, किसी और ने तय किया हुआ है। लेकिन वो जो काल के जो क्षण है वो हमारे होते हैं, और हर जो वर्तमान क्षण होता है तो अपना होता है। जो पुराना क्षण है वो ऐतिहासिक हो गया, उसके हम कोई चेंज नहीं कर सकते। आने वाले क्षण पे हमारा अधिकार नहीं होता, लेकिन वर्तमान क्षण पे अधिकार होता है, वही जीवन है।
0: निसर्ग ऋण क्या है एक शब्द में?
1: प्रकृति से जो कर्जा हमने लिया है वो वापस देना है, वही ऋण।
0: एक प्रकार से मातृ ऋण कहेंगे, जो प्रकृति माँ से हमारा ऋण है।
1: मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, निसर्ग ऋण है, शिक्षक ऋण है, स्पोर्ट्स ऋण है, सचिन तेंदुलकर का ऋण है, मधुबाला जी का ऋण है। कई ने अपने जीवन में इतने आनंददायी क्षण हमारे लिए पैदा किए, तो ताकि करोड़ों भारतीय उसमें से आनंद लेते हैं, तो वो ऋण ही होता है।
0: जी, भारत क्या है?
1: भारत एक, जैसे हम कहते हैं कि भारत एक सोच है, भारत देश नहीं है, भारत एक सोच है। और मैं भारतीय हूँ इसका मतलब मैं मानव हूँ, ये बहुत बड़ी सोच है। अगर ये हम हर एक, अभी भी रोमांच आ रहे हैं मेरे शरीर पर जब मैं कहता हूँ कि भारत एक सोच है,

0: हमने उससे देश कहा, हमने कुछ गलती की, हमने उसे कहा कि ये अलग अलग धर्मों से बना हुआ नहीं, भारत एक सोच है, भारत जीने का जीने की राह बताता है आपको, भारत के हर कोने से कोई नई जीवन की राह, जीने की राह मिलेगी, जीवन की राह मिलेगी, ऐसे अनेक राहें हमें मिलते रहेंगे और हमारा जीवन सुंदर बना रहेगा, यही भारत।
1: बहुत सुंदर, भारत एक सोच है जो कि जीवन को सुंदर बनाने वाला सोच है। आखिरी सवाल, डॉक्टर शरद काले कौन है?
0: मैं एक जैसे पंचतत्व से निकला हुआ आत्मतत्व हूँ, ना तो मेरी खुद की पहचान है ना मैं पहचान चाहता हूँ, लेकिन जो काम मुझे दिया है, मेरे शरीर को दिया है, मेरे मन को दिया है, वो मैं अंत तक करता रहूं, और अगर अंत तक करता रहूं और अगले लास्ट प्रीत तक वो मरते समय मैं बच्चों के साथ बात कर रहा हूं, तो मैं शरद काले होने का सार्थक किया ऐसे लगेगा, नहीं तो मैं एक तुच्छ आत्मा हूं।
1: ये आपने कहने का ये प्रयास किया कि डॉक्टर शरद काले की पहचान उनके सेवा से है, उनकी भावना से है
0: जी, नाम से नहीं है।
1: बिल्कुल डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते करते समय का पता नहीं चलता और इसलिए बातें जो है और करने का मन करता है, क्योंकि समय फिर खींचता नहीं है आपको, लेकिन हम सोचते हैं कि फिर कभी आपसे जरूर मुलाकात होगी, दोबारा आप हमें समय देंगे और दोबारा हम आपसे बात कर सकेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपके जैसे बुद्धिजीवी, जब भारत के ऐसे सुपुत्र जब सामने इकट्ठे होते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो आपके जैसे दो तीन अगर हमारे साथ हो जुड़े, एक पैनल डिस्कशन हो और उस डिस्कशन के दौरान कई ऐसे बहुमूल्य रत्न निकल के आएंगे सागर मंथन की तरह, जो कि हमारे सभी श्रोता साथियों को बहुत बहुत ज्यादा गौरवान्वित करेंगे, बहुत ज्यादा उनको प्रेरित करेंगे। ऐसे समय के लिए हम जरूर आगे देखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे।
0: जरूर आप कभी भी बुलाइए, मैं कभी आपके इन्विटेशन, कृष्णा बहन को मालूम है मैं आपके साथ काफी जुड़ा हूँ, और जब भी वो बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ
1: जी। आपके साथ समय बिता करके बड़ा ही सुकून अनुभव हो रहा है, न केवल मुझे, हमारे श्रोताओं को भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने समय से हमारे लिए बेशकीमती कुछ पल निकाले और अपने ज्ञान के भंडार से हमें भरपूर किया। आपका और आपके कार्य के लिए, आप दोनों के सेहत और सफलता के लिए हमारी तरफ से ढेर शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब तक आप सुन रहे थे आज के हमारे मेहमान, यशस्वी भारत कार्यक्रम के बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर श्री शरद। यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में आप सुन रहे थे डॉक्टर शरद काले जी को। डॉक्टर शरद काले जी भारत के जाने माने वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने कचरे के समाधान को बहुत ही अनुसंधान के द्वारा एक ऐसा समाधान निकाला जो कि न केवल कचरे का समाधान करता है, लेकिन भारत को कई चीजों से नवाजता भी। एक कचरा जिसके समाधान से ईंधन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, जैविक खाद निकलता है और लोगों को रोजगार मिलता है। निसर्ग्रह इस सुंदर से अनुसंधान को जन्म दिया डॉक्टर श्री शरद काले जी, लेकिन वो इसका श्रेय खुद को नहीं, अपने माता पिता और अपने उन 68 शिक्षकों को देते हैं जिनका उन्हें नाम तक याद है। दोस्तों मेरे और आपके जीवन में कितने शिक्षक आए, लेकिन उनका शायद हमें नाम भी नहीं याद, थोड़ा थोड़ा शायद रूप याद होगा, स्वरूप याद होगा, कुछ बातें याद होंगी, लेकिन शिक्षकों को इतने दिल से याद रखना तभी मुमकिन है जब आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और उनसे कुछ सीखने को आप सदैव तत्पर रहते हैं। जब आप हमेशा सीखते हैं आप एक विद्यार्थी बने रहते हैं, और जैसे डॉक्टर शरद काले जी ने आज के एपिसोड में कहा कि जीवन जीने का तरीका ही ये है कि जब आप सदा एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जीवन जीते, रोज कुछ नया सीखने का आप में जज्बा रहे, तब आपका जीवन सफल कहला सकता है। आज के हमारे एपिसोड से हमने कई चीजें सीखी और मैं मानता हूँ कि आप सबसे पहले जो चीज अपनाएंगे वो ये कि भोजन को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, और घर में जो भी गीला कचरा है उस गीले कचरे को आप एक प्रॉपर समाधान देंगे, उसका आप खुद ही निवारण कर सकेंगे। इसका भी टिप आपको डॉक्टर शरद काले जी ने सुनाया, जिसे उन्होंने बहुत सुंदर नाम दिया निसर्ग लक्ष्मी। तो मैं कहूंगा आप भी अपने घर में एक निसर्ग लक्ष्मी का तैयारी कर लीजिए, दिवाली के पहले दिवाली की तैयारी कर लीजिए और निसर्ग लक्ष्मी

0: के द्वारा अपने दिल के कचड़े का समाधान जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में हम आपके बीच में एक और ऐसे खास शख्सियत को लेकर के मौजूद होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको अपने से और हर एक से एक प्रॉमिस जरूर करनी कि आप कचड़े का समाधान सम्मान से करेंगे, कचड़े को कचरा ना समझ करके उसको साधन समझ करके उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और रेडिओ मधुबन सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे।
1: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
2: अश्विनी
1: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
3: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाते।
1: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है भाग्य की कलम आपके हाथ में। अक्सर हम अपने जीवन में यह कहते सुनाई देते हैं, मेरे भाग्य में ही नहीं था, किस्मत खराब है या जो लिखा है वही होगा। लेकिन क्या वास्तव में हमारा जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है? क्या हम सिर्फ दर्शक हैं या फिर अपने जीवन के लेखक भी हैं? श्रोताओं, यदि ईमानदारी से उत्तर खोजें तो पाएंगे कि भाग्य की कलम वास्तव में हमारे हाथ में ही होती है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा परिश्रम, यही हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारास्ते, अर्थात हमारा अधिकार कर्म पर है। कर्म ही वह सही है जिससे हम अपने भाग्य के पन्नों पर शब्द लिखते हैं। जो व्यक्ति मेहनत करता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहता है, वही अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने कठिन परिस्थितियों को कभी अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने परिश्रम, अनुशासन और सपनों की शक्ति से न केवल अपना भविष्य बदला बल्कि पूरे देश को दिशा दी। यदि वे मान लेते कि गरीबी उनका भाग्य है तो क्या वे मिसाइल मैन बन पाते? प्रिय श्रोताओं, जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, परंतु असफलता को भाग्य का दोष देना अपने भीतर झांकने से बचने का आसान तरीका है। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं बल्कि सिखाने आती हैं। हर ठोकर हमें यह बताने आती है कि रास्ता बदलो, प्रयास बढ़ाओ, हिम्मत मत हारो। नकारात्मक सोच हमारे जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है। जब हम बार बार अपने भाग्य को कोसते हैं तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि बदलाव की शुरुआत मुझसे ही होगी, उसी दिन भाग्य भी हमारा साथ देने लगता है। साथ ही सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना आवश्यक है। कई बार हम गलत फैसले ले लेते हैं और परिणाम आने पर कहते हैं किस्मत ही खराब थी, लेकिन वास्तव में वह हमारे निर्णयों का फल होता है। यदि हम सोच समझकर विवेक के साथ कदम बढ़ाएं तो सफलता के अवसर अपने आप बनने लगते हैं। श्रोताओं, जीवन एक खुली किताब की तरह है। हर नया दिन एक खाली पन्ना है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पन्ने पर शिकायतों की कहानी लिखते हैं या संघर्ष और सफलता की प्रेरक गाथा। भाग्य कोई बंद तिजोरी नहीं है जिसकी

चाबी किसी और के पास हो। वह एक कलम है और वह कलम हमारे हाथ में है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भाग्य का इंतजार मत कीजिए, भाग्य का निर्माण कीजिए। मेहनत, सकारात्मक सोच और सही दिशा, यही वह ताकत है जो आपके आज को बेहतर और आपके कल को उज्जवल बना सकती है। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मी काका स्मृती शिंदे, त्यामुळे हे पीक विमाचा अनुदान रक्कम 1,08,000 रुपये मिळाले आहे। तर काही गोष्टींमुळे येत असतं, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा लाभ शासनाच्या योजनेचा लाभ घेतला पाहिजे, त्यामुळे शेतकरी समृद्ध होऊ शकेल।
2: खरीफ पीक विम्यासाठी लवकरच नोंदणी करा।
3: बँक शाखा, विमा कंपनी, कृषी ऋण समिती, जनसेवा केंद्राशी संपर्क करा।
4: पीक विमा संबंधित अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन नंबर 1444 7 वर कॉल करा।
5: पीक विमा काढा हो, सुरक्षा कवच मिळवा हो।
6: नमस्कार, welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
7: Om Shanti.
6: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
7: Thank you so much.
6: Hua yun ke jab aap baat karti hain to kuch homework milta hai to hum padhne jate hain, padhne bhi jate hain, karne bhi jate hain, utne mein aajkal aisi hi cheeze aa jati hai samne. It says growing up means learning to dig beneath surface. Surface behavior. And discern the true motives of others. And to respond to intent, not behavior.
7: Kitni pyari line hai. Growing up means, matlab atma ki maturity agar bade, atma ki shakti agar bad rahi hai, to uska sign kya hai? कि व्यवहार को ऊपरी लेवल पर सिर्फ व्यवहार को नहीं देखना है, ना औरों के
6: बिहेवियर,
7: ना औरों के ना अपने. इट सेज अदर्स बिहेवियर बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू अस, अपने लिए भी, कि सिर्फ ऊपरी लेयर को नहीं देखना है क्या बोला क्या किया, लेकिन गहराई में जाना है उसके,

0: मैंने क्या किया,
1: मैंने अपने आप के साथ कैसा व्यवहार किया उस दिन?
0: अपने आप को पहले तो डांटा, कर्ज किया,
1: हाँ।
0: दूसरा बोला कि आज के बाद तू जिंदगी में ये नहीं
1: करेगा। इतना सब जो किया ना, इतना सब जो किया तो उन्होंने तो उतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी मेरी।
0: आई एम वेरी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ।
1: दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट। अगर स्ट्रिक्ट होना है ना अपने आप के साथ, तो स्ट्रिक्ट इस लेवल पर होना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर ले, सामने वाला कुछ भी बोल दे, आई एम गोइंग टू बी सो स्ट्रिक्ट कि कोई मुझे हिला नहीं सकता। ये स्ट्रिक्ट
0: बोले जा भाई, एक काम करो, बाहर निकलो एयरपोर्ट से,
1: एक
0: राइट हैंड पे जाना, वहाँ रिक्शा मिलेगी, रिक्शा में बैठ के आ जाना, मैं पैसे दे
1: दूंगा। उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते उनके
0: लिए। आपकी सर
1: प्रैक्टिकल लाइफ की ही तो बात हो रही है। ये
0: सुधार तो इसी तरह होगा ना।
1: सुधार किसका?
0: मेरा हुआ ना?
1: नहीं हुआ। सी, सुधार नहीं हुआ। आज भी हम फील करते हैं कि हमारा रिस्पांस राइट था। अगर आज भी हम फील करेंगे कि वो रिस्पांस राइट था, इट विल मीन हम आज भी हम वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे।
0: हाँ,
1: तो फिर सुधार का
0: सिचुएशन ही नहीं आने दूंगा ना।
1: कोई और सिचुएशन तो आ जाएगी ना, सिमिलर आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। आइडेंटिकल नहीं आएगी ना, कोई और तो कितनी सारी आएंगी जहां आपको लगेगा कि लोगों ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा करना चाहिए, उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए। सिचुएशंस आएंगी नहीं उसके बाद, इस 30 सालों में, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद अब तक 30 इयर्स आपने कहा ना, इस 30 इयर्स में इतनी कितनी सिचुएशन आई होंगी ऐसे कि जहां लोगों ने वैसा ट्रीट या रिस्पेक्ट नहीं किया होगा जितना आप समझते हैं कि मिलना चाहिए, आई होंगी या नहीं आई होंगी?
0: बहुत आई,
1: बहुत आई होंगी। एंड मेजोरिटी में आप डिस्टर्ब हुए ना हर बार?
0: मेजोरिटी में हुआ, कहीं बहुत बार चला गया तू वापस, काम है इससे बोल दिया और निकल गया, उसके बाद उनके घर कभी नहीं गया, कई बार हुआ।
1: तो फिर किसने किसका नुकसान किया, कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई? जहाँ आप बोल रहे हो मैं सुधर गया, कहाँ सुधर गया मैं? आप कह रहे हैं मेरे अंदर मैं स्ट्रिक्ट हो गया, कहाँ स्ट्रिक्ट हो गए? यही अगर उस
0: बॉम्बे जाके किसी के घर नहीं रहना, वो तो स्ट्रिक्ट हो गया ना।
1: बट उससे क्या हुआ, और वो सिचुएशन आई, नई और सिचुएशंस आ गई। सी, वो एक सिचुएशन नहीं आई ना फिर से। आपने कहा मैं स्ट्रिक्ट हो गया।
0: मैंने एक बड़े वीवीआईपी के साथ बैठा हुआ था,
1: हाँ।
0: तो वो चीफ गेस्ट था और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, दोनों मतलब चीफ गेस्ट ही थे बराबर के। तो बाद में कोई और बड़े वीआईपी आए, तो हम लोग स्टेज के सामने बैठे थे, तो हमारे सामने जगह थी, वहां और सोफे लाके लोग लगाए, उनको बिठा दिए, और ये बार बार बोले मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरी तो बेइज्जती हो गई है, मेरे सामने दूसरे लगा दिए।
1: तो फिर आपको
0: तो मैंने उसको समझाया बहुत, मैंने बोला रहने दो ना, आप अपना स्पीच दे के जल्दी चले जाना।
1: हाँ।
0: उठ के घर चला गया वो।
1: तो वो बात सही लग रही है कि वो उठ के चला गया?
0: उनको भी तो समझ होना चाहिए।
1: उनको नहीं, वो उठ के चला गया, वो बात सही लग रही है।
0: He thought it was right, right? मैंने गया, मैं तो थोड़ा दोस्त था मेरा वो आदमी।
1: हाँ, लेकिन हाँ, आप कितनी बार उठ के चले गए थे?
0: मैं तो फ्रेंड नहीं होता तो मैं चले जाता।
1: पावर, आत्मा कितनी वल्नरेबल है, कितनी वल्नरेबल है। रिस्पेक्ट ऐसे मांग रही है, रिस्पेक्ट दो। मेरी रिस्पेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? मेरी रिस्पेक्ट इस पे डिपेंडेंट है कि मैं कहाँ बैठूंगा, कैसे चलूंगा, गाड़ी कौन सी आएगी, मकान कौन सा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी रिस्पेक्ट उन चीजों पे डिपेंडेंट है।
0: दुनियादारी है कि नहीं?
1: है, लेकिन अगर सामने वाला वैसा नहीं करेगा जैसा हम सोचते हैं कि राइट है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखेंगे ना। हम कितने वल्नरेबल हैं, इतने कमजोर हैं कि किसी ने वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था, तो हम हिल ही गए पूरी तरह से अंदर।
0: आप ही तो कई बार कहते हैं ना, दूसरे का भी मान देना चाहिए, दूसरे को मान देना चाहिए।
1: वो उनको देना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं दिया हमें, तो हम अपने को नहीं मान देंगे, हम अपने सम्मान में नहीं
0: रहेंगे। मैं तो समझा कि अपने को मान देना है कि चलो भाई, जहाँ जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ नहीं रहना, खत्म।
1: कौन वॉकआउट करेगा ऐसी सिचुएशन से जो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वहां बैठ ही नहीं सकता अब उसके बाद? वही वॉकआउट करेगा ना, कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उतनी नहीं है कि वो एक सोफे के बिना बैठ नहीं सकता अब उस जगह के ऊपर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट
0: नहीं, उसके सामने आ गया। मैं तो उसकी बात
1: ना, मतलब फर्स्ट रो पे नहीं मिली ना सीट बैठने।

0: बैठा था फर्स्ट पे था,
1: बट उसके बाद तो वो सेकंड रो हो गई ना,
0: सेकंड हो गई,
1: तो एक सोफा नहीं मिला,
0: थर्ड भी हो गई,
1: एक गाड़ी नहीं मिली, एक सलाम नहीं मिली, एक प्यार से किसी ने बात नहीं किया, एक किसी ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया, एक किसी ने कह दिया आपको ये बात समझ नहीं आएगी, एक किसी ने कहा आप तो इंटेलिजेंट नहीं है। 30 ईयर्स में कितनी सिचुएशंस आ गई, सेम सिचुएशन तो आनी नहीं, फिर से डिफरेंट आई। अगर उस दिन जो फिर वापस जाते हैं, उस दिन आपने एक रूल बनाया कि इसके बाद मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अगर उस दिन एक अलग रूल बना लेते हैं कि इसके बाद लोग मुझे कैसा भी ट्रीट करें, क्योंकि मैं जो हम ध्यान रख सकते हैं हम रख सकते हैं, लेकिन सब चीज का हम ध्यान नहीं रख सकते। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, द वर्ल्ड इज नॉट इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर हम उस दिन ये रूल बना लेते कि किसी का व्यवहार, किसी की बाह्य रिस्पेक्ट मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं हिला सकती, अगर वो रूल उस दिन बना लिया होता 30 ईयर्स में कितनी एनर्जी बच जाती। बाह्य चीजों के कितने रूल्स बना लेते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें ऐसा हो, ये सब बाहर के रूल्स हैं। अंदर के लिए तो रूल ही नहीं बनाया कभी, और उस दिन भी नहीं बनाया, फिर 30 साल में वही संस्कार वर्क होता गया। आज भी अगर फील करेंगे कि वो राइट था तो और 30 साल फिर उसी संस्कार से चलेंगे, चेंज नहीं आएगा। अभी भी जब हम चेक कर रहे हैं, परख रहे हैं उस सिचुएशन को, तो हमें उनकी गलतियां दिखाई दे रही हैं सारी। हमारा फोकस किस पर होना है? दिस इज द पावर टू डिसर्न। मैं उस दिन डिस्टर्ब हुआ, मेरा बिलीफ सिस्टम ये था कि रिस्पेक्ट मीन्स, सी व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट मीन्स दिस, रिस्पेक्ट मीन्स आई एम अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज माई रिस्पेक्ट टूवर्ड्स माई सेल्फ, दिस इज माई डिग्निटी फॉर माई सेल्फ। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन दूसरे ने गाड़ी नहीं दी, किसी ने फूल नहीं दिया, किसी ने सलाम नहीं किया, उन छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब्ड। आज एक नया रूल बनाते हैं
0: जी,
1: कि लोग मुझे क्या सम्मान देते हैं, वो भी आउटवर्डली सम्मान। ये तो एक्चुअली सम्मान भी नहीं है, इसको सम्मान नहीं कह सकते। सम्मान तो वो होता है जो वाइब्रेशन कोई मुझे देता है, रिस्पेक्ट तो उसमें ही है। कोई गाड़ी आपको दे भी सकता है, बड़े से बड़ी गाड़ी, लेकिन वो अंदर अगर आपके लिए अच्छा नहीं सोचे तो उसको रिस्पेक्ट बोलेंगे? पहली बात तो वो भी रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट गाड़ी में तो है ही नहीं, रिस्पेक्ट तो उसकी भाव और भावना में। अभी आपने पढ़ा था ना शुरू में, डोंट गो बाय द आउटवर्डली बिहेवियर, see the intention, the intent, the motive of the person. तो respect behavior में नहीं, respect तो intention में, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिले।
0: नहीं सिस्टर, मैं ये intention के बाद अगले एपिसोड पे बात करूंगा, क्योंकि उनकी intention से ये पता चलता, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता या उनके घर चीफ मिनिस्टर आ रहा होता, तो वो अपनी मर्सिडीज जो घर पे रखी हुई है वो घर पे रहने देते क्या?
1: वो क्या करते, और वो
0: इंटेंशन उनकी रॉन्ग थी,
1: वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगेन सी डीप बिलीफ, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट। आप कितने लोगों को इस तरह से एनालाइज करेंगे, कितनी एनर्जी जाती है, कितना एनालाइज हम कर रहे हैं। उतनी देर में अगर हम फोकस अपने ऊपर कर लेते, इवन इफ इट मेंट कि ठीक है मुझे ये सही नहीं लगा, चाहे वो इतनी छोटी बात या बड़ी बात, मुझे ये सही नहीं लगा, मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता, इवन देन। लेकिन अंदर की स्थिति कैसी थी, अंदर जो डिस्टर्ब हुए, अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति से हिले, फिर उनको इतना अंदर क्रिटिसाइज किया होगा, उनको कितनी नफरत क्रिएट
0: कर गया, फिर उनके घर
1: आज तक फिर उनके घर भी नहीं गए,
0: नहीं एक बार भी नहीं गए।
1: ये है लैक ऑफ अपने आप को अच्छा ट्रीट करना। जब तक हम सब अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हम दूसरे की कहाँ रिस्पेक्ट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ओनली दिस, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है। सारा दिन कितनी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों में, स्पिरिचुअलिटी मीन्स फोकसिंग ऑन द स्पिरिट, अपने पर फोकस करके चल।
0: अगले एपिसोड में बात करते, लेकिन मैं उनके घर कभी जाऊंगा भी नहीं,
1: वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
0: थैंक यू सो मच।
1: ओम शांति।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

भारत की गाथा हमने कितने गीतों, कितने काव्यों और कितने ही लेखों में पढ़ी है, पर हम अपने इस देश के अनेक हिस्सों की खूबसूरती से ठीक से वाकिफ नहीं हो पाते। इसलिए इस बार हम आपको ले जा रहे हैं मिलाने उन संस्कृतियों से जो हमारे भारत को और सुंदर बनाती हैं। स्वागत है आपका भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की अगली कड़ी में, जहां सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं प्रकृति के अति धनी प्रदेश मेघालय। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में एक राज्य है। मेघालय का निर्माण असम के अंतर्गत 2 अप्रैल 1970 को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में किया गया। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। पूर्ण राज्य मेघालय 21 जनवरी 1972 को बना। इसकी उत्तरी और पूर्वी सीमाएं असम से और दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघों का आलय अर्थात बादलों का घर। मेघालय मूलतः एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ खासी, जैंतिया और गोरों आदिवासी समुदाय के लोग मुख्यतः रहते हैं। मेघालय के मध्य और पूर्वी भाग में खासी और जैतिया पहाड़ियाँ और एक विशाल पठारी क्षेत्र है। यहाँ विस्तृत मैदान, पहाड़ियाँ, नदी और घाटियाँ हैं। पहाड़ की तलहटी पर समतल भूमि की संकरी पट्टी बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगी है। जब भारत अंग्रेजों के गिरफ्त में था तो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मेघालय भी बना। यहाँ के अनेकों नामों में से एक नाम जिसने ब्रिटिशर्स को मुंह तोड़ जवाब देने का दम दिखाया, वे थे पा तोगन निंगमिंसा, जो एक बेहद हिम्मतवान योद्धा थे। उनका जन्म मेघालय के एक गांव में हुआ। सन 1872 में कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने गैरो हिल्स में प्रवेश कर लिया और एक गांव में अपना पड़ाव डाला। इस पर उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया। उन्होंने कुछ सैनिकों को तो मार दिया, पर ब्रिटिशर्स की बड़ी ताकत का वे सामना नहीं कर पाए और शहीद हो गए। आज भी हर साल 12 दिसंबर को गैरो हिल्स में लोग उन्हें याद करते हैं तथा मेघालय की सरकार भी उस दिन को हर वर्ष मनाती है।

मेघालय प्रधानतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल और मक्का हैं। इनके अतिरिक्त संतरे, अनानास, केला, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। संस्कृति ही हर प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करती है। चलिए आपको कुछ बताते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। ये क्षेत्र जनजातीय संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। घूमने के लिहाज से मेघालय राज्य में अनेक गुफाएं, पर्वत शिखा, बाग, झील रिजॉर्ट स्थल, खूबसूरत दृश्यावलियाँ, गर्म पानी के सोते और जलप्रपात है। यहाँ प्रमुख पर्यटक स्थलों में शामिल हैं शिलोंग, उमियाम झील, चेरापूंजी, चाक्रियम, मैरोंग, जोवाई, नार्सियांग, तुरा, सीजू और बलपाक्रम राष्ट्रीय उद्यान।

चलिए अब चलते हैं लेने आनंद यहाँ के त्योहारों का। मेघालय का पोंगलांग नोंगक्रेम खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है जो 5 दिन तक मनाया जाता है। ये शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्मित नामक गांव में मनाया जाता है। शाद सुन मिनसीव खासियों का एक और महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार हर साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शिलोंग में मनाया जाता है। गोरो आदिवासी सलजोंग नामक देवता के सम्मान में अक्टूबर नवंबर में बांगला नामक त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार लगभग 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। अगर वक्त आपके पास है तो देखने के लिए मेघालय में बहुत कुछ है। यहाँ पर प्रकृति अपने भव्य रूप में उपस्थित है। राजधानी शिलोंग में भी अनेक सुंदर स्थल हैं, जिसमें वॉट्स लेक, उमियाम झील, लेडी हैदरी उद्यान, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, हाथी झरना और शिलोंग की पर्वत चोटी प्रमुख है। शिलोंग की पर्वत चोटी से पूरे नगर का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का गोल्फ कोर्स देश के अच्छे गोल्फ कोर्स मैदानों में से एक है। मेघालय से शिलोंग का मनोरम प्राकृतिक परिवेश पूरे वर्ष अवकाश बिताने के लिए उत्तम है। गाड़ी से जाने योग्य पर्वतीय स्थानों में से एक माने जाने वाला शिलोंग में ऐसे पर्यटन स्थल है जहाँ इतना अधिक पैदल नहीं चलना होता। शिलोंग की उपयुक्त सुविधाएं, मनोरम दृश्य, खुशहाल लोग, बादल और लंबे पाइन के पेड़, पर्वत, घाटियाँ, दलदल और एक शानदार गोल्फ कोर्स शिलोंग को एक अच्छा गंतव्य बनाते हैं। इसके अलावा घूमने के लिए पश्चिमी गारो पहाड़ी जिले में स्थित नोकरेक नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व तूरा भी है। नोकरेक गारो पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहाँ हाथी तथा हूलॉक गिब्बन सहित अनेक प्रकार की वन्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस पार्क में सिट्रस इंडिका की अत्यंत दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है मेमोंग नारंग। नोकरेक को जंगली मनुष्य का घर माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थित है बालपकराम नेशनल पार्क जो दुनिया में सबसे अधिक दुर्लभ लाल पांडा का घर माना जाता है। इसका सामान्य रूप से नाम लेसर पांडा है। ऐसे और कई दार्शनिक स्थल मौजूद है मेघालय में जहाँ की खूबसूरती हर किसी का दिल लुभाने में

आप बढ़ते हैं एक और सुंदर मंजिल की ओर और आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का शाब्दिक अर्थ है उगते सूर्य की भूमि। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, किंतु चीन राज्य के एक भाग पर अपना अधिकार दक्षिणी तिब्बत के रूप में जताता है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी और असमिया है, साथ ही यहाँ अंग्रेजी भाषा भी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाना जाता था। इस राज्य के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रमशः भूटान, तिब्बत, चीन और म्यांमार देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और आसाम से भी मिलती है और इस राज्य में पहाड़ी क्षेत्र है। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भागों की ओर है। कोमेंग, सुबनसिरी, सियोंग, लोहित और तिरप आदि नदियाँ इन्हें अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अगर बात करें इतिहास की तो अरुणाचल प्रदेश का इतिहास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है। मौखिक परंपरा के रूप में कुछ थोड़ा सा साहित्य और ऐतिहासिक खंडर है जो इस पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। इन स्थानों की खुदाई और विश्लेषण के द्वारा पता चलता है कि ये ईसवी सन प्रारंभ होने के समय के हैं। अरुणाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास 24 फरवरी 1826 को यंडावू संधि होने के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के बाद से प्राप्त होता है। संवैधानिक रूप से ये असम का ही एक भाग था, परंतु सामरिक महत्व के कारण 1965 तक यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय करता था। 1965 के पश्चात असम के राज्यपाल के द्वारा यहाँ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। इन सब के बाद 20 फरवरी 1987 को ये भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। ब्रिटिश काल के दौरान अरुणाचल के लोगों ने भी उनसे लोहा लिया, जिसमें से एक थे ताजी मिद्रेन। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी तथा 1955 में 3 ऑफिसर्स को मार गिराया। उन्होंने ब्रिटिश राज के विस्तार को रोकने के लिए अपने साथी मिश्मी आदिवासियों को एकत्रित करके काम किया, पर दिसंबर 1917 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा 1918 में वे अपना कर्तव्य निभाते शहीद हो गए।

भौगोलिक आधार से देखें तो अरुणाचल का अधिकतर भाग हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित चांगलांग और तिरप पतकई पहाड़ियों में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला आगे नागालैंड की ओर मुड़ जाती है और भारत और म्यांमार के मध्य चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक सीमा का कार्य करती है। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ ऑर्चिड फूल भी पाए जाते हैं और कई हरी भरी खाटियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवन की ओर। यहाँ के लोकगीत, संगीत, हस्तशिल्प सभी कुछ मन लुभावना है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के लोगों की अपनी अलग अलग पगड़ी एक परिधान है। बुनाई कला का यहाँ अपना महत्व है। एवं हर जनजाति की अपनी विशिष्ट शैली है। नृत्य यहाँ के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग है तथा लोसर, मेपिन एवं सोलुंग यहाँ के प्रमुख जनजातीय पर्व हैं। अरुणाचल के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों में अदी समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय के त्योहार दुसार, अपनानी समुदाय का द्री, तगिनो समुदाय का सी दियोंगे, दोन्याई आदि भी शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश भी अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह पर्यटन का एक केंद्र है तथा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थानों में त्वांग, दिरांग, बोमटिला, ईटानगर तथा जगहों में पापुलपेड़, त्वांग मठ आदि है। अरुणाचल स्थित एक दार्शनिक स्थल ईटा किला भी है, जिसका निर्माण 14-15वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके नाम पर ही इस जगह का नाम ईटानगर है। इस किले से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। किले को देखने के बाद सैलानी पौराणिक गंगा झील भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीले रंग की है और इस मंदिर का निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। मंदिर में एक संग्रहालय भी है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है, जहां पूरे अरुणाचल प्रदेश की झांकी देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त यहां पे लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, सुंदर कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियों का संग्रह देखा जा सकता है। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है। अन्य स्थानों में दोन्य पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान प्रमुख हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लुकियो यानी मिजोरम। मिजोरम भारत गणराज्य में एक पर्वतीय प्रदेश है। मिजोरम के पूर्व और दक्षिण में म्यांमार और पश्चिम में बांग्लादेश है। पश्चिमोत्तर में त्रिपुरा, उत्तर में असम तथा पूर्वोत्तर में मणिपुर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। फरवरी 1987 को भारत का 23वां राज्य बना। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले ये आसाम का एक जिला था। मिजोरम में प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है और इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती हैं। ये क्षेत्र विभिन्न प्रजाति के प्राणियों तथा वनस्पतियों से संपन्न है। चलिए पढ़ते हैं मिजोरम के निपुण इतिहास की ओर। 1891 तक उत्तर का लुशाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और आधा दक्षिणी भाग पश्चिम बंगाल के अधीन रहा। 1858 में दोनों को मिलाकर एक जिला बना लिया गया, जिसका नाम लुशाई हिल्स जिला रखा गया। ये असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन में आ गया। 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू होने पर मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 1986 में हुए ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप 20 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत में चले स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा मिजोरम भी बना। यहाँ के रोपुल नानी मिजोरम के इतिहास का एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता नहीं किया। सन 1993 में उन्हें जेल में डाल दिया गया था, जहाँ एक साल बाद उनकी मृत्यु हो गई।

मिजोरम की पहाड़ियाँ घने सदाबहार वनों से ढकी हैं, जिसमें चंपक, आयरनवुड और गुर्जुम जैसे मूल्यवान इमारती लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथी, बाघ, भालू, हिरन और जंगली भैंसों समेत कई जंतुओं का पर्यावास है। कृषि यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। मिजोरम प्रदेश के लगभग 80% लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती का प्रचलन है। अनुमानतः 21 लाख हेक्टेयर भूमि में 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि बागवानी के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ एंथूरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, आर्चिड, गुलाब तथा कई अन्य मौसमी फूलों की खेती भी होती है। मसालों में अदरक, हल्दी, काली मिर्च भी यहाँ उगाई जाती हैं। यहाँ के लोग पाम ऑयल, जड़ी बूटियाँ तथा सुगंधित पौधों की खेती भी बड़े पैमाने पर करते हैं। चलिए अब सांस्कृतिक रूप से जानते हैं मिजोरम को। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में नृत्य और संगीत मूल तत्व हैं। यहाँ के त्योहारों में ईसाई धर्म के पर्व और स्थानीय कृषि त्योहार जैसे चपचारकुट, पालकुट और मिमकुट शामिल है। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। मिजो और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का उपयोग होता है। चलिए अब मनाते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख त्योहार। मिजो नागरिक मूलतः किसान हैं, अतः उनकी तमाम गतिविधियाँ तथा त्योहार भी जंगल की कटाई करके जाने वाली झूम खेती से ही जुड़े हुए हैं। त्योहार के लिए मिजो में कुट शब्द का प्रयोग होता है। मिजो लोगों के विभिन्न त्योहारों में से ज्यादातर तीन प्रमुख त्योहार चपचार, मिमकुट और थालपोंग कुट मनाए जाते हैं। पर्यटन के लिहाज से मिजोरम एक अत्यंत सुंदर जगह है। समुद्र तट से लगभग 4000 फुट की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय नगर आइजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। म्यांमार की सीमा के निकट चम्फाई एक सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ तामदिल एक प्राकृतिक झील भी है, जहाँ मनोहारी वन है। ये आइजोल से 80 किलोमीटर और पर्यटक स्थल सैतुअल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वानतांग जलप्रपात मिजोरम में सबसे ऊंचा और अति सुंदर जलप्रपात है, जो बॉक के निकट जिला पार्क में अल्पाइन पिकनिक हट तथा बेरो तलांग में मनोरंजन केंद्र भी बनाए गए हैं। और भी अनेक स्थलों की मौजूदगी में आपका समय मिजोरम में कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा।

चलते हैं हमारी अगली मंजिल की ओर, जिसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यानी कि नागालैंड, जहां आपको सभी अन्य पूर्वी प्रदेशों की भांति खूबसूरत प्रकृति और अनेक सांस्कृतिक रंग मिलेंगे। आइए जानते हैं कुछ यहां के बारे में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का 16वां राज्य बना था। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम

और दक्षिण में मणिपुर है। इसकी राजधानी कोहिमा है। असम घाटी की सीमा से लगे क्षेत्र के अलावा इस राज्य का क्षेत्र अधिकांशतः पहाड़ी है। इसकी सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम सरमती है, जिसकी ऊंचाई 3840 मीटर है। ये पर्वत श्रृंखला नागालैंड और म्यांमार के मध्य एक प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्माण करती है। 12वीं-13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ, लेकिन इससे इन लोगों के रहन सहन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन पर ये राज्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन आ गया। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। ये नगा हिल्स त्वेनसांग क्षेत्र कहलाया। ये प्रशासन नागरिकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और यहाँ असंतोष पनपने लगा। अतः 1961 में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया और इसे भारतीय संघ के राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को हुआ। भूगोलिक नजर से देखें तो नागालैंड का लगभग समूचा हिस्सा पर्वतीय है। उत्तर में नागा पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र घाटी से अचानक 610 मीटर की ऊंचाई तक उठती हैं, और इसके बाद दक्षिण पूर्व दिशा में इनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक हो जाती है। म्यांमार सीमा के पास ये पहाड़ियाँ पटकोई पर्वत श्रृंखला से मिल जाती हैं, और यहाँ इनकी सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बिना भारत के किसी भी प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर बात करें नागालैंड की तो ये भी मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। चावल यहाँ का प्रमुख भोजन है। कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 70% में धान की खेती होती है। यहाँ मुख्यतः स्लेश और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। नागालैंड राज्य की लगभग 90% जनता कृषि में लगी है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिलहन, गन्ना और आलू हैं।

चलिए अब भविष्य को सवारने वाले क्षेत्र यानी शिक्षा जगत की बात करते हैं और जानते हैं नागालैंड में शिक्षा के बारे में। यहाँ कई प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ कई स्नातक स्तर के महाविद्यालय भी हैं, जिनमें सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, कोहिमा साइंस कॉलेज, कोहिमा लॉ कॉलेज, नागालैंड कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स आदि शामिल है। कोहिमा में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का परिसर भी स्थित है तथा नागालैंड में नागालैंड विश्वविद्यालय है। इसके पश्चात आपको अब लिए चलते हैं अनोखे नागालैंड की अनोखी संस्कृति के समीप। नागालैंड में जनजातीय संगठन में कोलियाब के निरंकुश अंग और सेमा व चांग के आनुवंशिक मुखिया से लेकर अंगामी, आओ, लोहोरा और रिंगमा की लोकतांत्रिक संरचनाओं जैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं। नागा समाज में महिलाओं को अपेक्षाकृत ऊंचा और सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वे खेतों में पुरुषों के ही समान शर्तों पर काम करती हैं तथा जनजातीय परिषदों में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव है। प्रत्येक जनजाति के अपने त्योहार होते हैं। यहाँ नागा नृत्य, संगीत, गीत और लोकगीतों में जीवन के उल्लास की झलक मिलती है। नागा भाषा एक जनजाति से दूसरी जनजाति और कभी कभी तो एक गांव से दूसरे गांव में भी अलग हो जाती है, तथापि इन्हें तिब्बत बर्मा भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। संगीत और नृत्य नागा जीवन के मूलभूत अंग हैं। वीरता, सुंदरता, प्रेम और उदारता का गुणगान करने वाले लोकगीत और लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इसी तरह नृत्य हर उत्सव का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर त्योहार पर दावत, नाच गाना और उल्लास होता है। राज्य के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं सेखरनई, मुआत्सु, तुकुए मुंगा और तुल्ली। चलिए अब चलते हैं नागालैंड का थोड़ा भ्रमण करने, यानी कि यहाँ के पर्यटक स्थलों के बारे में जानने। नागालैंड में देशी विदेशी लोग प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में आते हैं। पर्यटन स्थलों में द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान, राज्य संग्रहालय कोहिमा व दीमापुर के चिड़ियाघर तथा कछारी शासकों की पुरानी राजधानी शामिल है। घूमने के लिए आप दीमापुर, किफरे, कोहिमा, मुकुकंचुंग, मून, वोखा आदि जगहों पर प्रकृति के सुंदर रूप का लुत्फ उठा सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नागालैंड की सभी जनजातियां एक स्थान पर आकर उत्सव मनाती हैं और अपनी पारंपरिक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों और शिल्पगत चीजों का प्रदर्शन करती और बेचती हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग समय पर यहाँ तीन पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं, जो हैं कोहिमा जिले के तोसेमा में मनाए जाने वाला सिखरनई, लोंगलेंग उपमंडल के पोगो में मोन्यू तथा मोकोकचुंग जिले के चुचुयिमलाक में मुआत्सु। रंग बिरंगे त्योहारों से, ऊंचे नीचे पहाड़ों से, झरनों से, गलियारों से होते हुए हम आ पहुँचे हैं इस खूबसूरत सफर के अंत।

0: की ओर उत्तर पूर्वी प्रदेश कई महान व्यक्तियों जैसे कि मोजे रेबा, संती पादा रॉय, सुभाष चंद्र पाऊ, रूपवेल नानी आदि की जन्मभूमि भी है। हम सलाम करते हैं इन सभी को और अपने भारतवर्ष को भी, और साथ ही साथ लेते हैं आपसे अलविदा। सुनते रहिए 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी। जय हिंद।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: सफर आरजी सनी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो बूंदी की आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: खबरों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेष खबरों का सफर इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ खास अल्फाबेट लेते हैं और उसके पूरे गाने आपको शो में सुनाते हैं। तो आज हम लोग एम अल्फाबेट से बहुत सारे गाने आपको 50s एंड 60s के सुनाने वाले हैं, वो भी ओल्ड बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हैं, जैसे कि सरस्वती चंद्र 1968 में एक फिल्म आई थी, उसके बाद हिमालय की गोद 1965 में एक फिल्म आई थी, 1962 में एक फिल्म आई थी मन मौजी, फिर 1968 में एक फिल्म आई थी आदमी, और 1959 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था ब्लैक कैट। उसके साथ ही हम दोनों 1961 में यह रिलीज हुई थी फिल्म, बरसात की रात 1960 में रिलीज हुई थी, और नागिन 1954 का ओल्ड वर्शन। उसके बहुत सारे न्यू वर्शन आपने देखे होंगे, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। तो चलिए हम लोग फिल्मों के

0: बाद में बात करते हैं, अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ आज के इस कार्यक्रम की तरफ और बात करते हैं ख्वाबों के सफर में। और आज के इस कार्यक्रम के खास हमारे मेहमान हैं अरुणा जी, जो रायपुर से पधारे हुए हैं, और उनसे हम लोग बातें करेंगे। और उनके पास बहुत ही अच्छे इन फिल्मों के जो नाम हमने जो बताया आपको, उसमें एम अक्षर वाले गाने बहुत है, तो एक एक करके गाने हम अरुणा जी से सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा उनके रूपरेखा क्या है, क्या भाव है उन फिल्मों के गीतों का जो अक्षर एम से शुरू होता है। तो आइए, आप सभी की तरफ से अरुणा का बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार रमेश जी, इन सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अरुणा, और एक नए नए सॉन्ग हम लेके आए हुए हैं, और आशा करती हूँ कि मैं आप सबको इन सब के बारे में थोड़ा सा जुड़ सकूँ।
0: तो सबसे पहला गाना कौन सा आप सुनाना चाहेंगे?
1: आप सभी तो जानते ही हैं कि बेटियों को पराई धन कहा जाता है। तो एक बेटी की जब शादी पक्की हो जाती है तो वह सोचती है कि मेरी जो सासू माँ हो वो माँ की जैसे मिली, और मेरे पिताजी हो, मेरे जो ससुर जी हो वो पिता जैसे मिली। तो वैसे ही उसमें से एक सॉन्ग है, मैं तो भूल चली बाबुल का देश।
0: अरुणा जी, काफी अच्छी बात आपने बताया, और जैसे कि आपने भाव प्रकट किए हैं, और इन भाव से यही लगता है कि कहीं न कहीं लड़की को जो है अपने माता पिता बहुत याद रहते हैं, और वो ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता को नहीं भूल पाती हैं। तो सरस्वती चंद्र इस एल्बम का, इस फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, जो पॉपुलर गाना है, और इसमें कुमुद नाम का करियर जो है, कुमुद नाम का कैरेक्टर जो है सरस्वती चंद्र में है, जिसको नूतन का, नूतन ने इस फिल्म में ये रोल किया है कुमुद का। और उनकी शादी जो है किसी एक अच्छे लड़के के साथ कर दिया जाता है, लेकिन वो रद्द हो जाती है, तो उसकी शादी एक शराबी से की जाती है। तो यहीं से कहानी में एक बदलाव आता है, और बहुत सालों के बाद सरस्वती चंद्र का सामना फिर से कुमुद से होता है। तो ये किस तरह से है ये कहानी, हम लोग फिल्म देखते ही आप समझ जाएंगे। तो आइए, इस फिल्म का पहला गाना आपको कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाते हैं, मैं तो भूल चली। ये गाना जो है इंदिवर साहब ने लिखा है और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया है। तो कल्याण जी, आनंद जी का बहुत ही सुंदर संगीत है इस गीत में। आइए, इस गीत का लुत्फ उठाते हैं।

0: ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम का पहला गाना आपने सुना। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और ये गाना बहुत ही सूदिंग था, क्योंकि जो भी व्यक्ति सुनता है उसकी पहली लाइन उसको याद हो जाती है। तो ये एक ओल्ड फिल्मी गानों का ये खूबसूरती है कि आपको वो गाने का पहला लाइन ऑटोमेटिकली याद हो जाता है म्यूजिक के साथ में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं 1965 की बात करना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हिमालय की गोद में। ये एक आदिवासी गांववालों की कहानी बताई गई है और इसमें मनोज कुमार जो है डॉक्टर सुनील का किरदार निभाता है और माला सिन्हा जो है फुलवा नाम की एक आदिवासी लड़की की रोल इसमें बताया गया उनको। और ऐसा होता है कि डकैत जो वहां के होते हैं आदिवासी डकैत, वो डॉक्टर सुनील को किडनैप कर लेते हैं और उसकी उसको बहुत पीटते हैं, मारते हैं और उसको ऐसे तकलीफ देकर छोड़ देते हैं। और ऐसे में माला सिन्हा जो फुलवा का रोल अभिनय करती है उस फिल्म में, वो वहां पर आती है और मनोज कुमार यानी डॉक्टर सुनील को बचाती है। तो इस तरह की ये कहानी बताई गई है और आदिवासियों का जीवन शैली कैसा है, उनको किस तरह का तकलीफ होता है, क्या मुश्किलें आती हैं, वो सारी इस फिल्म में बताने की कोशिश की है। तो आइए अरुणा जी से बात करते हैं। इस फिल्म में एक एम अक्षर का गाना है, वो कौन सा है आप बताइए।
1: इस फिल्म में मनोज जी और माला जी दोनों ही रहते हैं यहाँ पे और मनोज जी माला जी को प्यार करने से मना करते हैं। कहते हैं जिस प्रकार ये प्रकृति की हवा वापस लौट कर नहीं आती है, उसी प्रकार ये ख्वाब भी प्यार बनकर नहीं आएगी। और इसमें गाना चलता है, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब में तू प्यार ना कर।
0: जी जी जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद किया और एम अक्षर वाला है, इसलिए हम सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को। और जिस गीत को आपने याद किया है उसे कमर जलालाबादी साहब ने लिखा था, मुकेश की खूबसूरत आवाज में ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी का ही संगीत से सजा हिमालय की गोद में इस एल्बम का ये खूबसूरत गाना। अभी आप

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और ओल्ड फिल्मों की जो बातें हैं वो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती हैं। आज भी उनके स्टोरीज को देखने के बाद उस स्टोरीज को लेकर नए नए फिल्मों में उसको थोड़ा सा मिक्सिंग करके दिखाया जाता है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स करके दिखाया जाता है। तो वही एक और फिल्म के बारे में बात करना चाहूंगा। 1962 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मन मौजी। जी हाँ, ये फिल्म जो है अपने आप में कमाल का फिल्म था और किशोर दा ने इसमें काम किया है। प्राण, अचला सचदेव, कुमारी नाज इस फिल्म के एक्टर्स रहे हैं। इस फिल्म में राजा नाम का एक किरदार को बताया गया है और बार बार अपराध करता है जिससे उनकी बहन जो है वो नाराज रहती है और रानी उससे रिश्ता तोड़कर डॉक्टर मोहन के घर में काम करने का फैसला करती है। हालांकि डॉक्टर मोहन को रानी और उनके भाई के बारे में सच्चाई का पता चलता है। तो इस तरह से ये कहानी जो है एक बार बार जो अपराध करता है उस व्यक्ति का बताया गया है। तो आइए, इस फिल्म में भी एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है।
2: रमेश जी ने तो सारा आपको बता ही दिया है और वो गाना है मैं तो तुम संग नैन मिला।

जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को ये गीत बहुत ही पसंद आएगा। राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन का संगीत से सजा मन मौजी इस एल्बम से ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जो बातें हैं आप सुन रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा जो प्लीजेंट जो जिसको कहते हैं ओल्ड क्लासिकल मेलोडीज आप सुन रहे हैं, जो आपके दिलो दिमाग को बहुत ही सुकून पहुंचा रहे हैं। तो आइए, अगला गाना कौन सा है अरुणा जी आपके पास?
2: यहाँ पे वहीदा जी और दिलीप जी दोनों ही रहते हुए, वहाँ पे होता है ना ऐसा कि जब हम बहुत दर्द में हो, जब कोई परेशानी और हमारे साथ होता है तो लगता है सब कुछ वही है। तो वैसे ही दिलीप जी का एक्सीडेंट हो जाया होता है तो वहाँ पे वहीदा जी उनका साथ देती है, तो दिलीप जी उनको कहते हैं कि तुम ही मुझे रास्ता दिखाने वाले हो, तुम ही मेरा जीवन साथी हो। और उसमें गाना चलता है मैं टूटी हुई एक नैया हूँ।
1: जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। मैं टूटी हुई एक नैया, ये भी गीत जो है अपने आप में कमाल का है। मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, दर्द भरा नगमा है ये। शकील बदायूं साहब का लिखा, नौशाद का संगीत से सजा आदमी इस एल्बम से 1960।

0: मैं तुम ही से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है। मुमताज जी और बलराज जी इसके किरदार है इनका। किसी की विशेषता को देखकर हमें प्यार हो जाता है और यही बात मुमताज जी पूछ बैठती है, मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ।
1: जी अरुणा जी, बहुत ही प्यारी सी बात है आपने बताया इस फिल्म के गाने के बारे में। और निजार अहमद अंसारी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के कलाकार थे बलराज सहानी, मीनू मुमताज, जॉनी

कर इस तरह से ये लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो इस फिल्म में जो है एक विशेष जो बातें हैं रियल लाइफ स्टोरी को बताने की कोशिश किया है, जिसमें हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय जो लेते हैं, वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम उसमें ही फंस जाते हैं, वो चीजें इसमें बताने की कोशिश की है निजार साहब ने। तो आइए इस फिल्म का एक गाना जो अभी आपने अरुणा जी से सुना वही गीत हम सुनेंगे।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: हम सबकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव होता है, कभी दुख कभी सुख, लेकिन हमें हमेशा कंसिस्टेंस रहना चाहिए। वैसे ही इसमें देवानंद जी का रोल है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो सिगरेट की कश लेते हुए कहते हैं, मैं इस धुएं की तरह अपना गम उड़ाता चला गया।
2: अरुणा जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारी

0: अभी मुस्कुरा रहे होंगे। ये जो है एक हम शक्ल लोगों की कहानी है, डबल रोल है देवानंद साहब का, और दोनों एक जैसे दिखते हैं और दोनों जो है एक देश सेवा में रहते हैं, सैनिक का किरदार निभाते हैं। और मुश्किल ये आती है जब एक मौत के मुंह में चला जाता है तब दूसरा उसी संदेश को उनके घर वालों को बताने जाता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो लोग यकीन कैसे करें घर वाले। तो ऐसा ही कुछ क्लाइमेक्स इस फिल्म में दिखाया गया है। और साहिल लुधियानवी साहब का लिखा एक गीत है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है, जयदेव साहब का बहुत ही खूबसूरत संगीत है। हम दोनों इस एल्बम से ये गाना अभी आपके लिए।
1: मैं जिंदगी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है और बातें चल रही हैं और गाने भी चल रहे हैं। एम अक्षर वाले आप खूबसूरत गाने सुन रहे हैं, एक से बढ़कर एक गाने जो है आप तक पहुंचती हैं। तो लगता है कि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की बातें जब जुड़ जाती हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि आपने अभी जो गाना सुना वो कहीं न कहीं आपको एक सुकून देता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को दुवे में उड़ाता चला गया। इस तरह के कई गीत हैं जो अपने आप में एक मोटिवेशन देता है हमें। और बरसात की रात एक फिल्म आई थी 1960s की, मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर ये फिल्म जो है एक अलग कहानी बयां करती है। और बरसात की रात में युवक युवती से मिलते हैं पर सही पहचान न होने के कारण कितना

0: जो मुश्किलें आती हैं, हम एक दूसरे के प्रति कितने गलत सोच लेते हैं, तो वो इसमें बताने की कोशिश की है। तो चलिए, इस फिल्म में भी एक एम अक्षर से गीत शुरू होता है, तो मैं चाहूंगा कि ये अरुणा जी हमें।
1: कभी कभी लगता है ना, हमने कभी किसी को देखा है, जाना पहचाना सा लगता है। वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी को जानते नहीं है, पर ऐसा लगता है कि हमने आपको कहीं देखा है और एक प्यारा सा रिश्ता भी बन जाता है। तो यही सॉन्ग है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कभी कहीं देखा है।
0: अरुणा जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया, बरसात की रात इस एल्बम से। साहिल लुधियानवी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब का गाया एक गीत आपके लिए अभी।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और आखिरी में एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा, जैसे कि ये

0: है जो नागिन पर फिल्म बनी थी, और ये फिल्म जो है सुनील शिकार करते समय अनजाने में एक सांप को मार देता है और नागिन आती है, सुनील को धसना चाहती है, वो बच निकलता है, धीरे धीरे नागिन जो है मारने की कोशिश करती है। तो इस फिल्म में ये क्लाइमैक्स बताया गया है। प्रदीप कुमार, वैजयंतीमाला, जीवन और कृष्ण कुमारी इस फिल्म के अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। तो मैं चाहूंगा कि अरुणा जी, इस फिल्म जो गाना है आपने अभी हमने अभी जो सुना थोड़ा सा, उसके भाव क्या है?
1: वैजयंतीमाला जी जितनी ही खूबसूरत थी उतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने उस पे कहा है कि आपकी बांसुरी की धुन में मेरा तन और मेरा मन दोनों ही मेरे बस में नहीं रहता है, और उसमें बहुत अच्छा सॉन्ग चलता है, मन डोले मेरा तन डोले।
0: जी श्रोता, आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा गीत है और आपके मन में भी वो शब्द आ रहे होंगे। चलिए मैं और ज्यादा आपको इंतजार न कराते हुए और इस गीत की तरफ ले चलते हैं। राजेंद्र कृष्ण जी ने इस गीत को लिखा था और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। हेमंत कुमार साहब ने बहुत ही खूबसूरत संगीत इसमें दिया था। और इसी के साथ मैं और अरुणा जी चाहेंगे आपसे इजाजत, और कहते हैं बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस शो में काफी गीत हमने सुनाए वो बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो जरूर मैसेज करके अपना प्यार जताइए। तो चलिए अरुणा जी, थैंक यू सो मच।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सलाम नमस्ते, खमा गनीसा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: अरे ना ना ना ना ना।
0: अरे वाह वाह वाह वाह।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी,

0: जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ।

0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बजवा दो कन्या,
0: उड़ बैठी बजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्कार मनु।
0: मैं आज फिर आ गई कहानी सुनने के लिए।
1: हाँ हाँ, आओ आओ।
0: लेकिन पता है पुराना स्तंभ जी, मैं ना कल टीवी देख रही थी।
1: अच्छा।
0: और टीवी पे चाइल्ड लेबर के बारे में दिखा रहे थे, कैसे छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है और उनका बचपन पढ़ाई लिखाई से महरूम ही रह जाता है।
1: हाँ, कुछ बच्चे अपना बचपन नहीं जी पाते मनो।
0: लेकिन पुराना स्तंभ जी, कुछ एनजीओ स्पेस के लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि हर कोई तो एनजीओ नहीं खोल सकता, पर चाहते तो हम सब हैं कि हम कुछ करें।
1: पता है मनु, पीछे रोड के उस पार वाली बिल्डिंग में सुगंधा जी रहती है। उन्होंने अपने बिल्डिंग के वॉचमैन कमलेश चाचा के बेटे का स्कूल में दाखिला करवा दिया है और 2 साल से फीस, कपड़े, किताबें वही लेकर देती है। उसे पूरा स्कूल पास करवाने का निश्चय किया है सुगंधा जी ने।
0: बुरा मत मानिए पुराना स्तंभ जी, लेकिन उससे क्या होगा? बस एक बच्चे को पढ़ा लिखा कर हम सबका भला थोड़ी कर सकते हैं।
1: मनु, उस एक बच्चे के जूते में कदम रखकर सोचो कि पढ़ाई कर पाना कैसा होता है। एक जीवन बनाना समाज को कोई छोटा योगदान नहीं। आगे जाकर यही बच्चा शायद हजारों की जिंदगी और संवार दे, अगर उसे पढ़ाई का अधिकार मिले।
0: मतलब एक बच्चे को पढ़ाना, ये तो कई लोग कर सकते हैं। वैसे कुछ ऐसे बच्चों को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें मैं भी फ्री ट्यूशन तो पढ़ा ही सकती हूँ।
1: और उससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी।
0: कमाई?
1: हाँ, दुआओं की कमाई, क्योंकि जब पैसा काम नहीं आता मनु, तब दुआएं काम आती हैं। दुआएं कमानी भी बहुत जरूरी है।
0: जी कहा आपने। तो चलिए अब जल्दी से मुझे अगली कहानी सुना दीजिए, फिर मुझे कमाई भी तो करनी है दुआओं की ढेर सारी।
1: जरूर, चलो आज मैं तुम्हें वीर सावरकर की कहानी सुनाता हूँ। वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से ही विख्यात थे।
0: अच्छा।
1: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में जाने जाते थे।
0: अच्छा।
1: जब विनायक 9 साल के थे, तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था।
0: ओ नो।
1: विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी

0: गांधी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्हें हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। उन्होंने जीवन भर हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए कार्य किया।
1: अच्छा।
0: वे अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए।
1: ओह माय गॉड।
0: 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया। 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। वीर सावरकर ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही पढ़ाकू थे वो। बचपन में उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी।
1: ओह, बचपन में ही कविताएं।
0: फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में पढ़ने के दौरान भी वे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे।
1: ओह।
0: जब वे विलायत में कानून की शिक्षा हासिल कर रहे थे, तभी 1910 ईस्वी में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। 1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आजादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी बनाई।
1: वो कौन सी?
0: जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में उन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और तलवार नामक पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए।
1: अच्छा।
0: जो बाद में कलकत्ता के युगांतर पत्र में भी छपे। सावरकर रूसी क्रांतिकारियों से ज्यादा प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई।
1: अरे वाह।
0: इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1857 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई। परंतु इसके छपने की समस्या आई। इसके लिए लंदन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक प्रयास किए गए, किंतु वे सभी प्रयास असफल रहे।
1: फिर क्या हुआ?
0: बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई और इसकी प्रतियां फ्रांस तक पहुंच गई। इस पुस्तक में सावरकर ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया।
1: अच्छा।
0: मई 1909 में इन्होंने लंदन से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें वहां वकालत करने की अनुमति नहीं दी गई।
1: ओह।
0: लंदन में रहते हुए उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई।
1: अच्छा।
0: जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा द्वारा विलियम हॉट कर्जन वाइली को गोली मार दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था।
1: अच्छा।
0: 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु 8 जुलाई 1910 को एसएस मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सिवरहोल के रास्ते से भाग निकले।
1: अच्छा।
0: 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया।
1: अच्छा।

0: भी हुआ था।
1: हाँ, इस तरह सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के लिए दो दो बार आजन्म कारावास की सजा दी, जो विश्व के इतिहास की पहली और एक अनोखी सजा थी। सावरकर के अनुसार मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की।
0: क्या बात है, सावरकर जी की कहानी तो एकदम अनोखी लग रही है।
1: हाँ, सभी वीरों की गाथा ऐसी ही है, अनोखी।
0: लेकिन उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं होने देना है, क्योंकि आपने ही कहा था ना कि देश के हित के लिए किया गया कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, इसलिए अपना योगदान जितना हो सके हमें जरूर देना है।
1: हाँ, बड़ी समझदार हो गई हो मनु,
0: आपसे ही तो सीखा है सब। लेकिन अब मेरी बारी है इसे इम्प्लीमेंट करने की। थ्योरी तो हो गई, लेकिन अब प्रैक्टिकल भी तो करना है।
1: मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं।
0: अच्छा पुराना स्तंभ जी, अब मैं चलती हूँ। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें पढ़ाने का कार्य जल्द से जल्द शुरू करना है। थैंक यू पुराना स्तंभ जी, बाय बाय।
1: बाय बाय मनु।

दो बार आजीवन कारावास, लेकिन फिर भी वो अपने मूल्यों पर डटे रहे। मूल्यों का महत्व हमें वीर सावरकर जी की कहानी से सीखने को मिलता है दोस्तों, कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज को मानते हैं तो हमें उन पे डटे रहना है, फिर चाहे वो प्यार की वैल्यू क्यों ना हो, चाहे वो सम्मान की वैल्यू क्यों ना हो। फिर कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो हम जल्दी से अपनी सम्मान करने की वैल्यू को छोड़ देते हैं, या कोई हमसे प्यार से बात नहीं करता तो हम भी प्यार की भावना रखने की वैल्यू को छोड़ना चाहते हैं और उसे टिट फॉर टैट का नाम देते हैं। लेकिन वीर सावरकर जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज की रिस्पेक्ट करो और उसे कायम रखो, भले ही कोई दूसरा उसे मान्यता दे या ना दे, लेकिन वो तो हमारी है तो हमें उसे जिंदा रखना है अपने साथ हमेशा, ताकि हम खुश रहें और हम वही इंसान बने जैसा हम बनना चाहते थे, ना कि जैसा दूसरा हमें देखना चाहते हैं या समाज हमें बनाना चाहता है। इसीलिए अपनी वैल्यूज पर कायम रहना है एक वीरता। आप सभी में भी होगी, मैं भी ट्राई करूंगी मेंटेन रखूं। फिलहाल वक्त हो चला है जाने का दोस्तों, फिर से मिलूंगी आपसे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरा एक दूसरी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। खुशी का जो इंडेक्स है उसे हम देखने की कोशिश करते हैं कि हर रोज हम कितना खुश रह पाते हैं, क्या हर पल खुश रह पाना संभव है। ऐसे बहुत से सवाल होंगे, बहुत से बिलीफ सिस्टम हमारे होंगे कि नहीं, हर पल की खुशी तो नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में खुशी है तो कभी गम भी होगा। और कई बार तो ये भी बोलते हैं कि अगर हमें गम का पता ही नहीं चला तो हमें कैसे पता चलेगा कि खुशी क्या होती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन में साथ साथ चलती जाती हैं, लेकिन अगर इस श्रृंखला को देखते हैं तो एक बात सामने आ रही है, खुशी मेरी किसी पर डिपेंड नहीं करती है, मैं खुद क्रिएट करता हूं। अगर मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं तो वो क्रिएट कैसे करूंगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। एक पूरी साइकिल को हमने देखा है कि किस तरह से मेरा अपना भाग्य जो मुझे अभी तक मैं कहते थे मिल रहा था वो मैंने ही दिया था और तब मुझे मिला। तो ये एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल थॉट क्रिएट हुआ, खुशी का लेवल बढ़ा, खुशी का इंडेक्स अच्छा पहुंचा। अब एक बात और आ जाती है, डिपेंडेंसी मेरे अपने थॉट पर आई। अभी तक हम देख रहे थे कि खुशी जो है वो कहां कहां डिपेंड कर रही थी, तो खुशी मेरे डिपेंड कर रही है मेरे थॉट पर। इट मींस माय थॉट इज वेरी इम्पोर्टेंट,
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट।
0: तो अब इस मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर को मैं किस तरह से देखूं?
1: एक बार जब हमें समझ में आ गया कि जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं सारा दिन वो हमारी इस पूरी पर्सनालिटी को बनाता है एंड वही फिर हमारे भाग्य का भी निर्माण करता है, तो सारा फोकस अब शिफ्ट होकर मेरे ऊपर आ जाता है कि चाहे बाहर सिनारियो कुछ भी हो, फिर उस सिनारियो में भी अगर आई कैन क्रिएट पावरफुल थॉट्स, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिनारियो। घर में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, रिश्तों में कुछ संस्कार स्वभाव का टकराव है, ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो भी मेरे पास चॉइस है कि अगर आई एम एबल टू क्रिएट द राइट थॉट्स एट दैट टाइम, आई विल बी एबल टू क्रॉस द सिचुएशन एंड नॉट ओनली क्रॉस द सिचुएशन, आई कैन चेंज द सिचुएशन। है ना, परिस्थिति मेरे संकल्पों से बदलती
0: थी। अल्टीमेटली मेरा मोटिव जो था वो सिचुएशन बदलने का था।
1: सिचुएशन को तो चेंज करना ही है ना। अगर मेरा रिश्तों के साथ, सपोज किसी के साथ कुछ टकराव चल रहा है, अब वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आई वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन ताकि वो जो रिश्ता है हमारा इट बिकम्स अगेन स्मूथ अगेन फ्लोइंग। लेकिन हम सोच रहे थे वो ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि पावर मेरे हाथ में है कि मैं ठीक करूंगी तो मेरे लिए तो एटलीस्ट पहले ठीक हो जाएगा एंड फिर मेरे लिए ठीक हो जाएगा तो वो आगे भी ठीक होता जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेट करेंगे कि वो ठीक करेंगे तो ठीक होगा, तो इट इज जस्ट नॉट हेडिंग एनीवेयर। तो एक चीज जो हम अवेयरनेस के साथ अब जीवन को जीना शुरू करें कि ब्लेम करना बंद कर दें कि इनकी वजह से ऐसा, इसकी वजह से ऐसा, मेरे पास पावर है। तुरंत अपने आप को रुक कर एक मिनट देखिए, व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग, अभी अभी कुछ हो रहा है, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड एंड वन मिनट जस्ट चेक व्हाट इज द थॉट आई एम क्रिएटिंग। जैसे आपने उस दिन भी कहा बहुत मुश्किल है थॉट्स को देखना, हम नहीं देख पाते। मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमने देखा नहीं,
0: आदत नहीं है,
1: हमने देखा नहीं है। थॉट्स है क्या? थॉट्स है एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन जो यहां चल रही है, अब हम देखते नहीं तो वो बैकग्राउंड में चलते ही जाते। अब जैसे ही हम उसको देखना शुरू करते वो फोरग्राउंड में आ जाती है। आई विल बिकम अवेयर, फर्स्ट स्टेप है अवेयर होना के व्हाट आर द थॉट्स आई एम क्रिएटिंग। जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी तो चेंज करना
0: पॉसिबल
1: इम्पॉसिबल है। अब थॉट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, वी वॉन्ट टू चेंज द क्वालिटी। दुनिया में भी आज पॉजिटिव थिंकिंग, दिस हैज बिकम द थिंग, लाइक उसमें बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ है, हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि थॉट्स का सोर्स क्या है, व्हाट इज क्रिएटिंग द थॉट। थॉट तो एक एनर्जी है जो अंदर क्रिएट हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई रॉ मटेरियल तो अंदर जाएगा ना, जिसके बेसिस पर ये थॉट क्रिएट होता। तो थॉट्स के जो बेसिस है, फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। हम क्या इन्फॉर्मेशन सारा दिन अंदर लेते हैं, वो दैट इज इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल आर सेंस ऑर्गन्स। हम सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, क्या अरोमा हम लेते हैं, क्या हम टच करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव गॉट इनटू द हैबिट कि सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ लिया एंड हमें लगता है ओ दिस इज अगेन नेचुरल में आ जाता है कि बेड से उठे नहीं कि उठते भी नहीं है, कई बार बेड में ही न्यूज़पेपर आ जाता है, तो फर्स्ट पेज पढ़ा, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ किसी पिता ने
0: अच्छा,
1: अपने बच्चों
0: एक और बात है, सुबह जो पढ़ा है वो सारा दिन रहता भी है, सारा दिन आपके साथ वो न्यूज कंटिन्यूस रहती है आपके साथ।
1: सिर्फ न्यूज तो रहती है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जब आप सोकर उठे तो आपके माइंड को कितना रेस्ट मिला है, यू नो, आपका माइंड एकदम साइलेंट हो गया है। जब ये साइलेंट हो जाता तब इसकी अब्सॉर्प्शन पावर बहुत हाई है। अब इसमें आप जो भी डालेंगे वो बहुत इजिली अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो द माइंड इज लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर ऐसे चूस लेता है। तो साइकोलॉजिस्ट बताते कि सुबह के 2 घंटे करीब हमारी अब्सॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लॉटिंग पेपर सच

0: फिट होने लगता तो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाएगा. साइलेंट माइंड, तो साइलेंट माइंड होते ही क्या हुआ, जो कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड है वो साइलेंट हो गया. आप सब कॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड पर आ गए. अब जो भी आप अंदर डालेंगे वो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा आपकी सब कॉन्शियस माइंड पे जाएगा. और सब कॉन्शियस माइंड पर ही हमें वो डालना होता है जो हमें क्रिएट करना है सारा दिन के लिए. अब साइलेंट माइंड है, कॉन्शियस लेयर साइलेंट है, सब कॉन्शियस लेयर एक्टिवेटेड है, और उसमें आपने डाल दिया कि यहाँ अर्थक्वेक हुआ, यहाँ टेररिज्म है, यहाँ फ्लड्स आ रहे हैं, यहाँ मेट्रो का वो कुछ एक्सीडेंट हो गया. क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम सबकॉन्शियस के अंदर सुबह सुबह डाल रहे हैं. दे आर वर्ड्स ऑफ वायलेंस, फियर, हेट्रेड, इनसिक्योरिटी, ये डाल दिया तो सुबह सुबह बीज कौन सा बोया. फिर हम कहते हैं सारा दिन क्यों फियर है, क्यों इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जैसे हल चलाकर मिट्टी को एकदम वो करके बीज कौन सा डाला था सुबह सुबह, फियर, वायलेंस, इनसिक्योरिटी. फिर सारा दिन आप चलो बाहर, आपकी लेयर फाउंडेशन कौन सी है, वही है. तो वो जो फाउंडेशन इन्फॉर्मेशन सुबह सुबह भरी, उसी क्वालिटी की थॉट सारा दिन आप क्रिएट करेंगे. भले उस देश से आपका कोई लेना देना नहीं जिसके बारे में आपने सुबह पढ़ा, उन लोगों से नहीं है, लेकिन वर्ड्स कौन से डाले थे सुबह सुबह. इट इज नॉट इस देश में ऐसा हुआ, इट इज क्या हुआ, वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस लेयर में फिट हो गया. अब वो ही वर्ड्स आपके थॉट्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज दैट्स द एनर्जी दैट आई गेट ड्यूरिंग द डे. अब आप कितना भी ट्राई करो पॉजिटिव सोचना, इट इज वेरी डिफिकल्ट. आप शाम को घर पहुंचते हैं, कोई घर पर नहीं पहुंचा टाइम पे, आप फोन भी ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं फोन. नॉर्मल थॉट्स कौन से आने लगते हैं लोगों के अंदर,
1: एक्सीडेंट.
0: सी, आपने इतना इजीली बोल दिया, एक्सीडेंट हो गया. क्यों एक्सीडेंट हो गया, व्हाई डज दिस थॉट कम टू मी, अपने ही परिवार के सदस्य के लिए कि एक्सीडेंट हो गया होगा. क्योंकि सुबह सुबह मैंने क्या भरा था अपने अंदर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जब हम ब्रह्माकुमारीज में आते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सिंपल प्रोसेस क्या करना है, मॉर्निंग उठते ही सबकॉन्शियस लेयर जब एक्टिवेटेड है, इसमें बहुत पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, वो भर दिया जाता है अंदर. तो जैसे ही वो पॉजिटिव पावरफुल वर्ड्स अंदर भरे जाएंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होगी, वो उसी क्वालिटी की क्रिएट होगी. तो एक है सुबह में कौन सी इन्फॉर्मेशन भरते, और एक है रात को सोने से पहले. ये दो टाइम बहुत क्रिटिकल है. अब मोस्टली आजकल हम रात को सोने से पहले क्या भरते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ अगेन मीडिया, एंड वो सुबह है न्यूज, शाम को है एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी इट इज ईदर फियर और पैनिक, या यू नो संबंधों में मिस्ट्रस्ट, रोना धोना सीरियल के अंदर. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, सो गए, रात को कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन फीड की गई थी. फिर जो रात को क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होंगे, सुबह उठेंगे तो कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट्स,
1: क्वालिटीज के साथ उठेंगे.
0: सो बेसिकली स्लोली इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर हम ये ध्यान रखें कि सुबह सुबह उठते ही पहली चीज हम क्या अंदर डालते हैं, इट्स लाइक ब्रेकफास्ट, कि आपका ब्रेकफास्ट सबसे हेल्दी होना चाहिए, आपका ब्लॉटिंग पेपर बहुत पावरफुल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से भरा होना चाहिए. एनीवन कैन ट्राई दिस, सिर्फ एक महीने के लिए आप सुबह सुबह उठकर न्यूज़पेपर मत देखो, टेलीविजन नहीं देखो, आप पढ़ो न्यूज़पेपर बट स्लाइटली लेटर ऑन. यू डोंट हैव टू डू इट वो सुबह यू नो 6 से 8 या 6 से 9 बजे के बीच, और उसकी जगह आप कुछ और पढ़ो. कई लोग कहते ठीक है हम पेपर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जगह कुछ और तो आप पढ़ेंगे जिससे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरता. इतना सा करने से यू विल सी कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है. भोजन ही अंदर अगर नेगेटिव डालेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स कहां से क्रिएट होगा. इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हमने सुबह सुबह ये डाला अपने अंदर कि जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है. अब रात को मेरे घर कोई लेट है, कोई नहीं पहुंच रहा, आई वुडंट थिंक ऑफ एक्सीडेंट बिकॉज आई हैवंट फिटेड दैट इन्फॉर्मेशन इन द मॉर्निंग. आई विल से आ जाएंगे,
1: कम बैक, हाँ वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं,
0: कुछ नहीं हुआ,
1: बैटरी खत्म हो गई होगी.

0: सो मेनी
1: वो थॉट्स है ना, वो आपके थॉट्स है. अब इसी में अगर आप देखो, अगर मैंने ये सोचा बैठकर एक्सीडेंट ना हो गया, उनको पता नहीं क्या हो गया, अगर उनको खो गया तो हमारा घर कैसा चलेगा, मेरा जीवन कैसे होगा, बच्चों को मैं कैसे, इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर दी. आधा घंटा एक घंटा इस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. अब वो फाइनली तो पहुंच गए घर पे, हम कैसे ग्रीट करेंगे उनको. सारी वो जो फ्रस्ट्रेशन हमने बिल्ड कर दी अंदर, वो सारी बाहर निकल आएगी. सामने वाला व्यक्ति भी कुछ किसी सीन से गुजरा है, तब वो लेट है, तो तुरंत उस टाइम हम दोनों के बीच क्या होगा, एक झगड़ा होगा. दिस इज माई डेस्टिनी फॉर द इवनिंग. ये डेस्टिनी किसने क्रिएट की? हम कहते उन्होंने की क्योंकि वो लेट थे, लेकिन नहीं, मैंने किस तरह की थॉट्स क्रिएट की जब मैं उनके लिए वेट कर रही थी. इफ आई वुड हैव रिमेन्ड स्टेबल एंड सेड आ जाएंगे, कुछ नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में फोन तो आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, फोन नहीं कैच कर रहा होगा, तो जब सामने वो व्यक्ति पहुंचेगा, हाउ विल आई मीट द पर्सन, एब्सोल्युटली ओके, सो देयर विल बी नो फाइट. टू डिफरेंट डेस्टिनीज. तो वी आर क्रिएटिंग इट एट एवरी स्टेप. सो वन सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले. तो इसके लिए अगर हम सब अपने पास कोई ऐसा लिटरेचर रखे, जैसे एट द ब्रह्म कुमारीज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते, एवरीवन कैन चूज के वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सुबह 15 मिनट और रात को जस्ट सोते समय. आज रात को सोते समय या तो हम टीवी देखते, और अगर पढ़ते हैं तो वी आर रीडिंग अगेन फिक्शन या समथिंग वेरी वेरी स्टिम्यूलेटिंग, तो माइंड को उतना स्टिम्यूलेट करके फिर हम सो जाते हैं. तो शरीर तो सो गया लेकिन मन अभी भी बहुत एक्टिव चलता. फिर जब सुबह उठते तो स्थिति कैसी होती है? इट जस्ट डजंट फील के योर एनर्जी.
0: रात को जब सो रहे होते हैं, जब सोते हैं, तो लाइक काफी साइंटिस्ट से बात की, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है.
1: हाँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड स्लीप कर जाए. अभी यही, अगर आप किसी बात से परेशान हो, आपके कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट्स चल रही है, तो आपको नींद नहीं आती ना. आप कहेंगे मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं सो पा रहा. सो कौन नहीं पाता जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट ही नहीं होता. वो दिन की चीजों को, सारा दिन जो, या उसकी कोई परेशानी है, वो उसके ऊपर होवर कर रहा, तो वो स्पीड ऑफ थॉट बहुत फास्ट है, तो वो कॉन्शियस माइंड को साइलेंट नहीं कर पा रहा, तो वो फिर उनको नींद नहीं आती. तब वो कोई ऐसा मेजर लेंगे, चाहे कि वो स्लीपिंग पिल है या कोई भी और तरीका, जिससे वो कॉन्शियस माइंड को दबा दे और उनको नींद आ जाए. तो अगर हम वो सब करने की बजाय सिर्फ कुछ अच्छा पढ़ें बैठकर, हमारी थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाए. यू नो, कोई बात मुझे परेशान कर रही है तो वो नेगेटिव बहुत सारी है. आई कांट स्लीप, डू नथिंग, जस्ट पिक अप समथिंग वेरी वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव एंड उसको पढ़ना शुरू करें. आपके थॉट्स धीरे धीरे चेंज होती जाएंगी, आपका माइंड स्लो डाउन होता जाएगा. और यही आप सारा दिन भी कर सकते हैं. जैसे कई बार हम कहते हैं कि सारा दिन में चलते चलते क्यों ऐसी, यू नो, ऐसी वाली थॉट्स आ रही है, नेगेटिव आ रही है. अगर आपके पास उस समय ऐसा कोई लिटरेचर है, जस्ट ओपन इट. क्योंकि कई बार हम खुद पॉजिटिव नहीं क्रिएट कर पाते. यू नो, कोई बात एकदम मेरे चलती जा रही है, आई एम जस्ट नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट. जस्ट ओपन एंड स्टार्ट रीडिंग.
0: कई बार क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे होते हैं वो सारा, क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा का पूरा पेज पढ़ जाएंगे और हमें कुछ याद.
1: रीड इट लाउडली.
0: हाँ,
1: रीड इट लाउडली, इट वर्क्स. सी, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए. हम सोचते हैं नेगेटिव चल रहा है, चलने दो, पढ़ा मैंने नहीं समझ. रीड इट लाउडली, जैसे किसी और को पढ़ के सुना रहे हैं. क्योंकि जब आप जोर से पढ़ के सुनाते हैं, आपकी पूरी कॉन्सेंट्रेशन उसमें चली जाती है. कभी कभी जब हम ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं तो माइंड फिर भी कुछ और सोच. रीड इट लाउडली, इट हैज टू चेंज. होगा ही, नहीं चले उसी तरह दर्द के अंदर. जब धीरे धीरे इस तरह से अपने ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तब थॉट्स क्यों नहीं चेंज होंगे. इट हैज टू चेंज. एंड द अदर थिंग विच हैज अ डीप इम्पैक्ट इज पास्ट एक्सपीरियंसेस. पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी
0: तो मेरे को कैसा अनुभव हुआ था,
1: तो वो मेरे, जैसे ही मैं आपको इस बार मिलती हूँ फिर से, वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस मेरे ऊपर फिर से वो सारा कसेट जैसे रिवाइंड हो जाता है और उसी क्वालिटी की थॉट्स फिर से चलनी शुरू हो जाती है. तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, लेट मी सिट एट द एंड ऑफ द डे एंड क्लीन इट आउट. क्लीन इट आउट, उस सिचुएशन को समझू, मैं अपने आप को समझाऊं, ताकि मैं यहां से वो जो फाइल बिल्ड होती जा रही है वो एक्सपीरियंस की, वो नेक्स्ट सिनारियो में मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. क्योंकि बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस पे ब्लेम डाल देते हैं. क्या करूं, मेरे साथ पहले इतनी बार ऐसा ही हुआ था, तो मुझे डर तो लगेगा ही ना.

0: मेरा पास्ट एक्सपीरियंस एंड
1: वन मोर वी हैव टू सी इज
0: बिलीफ सिस्टम्स कि कौन से ऐसे बिलीफ हैं जो मेरे थॉट्स को क्रिएट करते हैं. तो दो को तो हमने खूब अच्छी तरह से समझा और आपने जो सोल्यूशंस दिए हैं सी समझ के जब तक कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कि आज हमें पता चल गया चाहे कितनी भी जैसे आपने कहा किताबें हैं या कुछ भी है हर कोई बात कर रहा है थॉट पावर की और आपने जो हमें सोल्यूशन दिया है वो ये कि अगर सिचुएशन आती है जो कुछ भी है हम समय समय पर राइट काइंड ऑफ लिटरेचर को
1: एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट डेफिनेटली.
0: हाँ उसमें कुछ पढ़ें जरूर यू नो पहली चीज जो हम करें
1: पढ़ें कुछ सुने मतलब एनीथिंग दैट आई
0: सेल्फी और से हाँ कर सकते
1: क्योंकि नहीं तो वी आर फ्लडेड विद नेगेटिव
0: और वो हमें तो मांगना भी नहीं पड़ता वो तो ऑलरेडी मिल रही होती है. ऑफिस पहुंचते हैं जहां पे भी मिलते हैं वो जानकारी वैसे
1: यू नो सिंपल एग्जाम्पल इज दिस टेलीविजन प्रोग्राम. बहुत सारे भाई बहने अपना फीडबैक भेजते हैं कि उन्होंने क्या किया है सिर्फ ये किया है कि हर रोज वो रेगुलरली ये प्रोग्राम देख रहे हैं. कुछ नहीं करना ना बस उतना टाइम अपने लिए टाइम निकाला है दैट एफर्ट इज बीइंग मेड. तो अपने लिए वो आधा घंटा डेडिकेट किया कि हमें ये प्रोग्राम देखना है. नाउ थॉट उसी टाइम पर और भी तो प्रोग्राम्स हैं आपके टेलीविजन पर 100 चैनल्स आ रहे हैं लेकिन समवन इज चूजिंग टू वॉच दिस प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी और व्हाटएवर. तो वो इस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन अंदर ले रहे हैं. यू नो मेजोरिटी लोग जो मिलते हैं अगर उनसे यू नो खुद ही बोलते हैं कि एक चीज जो हुई है ये प्रोग्राम देख के इमीडिएटली कहते हैं मेरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया. यू नो दे डोंट इवन रियलाइज व्हाट समटाइम Everyone's common thing is मेरा thought process change हो गया
0: सोचने का तरीका बदला है
1: इसलिए रोज रोज रोज रोज जब सुना अपने बारे में वो सुना इट हैज टू हैव एन इम्पैक्ट हैज टू. सो दिस इज प्रैक्टिकल प्रूफ कि कैसे बदलती है
0: इन्फॉर्मेशन जो है. तो फिर इस प्रोग्राम के साथ तो जुड़े रहना ही है आपको कि हर रोज जो आधा घंटा प्रोग्राम जो भी वक्त मिल रहा है वो जरूर देखना और मॉर्निंग में भी जरूर कोशिश करें कि कुछ पढ़ें कोई ऐसी जानकारी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में आपको स्ट्रेंथ देगी वो बहुत जरूरी है. और दूसरा जो कहा कि मेरा बिलीफ मेरी जो पास्ट एक्सपीरियंस है तो दिन भर के पास्ट हर्ट को सारी नेगेटिविटी को अगर हम डिलीट कर पाए दिन भर में आई थिंक समवेयर दैट इज गोइंग टू हेल्प और वो मेरी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उसको भी काफी बेटर करेगा. अगर मैं रोती हुई सोऊंगी तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी. तो आपके मन में अगर कोई सवाल उठता है या कोई बात है जो सजेशन है जो आप इस सीरीज के साथ जुड़ा हुआ बताना चाहेंगे आप हमें फोन पर संपर्क करें या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000 9999344555 9999344666 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अंशवानी बहन जिस तरह से रोज इस पूरी श्रृंखला में हमें बातें समझ में आ रही हैं जरूरी ये भी दिखता जा रहा है कि उस पर रिफ्लेक्ट करना जरूरी है. थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर अगर वो थॉट क्रिएट करें जो आज हमने समझे हैं
1: आई थिंक हम दो मिनट रिफ्लेक्ट करके लेट गो करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को या उन परिस्थितियों को जो आज दिन तक हम समझते थे कि मेरे ऊपर बहुत सारी हावी हो रही है. सो जस्ट टेक एनी वन बहुत ज्यादा सबको कच्चे नहीं लेते लेट्स टेक एनी वन एंड लेट्स लेट देम गो फ्रॉम हियर. कंफर्टेबल होकर बैठे परिस्थितियों से और लोगों से अपने आप को हटाते हुए अपने मन को देखते हैं क्या सोच सारा दिन मेरी चलती है एवरी थॉट दैट आई क्रिएट एंड नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये मेरी क्रिएशन है. आज दिन तक जो दर्द जो धोखा जो तकलीफ मैंने पकड़ कर रखी थी वो मैंने पकड़ कर रखी थी. आई चूज टू होल्ड ऑन टू इट आई चूज टू लिव इन पेन. आज मैं अपने आप को उस दर्द से लिबरेट करती हूं बाय क्रिएटिंग द थॉट आई am a peaceful being. No one else has the power to hurt me. Peace is my nature. Shanti meri shakti hai. Ye meri creation hai. Om Shanti.
0: Om Shanti. I'm a peaceful being. In fact, it's amazing, you know, how just one thought and sitting in silence can help you so much.

let go is so simple. Again, ball is in your court. कितने को पकड़ के रखना है और किसको छोड़ देना है, कितना आसान है. एक क्षण में हम छोड़ सकते हैं उस सारे दर्द को. अब इतनी ब्रह्मा कुमारी का ये सफर आगे भी चलता रहेगा. थैंक यू सो मच.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा।

0: भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूं, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. मेरे चेहरे की मुस्कुराहट आपको कुछ बता रही है कि जैसे कुछ मिल गया हो हमें. जी हाँ, हम एक सफर पर हैं, एक तलाश में थे खुद को पहचानने की, और अब ऐसा लगता है कि इस सफर में शायद कुछ कुछ जानने की कोशिश हो रही है. अवेयरनेस क्रिएट करना कि कौन हूं मैं, हु एम आई, आई द सोल. यहां तक तो हम पहुंचे, इसके आगे का सफर और जारी रखते हैं. और इस सफर में हमारी हम सफर ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, फटाफट एक रिकैप करते हैं और मैं बताने की कोशिश करती हूं कि अभी तक मैंने क्या समझा जो ये सफर तय कर रहे हैं. हु एम आई, सबसे बड़ी बात जो हमने बात की थी कि क्या जरूरत है खुद को पहचानने की. तो इतने सारे रोल अदा करते करते बहन का, माँ का, बेटी का, ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं. आई द सोल, वो सुप्रीम, मैं वो सोल हूं, वो आत्मा हूं जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है. आपने इतना खूबसूरत हमें एहसास करा दिया है. उसके बाद था कि उस अवेयरनेस को कैसे क्रिएट करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. एक थॉट जो था वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट कर रहा था, एक इंटरनल प्रोसेस था जो कि बहुत लॉजिकल था, तो काफी क्लियर होती गई वो बातें. उसके बाद हम आए कि जो पूरा ये प्रोसेस है इसमें ऑब्स्टिकल्स क्या आते हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं. तो सामने आई ईगो, और ईगो के लिए मुझे लगता है हमारे दर्शकों को अगर याद हो, मुझे अभी तक याद है कि वो जो ईगो थी वो मेरा अहम, जिसे मैं कहती हूं कि अपने आप को मैं सुप्रीम दिखा रहा हूं या दिखा रही हूं, वो जनरेट हो रहा था अंदर कहीं फियर या भय से, क्योंकि अटैचमेंट थी. अब इसके आगे का सफर है, या इसको थोड़ा सा कुछ और आप कहना चाहेंगे?
1: नहीं, वो ईगो बने का ईगो जैसे थे, इट वाज अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज. अपने मन में कोई एक रॉन्ग इमेज, एक रॉन्ग बिलीफ अपने बारे में लेकर उस चीज से इतना जुड़ जाना कि इन द प्रोसेस अपने व्यक्तित्व को ही भूल जाना कि मैं एक्चुअल कौन हूं. और जहां अटैचमेंट थी वहां एक रिजेंटमेंट है कि कहीं ये छूट ना जाए, वो डर एक बना रहता था. और ये फिर हम अपने व्यवहार में हमने देखना शुरू किया कि कौन से हमारे ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें ईगो झलकता है, दिखाई देता है कि मेरा ईगो सामने आ रहा है. एंड वी लुक्ड अप अ नंबर ऑफ बिहेवियर्स उसमें, जैसे आर्ग्यूइंग, जिद करना, यू नो, बॉसिंग, दूसरों के ऊपर रोक जमाना,
0: एंगर.
1: एंगर
0: मेजर एस्पेक्ट. और ये एहसास कि मैं सुप्रीम हूँ,
1: राइट,
0: ये देना,
1: राइट,
0: ये एहसास तो अंदर से नहीं है, ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं नहीं हूं.
1: तो वो एहसास करने की कोशिश करते हैं.
0: एक क्रिटिसिज्म जो है वो भी एक हमने माना था, और कुछ इंटरनल चीजें थी,
1: राइट.

0: रोना,
1: क्राइंग, सल्किंग, दूर होके विद्रॉ करके बैठ जाना, यू नो पेन जो अंदर चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट से, वो फियर से जुड़ा हुआ था.
0: जैसे शिवानी, इन पे एक एक करके मैं हम आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे पास जो ईमेल्स आए हैं उनमें एक ऐसा ही क्रिटिसिज्म पे एक मेल है हमारे पास जो कोलकाता से आया है मिसेस बैनर्जी का. एंड व्हाट शी सेज इज कि वो उनके 25 साल हो गए हैं शादी को, शादी के पहले दिन से ही उनकी मदर इन लॉ जो हैं उनसे नाराज रहती हैं, हर कदम पे हर बात पे उन्हें क्रिटिसाइज करती रहती हैं. और 25 साल, एक्चुअली 25 इयर्स लॉन्ग टाइम, तो उसके बावजूद भी वो क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हुआ है. मैं समझने की कोशिश करती हूं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कई बार मुझे बुरा लगता है और मुझसे मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगता है. तो मैं क्या रास्ता अपना सकती हूं? एक्चुअली 25 साल तो मतलब कंटिन्यूस,
1: लेकिन एक संस्कार बना हुआ ना, तो वो संस्कार कहीं चेंज नहीं हो रहा है उनका. तो जो सुन रहा है उसे ही कहीं ना कहीं अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा. इसमें हम दो स्टेप में ले सकते हैं कि जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका ईगो क्या है, और जो हर्ट फील कर रहा है उसका ईगो का, क्योंकि ईगो तो दोनों का ही वर्क.
0: यहाँ एक बात, क्योंकि जो हर्ट फील कर रही है, जो हमने हर्ट की बात की थी कि केमिकल रिएक्शन होता है कि हम हैबिट पड़ जाते हैं कि अच्छा मैं हर्ट होंगी या एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई वो अब मुझे हर्ट करेगी,
1: राइट?
0: तो ये कैसे हम जो,
1: क्योंकि क्रिटिसाइज हम सब लोग बहुत करते हैं, हम सबको आदत है कि किसी न किसी को छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करें. तो जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कहाँ हम चेक करें, क्योंकि क्रिटिसाइजिंग ये एक बिहेवियर है, ये हमारा व्यवहार है दूसरों की निंदा करना. अब इसको थोड़ा सा पीछे लेते हैं क्योंकि ये बाहर हो गया, अब हमें इसका इंटरनल प्रोसेस देखना पड़ेगा. हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक आइडिया आता है और तुरंत आपके आइडिया को सुनते मैं उसको क्रिटिसाइज कर देती हूँ या उसको रोकने की या सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ. तो जैसे ही मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अब मुझे अपनी पहले चेकिंग करनी है कि जब मैंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया मेरा फियर क्या,
0: क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा फियर है.
1: हाँ, क्या फियर होगा, क्योंकि कोई फियर है, मुझे उसको अपने आप के लिए एनालाइज करना पड़ेगा कि जब मैं दूसरे को क्रिटिसाइज कर रही हूं, बिकॉज नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अपने बिहेवियर को देखना, उसके पीछे के भय को पहचानना, किस चीज से मेरा अटैचमेंट है वो पहचानना, लेट गो.
0: हाँ, उस अटैचमेंट को छोड़ना,
1: क्योंकि जैसे ही वो अटैचमेंट को छोड़ेंगे वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा और मेरा ईगो धीरे धीरे धीरे, इट्स अ स्टेप, ब्रेकिंग डाउन, इट्स अ प्रोसेस. देखो, सेल्फ अवेयरनेस यही है. अभी मुझे अवेयरनेस है कि ये एक प्रोसेस है जो अंदर चलता है. नाउ एवरी टाइम आई सी दैट बिहेवियर आई शुड गो टक टक टक स्टेप, व्हाट हैपेंड, बिहेवियर, फियर, अटैचमेंट, लेट गो. यू नो,
0: वेरी गुड. एंड इट इज पॉसिबल,
1: इट्स पॉसिबल. सो लेट्स सी कि अगर आपने एक आइडिया दिया और तुरंत मैंने उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर दिया तो मेरा क्या फियर हो सकता है इसमें,
0: कि मैं आपको ओवरपावर कर दूं.
1: एब्सोल्युटली सिंपल, क्योंकि मेरे पास भी कोई आइडिया था और मुझे अब ये भय है कहीं आपका आइडिया एक्सेप्ट ना हो जाए, कहीं आपका आइडिया ऑर्गेनाइजेशन को या परिवार को या जो भी आपका आइडिया ना पसंद आ जाए, दैट इज माई फियर. और ये फियर है, अटैचमेंट मेरी किस चीज से है, अपने आइडिया से.
0: ओके, आइडिया से,
1: बिकॉज वो मैंने भी तो एक आइडिया क्रिएट करके रखा था ना, और अब मुझे ये फियर है कि कहीं आपका आइडिया नहीं एक्सेप्ट हो जाए. और अटैचमेंट मेरी है अपने आइडिया से कि मेरा आइडिया वॉज
0: द बेस्ट.
1: I had come up with that idea, I have been thinking over it for so long, इतना उसमें energy invest कर दिया, और वो अच्छी बात है energy invest करना, लेकिन करते करते करते उस idea से attachment हो गया, यही मैं हूँ, ये अगर accept होगा मुझे खुशी होगी.
0: लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मुझे clearly दिख रहा है कि किसी situation में मेरा idea जो है वो सही है, implement किया जाए तो वो सही result देगा,
1: it's fine. तो ये भी नहीं है कि हम अपने आइडिया को रिजेक्ट कर दें और दूसरे के आइडिया को ही एक्सेप्ट कर लें. दिस इज वेयर इट विल कम द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. ये बिल्कुल डिफरेंस आएगा. अभी फर्स्ट स्टेप क्या थी, क्रिटिसिज्म की. क्रिटिसाइज तब करूंगी जब भय है. अगर मुझे श्योर है,
0: अच्छा हाँ, जहां मुझे ये अश्योरिटी है,
1: सी इट्स ऑल दैट वे, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. जहां मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यू नो इट्स नॉट एरोगेंस, सी एवरीवेयर देयर इज अ टू
0: लाइन,
1: सेल्फ कॉन्फिडेंस, एरोगेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, स्वाभिमान, अभिमान. ये बहुत थिन लाइन है, हमें पता नहीं चलता, हम हॉप स्किप एंड जंप.

0: के बीच में करते रहते हैं। जहां हर्ट है, जहां दर्द है, जहां पेन है, इट्स ईगो। जहां स्टेबिलिटी है, ये किसी और से डिस्कस करने की भी चीज नहीं, अपने आप अंदर पता चल जाता। जहां स्टेबिलिटी है, इट इज सेल्फ रिस्पेक्ट, एकदम स्थिति स्थिर है, कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं अपने स्वमान में हूं, स्वाभिमान में हूं। जहां कुछ नहीं कहते, उन्होंने मेरे ईगो को ठेस पहुंचाई,
1: मेरे अहम को ठेस
0: पहुंचाई। ठेस पहुंचाई मतलब यू हर्ट मी, ठीक है? तो यू हर्ट मी, दैट मीन्स आई वॉज नॉट इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। यू कुड कम एंड यू कुड ओवर
1: टेक ओवर,
0: दैट वॉज लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्रिटिसाइज हम तब करते हैं जब हमें भय होता है कि इनका आइडिया ज्यादा लोगों को पसंद आ जाएगा, और अटैचमेंट मेरी मेरे आइडिया से थी कि माय आइडिया वाज वेरी गुड। मैंने अपने अस्तित्व को उस आइडिया के अंदर ही जैसे खो दिया था कि ये ही मुझे खुशी देगा। नाउ व्हाट डू आई हैव टू लेट गो? ये आइडिया अच्छा था, हो सकता है ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, इट्स फाइन, इट्स जस्ट एन आइडिया। ये सिर्फ एक आइडिया है, ये मैं नहीं हूं। ये इसको अगर कुछ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा ही अस्तित्व ऊपर नीचे हो जाए। मैं अलग, ये आइडिया अलग, जैसे ये गाड़ी अलग, मैं अलग, ये शरीर अलग, मैं अलग, ये व्यक्ति अलग, मैं अपने आप को उससे डिटैच करते जाओ। तो ये अटैचमेंट थी, इसको लेट गो करें। अब दूसरी तरफ जो बैठा है, जिसको हमने क्रिटिसाइज किया, वो कहां हर्ट होगा? तो वो भी एक ईगो है। अब सपोज आपके आइडिया को मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसे आपने कहा कि आपको अगर पता है कि आपका आइडिया बेस्ट है या ठीक है, बिल्कुल, अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, हम दोनों चीजों को लेंगे, अगर आप स्वाभिमान में हैं, अपने स्वमान में हैं, आप ओपन हैं, आप अपने आइडिया से अटैच्ड नहीं हैं। जहां आप अपने आइडिया से अटैच्ड होंगे, पहली बात आप मेरे आइडिया को ठीक से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अटैच्ड हैं इस थॉट से कि आपका आइडिया बेस्ट है। जब आप अटैच्ड हो जाएंगे इस थॉट से कि मेरा आइडिया बेस्ट है आपका, तो आप दूसरे के आइडिया को एक ओपन माइंड से देख भी नहीं पाएंगे।
1: इसका मतलब जो आइडिया मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेस्ट है इस सिचुएशन में, उसके साथ भी मुझे अटैच नहीं होना है, इवन इफ आई नो दैट दिस इज माई बेस्ट राइट।
0: सी अगेन, दिस आइडिया इज योर बेस्ट, ये आपका बेस्ट आइडिया है, बट Nowhere is it written के that means के कोई और एक अच्छा आइडिया नहीं ला सकेगा। तो I can say that I have given my best। ये मेरा best था, मैं इससे ज्यादा अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: जैसे मैं ये सोचती हूँ कि this is the best, तो मैं close हो गई।
0: Yes, that is ego। This is my best, this is my potential, this is self-respect। ना अब फर्क क्या आएगा कि यू विल एक्सेप्ट कि मेरी अभी इस समय, वर्तमान समय इतनी कैपेसिटी है, दिस इज माय बेस्ट एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट एंड यू आर कंटेंटेड, आप संतुष्ट हैं कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया। अब दूसरे ने आकर कोई और सुझाव दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज किया, अगर आप स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी में हैं, आप अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे कि मेरा आइडिया ये भी ठीक था, हो सकता है इनका आइडिया भी ठीक हो। इट्स एन ओपन माइंड। नाउ लीव इट कि किसका, वेदर इट्स अ डायलॉग बिटवीन यू एंड मी और वेदर समबडी एल्स इज इवेल्युएटिंग कि किसका आइडिया ज्यादा अच्छा था, लेकिन जहां आपने सोच लिया कि मेरा आइडिया ही सबसे बेस्ट था, तो आपने दूसरे के आइडिया को तो स्वीकार ही नहीं किया, आप अपने आइडिया को पकड़ कर बैठ गए, और आपका मेरे प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो ये होगा, अच्छा ये मेरे आइडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपना इन्होंने सोचा है, आज तक इन्होंने कुछ किया है, मैंने क्या, तो एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी। तो जहां खुद को नहीं रिस्पेक्ट किया, वहां दूसरे को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकते। नाउ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट मी ऑल्सो, बिकॉज सबसे पहले आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको फियर है, पता नहीं रियली मेरा आइडिया अच्छा है, इंटरनली बाहर ही बोलेंगे कि सच में अच्छा है या हो सकता है इनका ज्यादा अच्छा है, ओपन माइंडेड नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, मेरा अच्छा है, हो सकता है आपका भी अच्छा हो, लेट्स डिस्कस, हो सकता है इस बार एक्सेप्ट आपका किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरा गलत था। इट्स बहुत हानिकारक होता है जहां हम, अगर एक बार हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो हम सोचने लगे अच्छा इसका मतलब तो मेरा बेकार है, दैट इज ऑल्सो डैमेजिंग। ये लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, दोनों, दैट्स व्हाट वी सेड, यहां स्टेबल है, इधर चले जाना कि नहीं मेरा ही बेस्ट है, ये भी ईगो हो गया, और ये सोचना अच्छा तो मेरा तो कोई काम का ही नहीं है।

0: दूसरों का ही आइडिया हमेशा अच्छा होता है. अपने आइडिया की रिस्पेक्ट करना, अपने आइडिया पर विश्वास होना, अपने आप पर विश्वास होना, ये अच्छा है. लेकिन हो सकता है वर्तमान समय इसका अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा खराब है. अपने आप को डैमेज नहीं करना, दूसरे को भी डैमेज नहीं करना.
1: लेकिन ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, इससे मैं अपने आप को डिटैच कर सकती हूँ अपने आइडिया से भी, इवन इफ मैं जानती हूँ कि वो आइडिया अच्छा है. लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे इनकी अगर हम देखें, कि मुझे मालूम है कि वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मतलब मुझे पता है कि देयर इज नो नीड टू क्रिटिसाइज.
0: दैट्स फाइन, दैट्स द सिंपल थिंग. मुझे पता है, दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट. मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, वो बिना बात के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो फिर मैं हर्ट क्यों हूं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे डीप सेल्फ अवेयरनेस, वो ये है कि आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते हैं. अभी तक हम हर्ट क्यों बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में. आपने मुझे हर्ट किया, आपकी इस बात से मैं हर्ट हो गई, आपने ऐसा कहा तो मैं हर्ट हो गई. फंडामेंटल लॉ है, आप मुझे हर्ट नहीं कर सकते. कोई परिस्थिति मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, आप मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते. आपको जो कहना है वो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात को सुन लेती हूं, और उसके साथ मैं अंदर जो करती हूं, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था. आई हर्ट माई सेल्फ, यू डोंट हर्ट मी, आई यूज यू टू हर्ट माई सेल्फ, यू कांट हर्ट मी, आई एम सेपरेट, यू आर सेपरेट. मन को तकलीफ हो रही है ना, आप मेरे मन तक तो पहुंच ही नहीं रहे. आप मुझे फिजिकली हर्ट कर सकते हैं, आप मुझे फिजिकली उठ के मार लीजिए, आप मेरे मन को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं. Do you have the power?
1: No, it means like when I say something to you, like
0: you say na, to you say it. बोली हुए ना आपके, मैंने उसको स्वीकार किया. अब मैंने उसके साथ क्या किया, वो तो यहां होगा ना काम. आपने मुझे हर्ट किया, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है. This is deep sleep, and we go on living our life in this sleep, and that is why we are victim. उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया. Nobody can hurt me. I can use people to hurt myself. But don't blame other people. They're not hurting you. I am hurting myself. Self respect will be.
1: Who is being hurt? You know, like see, if you say something.
0: Again, it's the mind which is doing the work. मेरी सास ने ऐसा कहा, सबके सामने ऐसा कह दिया, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था ना. अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. You know, it's my work. ये मेरी थॉट है. अपने आप को क्या समझते हैं, खुद तो वो आता नहीं है उनको, खुद तो उनको बनाना नहीं आता. मैंने जो बनाया उसको सबके सामने वो
1: कुछ भी कर लूं, कुछ नहीं होगा,
0: ये कभी खुश नहीं होंगी. उन्होंने दो सेंटेंस कहे होंगे सिर्फ, हम कम से कम 200 सेंटेंस अपने आप को कहते हैं अंदर. यू नो, वर्बली आप दो या चार सेंटेंस से ज्यादा किसी को नहीं कह सकते, लेकिन जो मन बातें करता है अंदर अपने आप से,
1: वो घंटों बातें,
0: तो घंटों और कितने दिन, तो कितने सेंटेंस होते होंगे. एंड दैट इज कॉजिंग द पेन. द अदर प्रोसेस कुड बी, उन्होंने ये कहा, सी इट डजेंट मीन के हम निग्लेक्ट करें. सपोज यू आर द मदर इन लॉ, ओके लेट्स सी, ट्राई टू
1: इग्नोर कर रहे
0: हैं. आई कैन नॉट इग्नोर, बिकॉज हो सकता है कि आप, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप मुझे रियली सही मायने में करेक्ट कर रहे हो, या फिर आप जान पूछ के क्रिटिसाइज कर रहे हो. तो प्रोएक्टिव अप्रोच वुड बी, इन्होंने कहा कि ये काम ठीक से नहीं हुआ. लेट से आपने कहा ये कप ठीक से नहीं रखा हुआ, ओके. तो वेरी डिटैच्ड चेक, क्या ये कप ठीक से रखा हुआ था. अगर नहीं, आई एम सॉरी, ये कप ठीक से नहीं रखा था, एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी, यू नो, प्रोएक्टिव. अगर मैंने देख लिया कि वो कप ठीक से रखा हुआ है, इन्होंने जान पूछ कर सिर्फ सबके सामने मुझे वो करने के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया, तो फिर मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेरा कार्य था, जो मेरा रोल था, वो मैंने ठीक से प्ले किया. देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू चेंज इन दैट. आपकी कोई अपनी कॉम्प्लेक्सिटी थी अंदर, आप दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते, क्योंकि ये भी एक बिलीफ है कि दूसरे को नीचे दिखाएंगे तो हम ऊपर
1: हो जाएंगे.
0: विच इज द डीपेस्ट स्लीप. जितना हम नीचे दूसरे को गिराते हैं, हम बहुत ज्यादा नीचे उतरते जाते हैं, इवन इफ वी वांट टू सी कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, अगर यहां चार लोग और बैठे हो एंड आप सास हैं और आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो लोग पहले आपके बारे में सोचेंगे कि ये कैसी सास है, सबके फैमिली भी तो बोल सकती थी. तो वी थिंक कि ये लोग सोचेंगे कैसी बहू है ना, इसको कुछ करना नहीं आता, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. सब लोग सोचेंगे ये कैसी मदर है, ये बाद में भी तो बोल सकते
1: हैं. दिस इज अ रॉन्ग बिलीफ यू नो व्हिच वी एक्चुअली कंटिन्यू टू लिव.
0: वी कंटिन्यू टू डू इट. सो इफ आई द डॉटर इन लॉ नो इट, आई शुड बी ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना बंद कर देंगे लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि ज्यादा हम सोचने लगते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे. पहले इम्पोर्टेंट है मैं अपने बारे में क्या सोचूं. अगर मुझे पता है मैंने ठीक किया है, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दे दिया था. आप अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आएगा, मुझे आप पर रहम आता है. कि आप इतना इनसिक्योर फील कर रहे हैं मेरे सामने कि आपको इस तरह से करना पड़ रहा है. बट वी डोंट से दिस, वी नॉट टू से दिस टू दी अदर पर्सन. लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग दूसरे के लिए, एक जो आपने कहा ना सहानुभूति, कंपैशन, हम अंडरस्टैंड कर ले कि दूसरा इस टाइम ऊंचा नहीं उठ रहा, अंदर कोई डर है उसके.
1: लेकिन अगर हम कह देंगे तो अगेन हम हर्ट करने की कोशिश करेंगे.
0: ये कहना तो गलत हो
1: जाएगा. I'm saying, you know, this is
0: again hurt.
1: You know, it's a process of, you know, giving it back.
0: See, हम दूसरे का ईगो नहीं कम कर रहे हैं, हम अपना कम कर रहे हैं. हम किसी और को नहीं, क्योंकि अगर हमने कह दिया तो वो और डिफेंसिव हो जाएंगे. कहेंगे अच्छा एक तो गलती की, ऊपर से उसमें मेरी गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. सो यू विल रिएक्ट इवन मोर. इंटरनल प्रोसेस हमेशा अपना ही किया जाता है. किसी और का करने की कोशिश हमें नहीं करनी है. तो सेल्फ रिस्पेक्ट ये होगी कि आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक, मैंने जो किया वो भी ठीक. सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर होंगे तो स्थिरता रहेगी, अपने आप को भी समझ पाएंगे कि मैंने जो किया ठीक, और आप जो कह रहे हैं उसका भी सम्मान रखते हुए ये फील करेंगे कि आप भी अपने दृष्टिकोण से, क्योंकि व्हेन यू आर सिटिंग इन दैट सीट वो कप डिफरेंट लगेगा. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देख पाते. हो सकता ना यहां से ये ठीक लगा, मतलब ये एक बहुत स्थूल चीज है लेकिन हर परिस्थिति में, लेकिन आपके सीट पर बैठो तो ये गलत बैठा हुआ है, शायद थोड़ा सा ठीक करना पड़े. तो दैट्स रिस्पेक्ट.
1: अवेकनिंग की जो बात आपने की, क्योंकि सुप्त अवस्था की बात कर रहे हैं, जब तक हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे नहीं चले थे, जब तक हम ये जानते नहीं थे कि हम तो सोए हुए हैं एक्चुअली अंदर, और अंदर इतना अंधेरा हम सोचते हैं जहां की रोशनी होनी चाहिए. तो डीपेस्ट फियर्स की अगर हम बात करते हैं,
0: किसी भी मनुष्य में जो सबसे गहरा भय है वो है मृत्यु का. सबकॉन्शियस, वेरी डीप. ये नहीं कि हम बहुत सारा दिन उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इट इज फियर ऑफ डेथ. और फियर ऑफ डेथ इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द
1: बॉडी.
0: इस शरीर से इतना लगाव है. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली. हमारा इस शरीर से इतना लगाव है, जो हमने कहा अटैचमेंट जब होती है तो हम अपनी आइडेंटिटी को उसमें खो देते हैं. तो हम आज क्या समझते हैं, मैं कौन हूं? जैसे हमने कहा मैं, तो कौन सी पिक्चर सामने आएगी इस शरीर की? जबकि हम कहते हैं ये मेरा शरीर है, मेरा पांव आज दुख रहा है तो मेरा है ना, फिर भी मैं कहते हैं ये पिक्चर सामने आएगी. अपने अस्तित्व को इसके अंदर खो दिया. आई हैव लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी. आई थिंक आई एम द बॉडी. और इसीलिए मैं उस भय में जीती हूं कि कहीं मुझे कुछ न हो जाए. एक्चुअली मुझे कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो इस
1: बॉडी
0: शरीर को होगा, और वो होगा भी. तो कितना भी डर में रहे, जिस दिन वो होना है वो होना है, लेकिन अटैचमेंट है ना, तो वी लिव आवर लाइफ इन दैट फियर. डिटैचमेंट ये है कि मैं तो एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं. ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है, ये मैं नहीं हूं, मैं इस शरीर को यूज करती हूं. जैसे ये डिटैचमेंट आ गया, मृत्यु का भय फिनिश्ड. जहां मृत्यु का भय खत्म हो, और ये सिर्फ समझ के नहीं, अनुभव से होता है स्टेप बाय स्टेप. जहां मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, वहां धीरे धीरे बाकी सारे भय भी खत्म हो जाते हैं.
1: सिस्टर शिवानी, जो हम ये पूरा प्रोसेस बात कर रहे हैं जागने की, अभी तक जब भी हम बात करते थे जागने की, डिटैचमेंट की, आई द सोल को रियलाइज करने की, खुद को पहचानने की, तो मुझे लगता है बहुत से दर्शक और मैं भी कहीं ये सोचती थी कि ये थोड़ा जिंदगी के लेटर स्टेज में आना चाहिए ये पूरा जो भी प्रोसेस है. लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इसका मतलब तो हम जिंदगी जो है वो सोते हुए गुजार देते हैं.
0: सही बात.
1: हम अगर ये कह रहे हैं कि हम सुप्त अवस्था में हैं, तो अवेकनिंग कब होगी? अवेकनिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड अवेक?
0: द अर्लियर द बेटर. बचपन से ही अगर मुझे ये समझ मिल जाती कि मैं कौन हूं और ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये क्लैरिटी अगर हो जाती तो फिर अटैचमेंट बिल्डअप होने, अभी क्या हो रहा है, अटैचमेंट इतनी सारी बिल्डअप हो रही है, सो वी आर हैविंग टू गो बैकवर्ड. सारी बिल्डअप हो गई, फियर्स बिल्डअप हो गए, अब वी आर हैविंग टू डू द हार्ड वर्क,
1: अंडू
0: करना है.

0: लेकिन अगर बचपन से ही वो अंडरस्टैंडिंग होती मैं कौन ये मेरा, अटैचमेंट बिल्डअप नहीं होती ना. बचपन में हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो क्या क्या एक दूसरे को नहीं कहते, कहते हैं भूल जाते हैं, वी आर नॉट सेंसिटिव, जैसे हमने कहा हर्ट नहीं होते. जैसे जैसे बड़े होते हैं इतनी सारी चीजें, लेबल्स, पोजिशंस, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, जितने बढ़ते जाते हैं अटैचमेंट बढ़ती जाती है, मैं अपने अस्तित्व को खोती जाती हूँ, उतना ईगो. बच्चे में कोई ईगो नहीं होता, एब्सोल्युटली. इसलिए बोलते हैं गो बैक टू योर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, मतलब अपने ईगो को निकाल दो. बच्चे में कोई ईगो नहीं है क्योंकि उसके पास कोई अटैचमेंट नहीं है ना, उसने अभी तक उस तरह की कोई आइडेंटिटी नहीं बिल्ड अप की. जब हम बड़े हो जाते हैं हम कहते हैं उसने मेरे बारे में क्या कहा, वो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे, मैंने कुछ सुना ऐसा हो रहा था. क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है, एक इमेज बना ली है. मैं कौन हूँ? एक प्योर कॉन्शियस एनर्जी, वो भूल गया. इमेज बिल्डअप हो गई है, मैं एक शरीर हूँ, मैं एक वुमन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं बहुत अच्छी इंजीनियर, मैं एक ये इतनी सारी चीजें जो हूँ. तो हर टाइम आई एम लुकिंग फॉर ये कौन है जो मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है. अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि आपका काम अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा इमेज है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, तो जैसे ही किसी ने कुछ आया मेरे इमेज को डिस्टर्ब कर दिया. लेकिन अगर ये डिटैचमेंट बिल्डअप हो गई थी कि मैं एक एनर्जी हूँ, ये तो मेरा सिर्फ एक रोल है, ऐसा नहीं, ठीक है चेंज, लाइफ वुड बी वेरी इजी.
1: वंडरफुल. तो यू सेड ये जो अवेकनिंग है, ये जागरूकता है, ये जो जागना है, ये हमें कहीं ना कहीं जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए. और बचपन से ही अगर हम इस प्रोसेस पे चले तो अटैचमेंट होंगे ही नहीं. लेकिन अब इस वक्त बचपन में लौटना मुश्किल है, अंडू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या जागा जा सकता है और किस तरह जाग पाएंगे?
0: हम लोग सभी तो जागने की कोशिश नहीं कर रहे, नंबर वन हम लोग सब यही तो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी नींद से जागे.
1: बिल्कुल. तो अगली कड़ी में हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. जान लिया हमने बहुत कुछ अपने बारे में, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि जिस सुप्त अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुद को जानते हुए भी सोए हुए हैं, तो भाई जागना कैसा है ये जानने की कोशिश अगली कड़ी में जरूर करेंगे. लेकिन आपको बता दें कि अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन पर या फिर ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में फिर खुद को तलाशने के इस सफर को जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह से सुप्त अवस्था से हम जागृत अवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: जा रहा था?
1: नहीं,
0: आ रहा था।
1: नहीं नहीं, जा रहा था।
2: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
3: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगे, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगी, ये कहा तो

0: फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं? घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा, उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया, कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे की आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।

0: सब गुलमल है।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।

वतन का राग कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अत्याचार जब सीमाओं को लांघ जाए तो प्रतिकार की भावना का भड़क उठना लाजमी हो जाता है। फिरंगियों के अत्याचार ने भारतवासियों को आजादी के संग्राम में धकेल दिया था। लोग जान गए थे कि राजा या स्वामी से बड़ा स्वदेश होता है। कोई भी विदेशी उनकी जमीन पर बलपूर्वक रहे, ये उन्हें गवारा न था। स्वदेश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए वे अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो गए और आजादी के संग्राम का इतिहास क्रांतिकारियों की शौर्य गाथाओं से भर गया। ये संग्राम एक ऐसा सांझा प्रयास बना जो सांझे संकल्प और निश्चय के साथ लड़ा गया। इस संग्राम ने देश पर मर मिटने की बलिदानी परंपरा को विकसित किया था।

0: अभी आप सुन रहे थे आजाद कुंवर प्रताप चंद्र की एक रचना।
1: ये वतन
0: ये घटना उन दिनों की है जब क्रांतिकारी वीर सावरकर अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काट रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें टीबी का रोग हो जाने की आशंका जताई थी। सावरकर महीनों बिस्तर पर लेटे रहे और आहार के तौर पर वे सिर्फ थोड़ा सा दूध लेते थे। कभी कभी अपनी कमजोरी की हालात से परेशान होकर वे मौत की कामना किया करते। अपनी मृत्यु की गंभीर छाया में उन्होंने एक कविता लिखी थी। सब पे आती है सत की बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पर क्यों नहीं आती।

आ मृत्यु, आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी, तो आ ही जा अभी, मुरझाने के डर से डर जाए फूल, अंगूर भी रस नहीं, सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे, मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी। भरी आंसुओं की मदिरा बस

दुखी है। मैं वैद्य के लिए और अभी दिन यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो जो सब ऋषि ऋण के लिए श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके आश्रय कर ध्रुव पद का संतल्प उसके आम मृत्यु आ तो या आने के लिए निकली ही होगी।

और आचरण करके एक कर, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के थड़ थड़ और बढ़ आगे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली

मांस मांस ईंधन जैसी, और उसी रण यज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी। आह मृत्यु, आह मृत्यु, आ तू या आने के लिए निकली ही होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे तापसी नागराज और मुरलीधर नागराज। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम। परिकल्पना श्रीराम तिवारी। समन्वय संजय यादव। और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर. तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा.
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर. मैं ये सोच रहा था कि आपकी बात सुन के एक्सेप्टेंस तो कर लिया, टॉलरेट भी कर लिया, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेट के बाद आपने आपके एक लेक्चर में कहा था कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना करे, ठीक है, टॉलरेट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसको आप अच्छी सी साकार, जो आपकी भाषा में दुआएं दो, उसको गुड विशेस भेजो, उसको प्यार भेजो. इज दैट पॉसिबल?
2: व्हाट इज द अदर ऑप्शन? क्या भेजेंगे उसके अलावा?
1: कुछ भी नहीं भेजेंगे, बात ही नहीं करेंगे.
2: कुछ नहीं भेजे ये होता ही नहीं कभी.
1: अच्छा.
2: जिसके साथ कुछ
1: अनबन
2: बोलो या अनप्लेजेंट या समथिंग इवन बिगर देन दैट, किसी के साथ भी अगर ऐसा कनेक्ट बना
1: हम
2: है,
1: हम कहते हैं किसी ने हमको बिजनेस में धोखा दिया,
2: कुछ भी रिश्ते में, बिजनेस में, प्रोफेशनली, आज कोई डॉक्टर पेशेंट को धोखा दे देता है, गलत हो जाता है. तो जहां एक ऐसा कनेक्ट है, जहां ऐसा कुछ हुआ है, हम उनके बारे में न सोचें, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट दैम, फुल स्टॉप. ऐसा तो होता ही नहीं. अगर वो भी हो जाए कि हम उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, तो ब्यूटीफुल, क्योंकि कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा रही, जा नहीं रही. लेकिन ऐसा होगा नहीं कि हम सोचते नहीं, क्योंकि कुछ बना है कनेक्ट, कुछ हुआ है, मतलब थॉट तो आने ही वाली है. अगर हम अवेयर नहीं होंगे, हम कॉन्शियसली अटेंशन रखकर उस पर वर्क नहीं करेंगे, हम अपने पुराने संस्कार, पुराने ऑटोमेटेड वे ऑफ थिंकिंग से चलेंगे, तो हम कहेंगे नेचुरल है कि हम उनके बारे में बुरा फील करेंगे. उस समय पर हमारे आसपास चार लोग भी उस व्यक्ति के बारे में बुरा ही बोलेंगे, हमें गलत ही बोलेंगे. तो उस डायरेक्शन में जाना बहुत इजी हो जाता है. एंड मेनी पीपल विल मेक अस फील लाइक अ विक्टिम एंड से बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, बेचारे तुम्हारे साथ ऐसे हो गया. तो ये हमें समझना होगा कि हमें इस सिचुएशन को कैसे देखना है. एक ब्रह्मा कुमारी में हमारी बहुत सीनियर सिस्टर, जिनको हम दादीज कहते हैं, तो एक दादी जी, मतलब जो बहुत ऑलमोस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो वो दादी जी को ब्रेन में ट्यूमर की तरह कुछ हुआ. तो उनके इलाज के लिए एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में बहुत सीनियर न्यूरोसर्जन के पास गए. उनका नाम था डॉक्टर भगवती. एवरीथिंग सीम्ड कि वो ठीक हो जाएगी चीज, लेकिन सर्जरी के दौरान, जैसे हो सकता है स्पेशली ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई. एंड वो दादी जी, वो आत्मा ने शरीर का त्याग किया. इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे भाई बहने हैं, तो देर वॉज अ काइंड ऑफ वॉट वेंट रॉन्ग. एंड बहुत लोगों ने जैसे भगवान को भी, परमात्मा को भी, जैसे प्यार से नहीं कहते कि ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया. तो उस समय परमात्मा ने, जो ट्रांस मैसेंजर के थ्रू जवाब देते हैं, बहुत प्यारी लाइन बोली, स्टेज विद मी लाइक दिस, इट्स फिट. एंड जो लाइन भेजी वो थी, जो हुआ इसमें ना भगवान की गलती ना भगवती की गलती है.
1: वाह,
2: ये तो ड्रामा में उस आत्मा का हिसाब किताब ऐसा था, ये होना ही था. मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं अराइज होना चाहिए उसके ऊपर.
1: हाउ नाइस.
2: बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए, ना भगवान की गलती, क्योंकि हम भी भगवान

0: आपको बहुत बार कह देते हैं ना
1: डॉक्टर की,
0: ना किसी आत्मा की या किसी परिस्थिति की गलती, ये ड्रामा में ऐसा होना ही था क्योंकि उस आत्मा का वैसा हिसाब किताब था. विच मीन्स कि इवन इफ लाइक इन दिस केस, इवन इफ वी से देयर वॉज अ लिटिल मिस्टेक और देयर वॉज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग, लेकिन वो जो गलती भी होती है वो गलती भी इसीलिए होगी क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट में वो गलती होकर मेरे साथ वैसा होना, वो मेरी डेस्टिनी में मैं आत्मा लिख कर लाई हूं, इसलिए उसको किसी की गलती नहीं कहेंगे. लाइक से फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बैठे हैं और आपका पैर या आपकी कुर्सी ऐसे बीच में आ गई, मतलब आप गलत बैठे. यू नो यू शुड हैव टेकन केयर कि आप कैसे बैठे, और आपकी किसी गलती से इफ आई ट्रिप, तो इमीडिएट रिएक्शन पुराना जो आएगा वो क्या, आपकी गलती से वो गिर गए, आपको ऐसे नहीं बैठना चाहिए था. परमात्मा कहेंगे हमें, नहीं, तुम्हारा आज उस तरह से गिरने का हिसाब किताब था. अगर वो ना होता तो सामने वाला कुर्सी भी वैसे रखता ही ना. इतना एक्यूरेट है वो ड्रामा.
1: ये एक्सेप्टेंस है,
0: ये एक्सेप्टेंस सिर्फ
1: अंडरस्टैंडिंग,
0: ये एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने आप को ये करने के लिए नहीं है, ये एक फैक्ट है. कार्मिक अकाउंट जब समझ में आ जाए तो समझ में आ जाता है कि ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है कि ये ऐसा होना ही था. जस्ट द अदर डे वाज टॉकिंग टू समवन, जो एक जगह से निकले 5 लोग कार में एंड जस्ट टर्न किया ऐसे थोड़ा सा आगे जाके एंड उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. उस एक्सीडेंट के अंदर उस कार में 3 लोगों की डेथ हो गई. इज अ यंग मैन, इज अ फ्रेंड, 30-35 years old, उसकी वाइफ, पेरेंट्स. वाइफ वॉज प्रेग्नेंट, सो वो जो बच्चा गर्भ में था, तो ये व्यक्ति बच गया. तो जब ये व्यक्ति जो बच गया, वो सारा दिन क्या कहता है और क्या सोचता है, अगर हम 2 मिनट बाद निकले होते तो, अगर हमने एक टर्न ऐसे के बजाय ऐसे लिया होता तो. उस दिन उसने इतना तक कहा, कहता अगर मैं रुक के एक ग्लास पानी पी लेता तो.
1: और उस वक्त किसी ने बोला भी होगा, एक मिनट रुको सुनो, तो वो नहीं रुका होगा फिर.
0: यस yes. तो हम कितना सोचते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली वैसे थॉट्स आएंगी, लेकिन कार्मिक अकाउंट हमें सिखाता है कि आप जाएंगे ही एकदम एक्यूरेटली अपने हिसाब किताब के पास, क्योंकि वो वैसा ही एग्जैक्टली होना है. होना ही है, आपकी मन बुद्धि बिल्कुल एक्यूरेटली उसी डायरेक्शन में चलेगी, बिकॉज यू हैव टू वॉक टूवर्ड्स योर डेस्टिनी. आपको जाना ही होगा उस तरफ. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा कुछ नेगेटिव है, कई बार कुछ एकदम बहुत ब्यूटिफुल और पॉजिटिव होता है, जिसके लिए हम कहते हैं अरे अगर हम 1 मिनट लेट निकलते तो हमें ये ना मिलता. लेकिन हम 1 मिनट लेट नहीं निकल सकते थे क्योंकि हमें वो चीज मिलनी ही थी. इसीलिए क्वेश्चन मार्क नहीं उठ सकता, इसीलिए वाई, हाउ, वेयर, व्हेन ये उठ नहीं सकता, क्योंकि एवरी सीन इज एक्यूरेट. इसी तरह से हर आत्मा का संस्कार भी एक्यूरेट. जब ये 2 पॉइंट्स इतना इतना कूट के भर जाएगी, तब हर सीन को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट.
1: जब मुझे फिल्म ज्वाइन करना था, मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था, तो एक बार मैं किसी से मिलने गया, वहां कोई मुझे मिला कि वही भाई एक आदमी है फलानी फलानी जगह लंदन से है, वो नए एक्टर ढूंढ रहे. तो मिलने किसी और से गया था, उससे मिलके कोई और निकल रहा था बाहर डोर से, उससे जो मिलके निकलता था उससे मैं बोला क्या हाल है कैसे. मैंने बोला मैं तो स्ट्रगल करके पागल हो रहा हूँ. बोला तू उधर जाके क्यों नहीं मिल लेता. और फिर वहां से मेरा करियर बन गया.
0: दिस इज व्हाट इट इज. और अगर हम अपनी जीवन को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखे ना, ऐसे कितने सीन्स आए होते हैं, कितनी चीजें जिसके लिए हम चेक करेंगे, हम कहेंगे अरे ऐसे कर दिया उस दिन अचानक, ऐसे कर देते तो. लेकिन जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, जो प्लेजेंट सीन्स होते हैं, उनको देख के सोच के तो अच्छा लगता है कि अरे ऐसे किया ना तो एकदम से ऐसे हो गया. लेकिन जो थोड़े से नॉट प्लेजेंट सीन होते हैं, उनमें भी हमें सेम इक्वेशन को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वो उतना ही एक्यूरेट है. जैसे आपने एक बार कहा था कि मैं अपने भाई को गाड़ी में बिठाया और निकल

0: डिस्प्ले और एक्सीडेंट हो गया तो मन तो कितने साल क्वेश्चन करेगा उस चीज को।
1: जाने से पहले यहां से एक सामने रॉड जिसको पकड़ के गाड़ी में बैठते स्लाइडिंग डोर्स थे साइड के उसके, वो ऐसे मैंने लगवाई फिट हाथ पकड़ने के लिए, क्योंकि ये अधूरी लग रही थी, पता नहीं क्यों निकल गई थी, क्यों गिर गई थी। तो मैकेनिक को मैंने बोला यार ये लगा दे, उसी से जाके वो माथा लगा उनका। वो मुझे गिल्ट, क्यों लेके गया गिल्ट, रास्ते में एक मिनट मैं क्यों नहीं गाड़ी चलाया गिल्ट, गिल्ट और दर्द और पेन कम से कम 3 साल रहा।
0: 3 years।
1: हाँ, 3:45 बजे रात को एक्सीडेंट हुआ था। हर रात 3:45 बजे मेरी पूरी बॉडी भीग जाती थी, कुर्ता और लुंगी पहनता था उस जमाने में, वो सारे ऐसे लगता था कोई बारिश में से आ रहा हूँ। तो मेरी वाइफ इतनी थक गई थी कि एक बाल्टी रखती थी और एक जोड़ा रखती थी रोज, तो बाल्टी में मैं बकेट में गीले कपड़े डालता था, नए पहनता। 3 साल के बाद ठीक हुआ।
0: दिस इज व्हाट इट इज। ये हमें, अब जैसे आपने कहा ना, कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था, कपड़े भी नहीं उठाए, फोर्सफुली गाड़ी में डाला। उसके बाद जो आपने कहा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो हैंडल जो ऐसे ही था, इट कुड हैव स्टेड लाइक दैट ना,
1: डिक्की में पड़ा था,
0: पड़ा था ना, लेकिन उसको भी निकाल के लगाया
1: और उसी से जाके उनको यहाँ लगा
0: ना। जब हम इन चीजों को देखते है ना, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, बट द फैक्ट ये है कि हम एक्चुअली वो सब कुछ करते हैं सो दैट वी आर गोइंग टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट। इट्स एज इफ हम खुद ही करते हैं वो सारा कुछ, बिकॉज वो एग्जैक्टली वैसे होना ही था। वो डंडा यहां लगना है, इसलिए आपको वो थॉट आएगा ही कि वो बार को लगाने के लिए।
1: 2.5-3 साल के बाद कब ठीक हुआ मालूम है सिस्टर? जब मुझे फैमिली ने आके बोला कि बार बार एवरी डे मेरा भाई गुरु नानक जी को बोलता था, मंदिर में बोलता था कि सुरेश ओबेरॉय मेरे 2 बच्चे संभाल ले, मेरी जान तू छोड़ा, मेरे को इस दुनिया से उठा। देखो वो मांग भी रहे थे ये बात को, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं उनके बच्चों की परवरिश करूं और कोई भाई नहीं करे। इट्स काइंड ऑफ अ विल।
0: राइट, इट्स काइंड ऑफ जो होने वाला है ना, वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। ये भी तो है, जो एक्चुअली होने वाला है वो भी आत्मा को पता लगने लग जाता है। जो आत्मा सोचती रहती है वो सोचती भी इसलिए क्योंकि वो होने वाला है।
1: ऐसा नहीं है कि सोचने से मैनिफेस्ट हुआ।
0: हाँ नहीं,
1: हो सकता है, दोनों भी करेक्ट है ना।
0: सोचने से अगर मैनिफेस्ट होता है, इस केस में नहीं, बिकॉज इट्स एन एक्सीडेंट। सोचने से
1: मैं आपके बारे में गलत सोचूं, आपको ज्यादा सही सोचो जाता है तो
0: ना, आप मेरे बारे में सोचे वो रीच होती है वाइब्रेशन, लेकिन आप सोच के एक एक्सीडेंट कैसे क्रिएट करेंगे?
1: एक्सीडेंट नहीं,
0: हमने सोच के एक एक्सीडेंट क्रिएट किया ना इस केस में।
1: नहीं, उन्होंने सोचा था ना बार बार कि मुझे जाना है उठा।
0: थॉट आती ही इसीलिए है कि मुझे जाना है। सी, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। आर थॉट्स हमारी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट में वो लिखा हुआ है। वो थॉट्स हमें आनी भी शुरू हो जाएंगी, हमारा मन उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारी थॉट्स हैं, हमारे प्रेजेंट बिहेवियर्स। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हम कभी भी उसको पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते अच्छा ऐसे इसलिए हुआ। बट वेन वी अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, जो आपने कहा गिल्ट रहा, स्ट्रेस या जो भी वो इफेक्ट,
1: शॉक
0: ट्रॉमा, उस सिचुएशन का इतना है कि डीप स्लीप में भी
1: रात के 3:45 बजे
0: एग्जैक्टली उस टाइम पे माइंड उस एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसीलिए जो आपने कहा ना पूरा गीला भी हो जाना, क्योंकि इतनी एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है कि उसका इफेक्ट पूरे बॉडी पर भी पड़ रहा है एग्जैक्टली उतने बजे डीप स्लीप में। तो आप सोचे कि इस ट्रॉमा का कितना डीप इम्पैक्ट था माइंड के ऊपर, और वो इसलिए था क्योंकि आत्मा उस समय इस ज्ञान की वो पॉइंट को अप्लाई नहीं कर पाती कि उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट के हिसाब से उस आत्मा को इस समय और इस तरह से जाना ही था।
1: ब्रांड न्यू जापानीज कार।

0: जो कहते हैं ना एवरी थिंग इज प्री डेस्टिंड,
1: सेकेंड टू सेकेंड माइन्यूटेस्ट,
0: कहते हैं ना सब कुछ प्री डेस्टिंड है। तो जब प्री डेस्टिंड होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कितनी एक्यूरेटली लिखी होगी। अगर हम दो लोग यू नो डिसाइड करें कि हम इतने बजे इस जगह पर मिलते हैं, ठीक है, डिसाइड करके फोन करके फिर निकलने के टाइम फिर फोन करके आप निकले क्या मैं भी निकल रही हूँ सब, इतना कोऑर्डिनेट करके भी निकले ना तो भी हम इतनी एक्यूरेटली नहीं मिलते जितना ऐसे टाइम पे मिलते हैं जब ये चीजें होती हैं। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी है एक बहुत बड़े लेवल की हो रही है। वी हैव टू वॉक टूवर्ड्स आर कार्मिक अकाउंट वेदर इट्स अ प्लेजेंट वन और वेदर इट्स एन अनप्लेजेंट वन। हम जाएंगे, वील वॉक टूवर्ड्स इट, लेकिन एक्सेप्टेंस मीन्स जो हुआ वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही था अकॉर्डिंग टू द सोल्स कार्मिक अकाउंट।
1: बट दैट सोल वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉन्टेड इट, वो चाहता था कि सुरेश फोरे के पास बच्चे,
0: क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट में वो लिखा था कि अब उसे यहाँ नहीं कहीं और जाना है।
1: बट वो चाहते थे ना कि वो जाके मेरे साथ रहे बॉम्बे में पले, लेकिन मैं नहीं जाऊं, मुझे जाना है।
0: तो उस आत्मा के कार्मिक अकाउंट में जो लिखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब हम ऐसी चीजें, और ये हरेक के जीवन में हुई है सिचुएशंस, बातें ऐसी हरेक के जीवन में हुई है, सिर्फ अब एक्सेप्टेंस मीन्स उसको वहीं की वहीं फुल स्टॉप लगाना, उसके ऊपर लंबा चिंतन नहीं करना। जब ये हुआ अगर आप उस समय बार बार अपने आप को ये समझाते, ये ज्ञान समझ में आता उस समय, इसमें मेरी गलती नहीं,
1: मैं तो बार बार कोसता था अपने आप को,
0: दैट इज लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। देखो एक चीज,
1: भगवान को कोसता था,
0: वही जो आपको शुरू में बताया ना, जो परमात्मा ने कहा न भगवान की गलती न भगवती की गलती। तो ये अब हमें, हम सबको अपने जीवन में ऐसे इंसिडेंट्स देखने हैं, छोटे छोटे भी अगर देखें, बड़े भी हैं अगर किसी के जीवन,
1: बहुत बड़ा
0: हरेक के जीवन में होते हैं, एंड दे आर नॉट नेसेसरीली ऑलवेज अनप्लेजेंट, बहुत सारे प्लेजेंट सिचुएशंस ऐसी होती हैं।
1: सिस्टर इसको मैं अनप्लेजेंट बोलूं कि प्लेजेंट बोलूं कि मुझे इतना दुख हुआ 3 साल में कि मैं ढूंढता रहा कि कौन है भगवान, दुनिया कौन है, मैं कहा हूं, और मेरा ईगो इतना हाइट पे था, इतनी हाइट पे था कि हाईएस्ट ईगो इन द वर्ल्ड जिसके किसी को बोलो, और गुस्सा ईगो अहंकार भाव वो कुछ कुछ था, वो सारा टूट के क्रैश होके गली गली गांव गांव में गुरुओं तक ढूंढता गया, ज्ञान ढूंढता गया।
0: इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है जिसमें परिस्थिति में कल्याण नहीं दिखता, कि परिस्थिति में कुछ अच्छा नहीं हुआ, जबकि ज्ञान की लाइन कहती है ड्रामा की हर सीन में कल्याण है, लेकिन परमात्मा इसीलिए सिखाते जब बाहर कोई कल्याण नहीं दिखता तो भी उस परिस्थिति में ये कल्याण है कि यू विल कम आउट स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। वो परिस्थिति आपकी किसी शक्ति को बढ़ाने के निमित्त जरूर बनेगी, ये कल्याण है उस सिचुएशन के।
1: मैं स्पिरिचुअलिटी में आया इसी वजह से,
0: दिस इज इट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम अपनी जीवन की इन सीन्स को देखेंगे हमें दिखेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी हुई है।
1: दैट शॉक, दैट ट्रामा, दैट वो झटका मेरे लिए जरूरी था।
0: लेकिन ऑल्सो बट वी हैव टू सी नाउ कि जो आपने कहा कि 3 साल तक उसका डीप इम्पैक्ट कितना माइंड एंड बॉडी पर पड़ा, जब हम ये देखते हैं हमें ये समझ में आता है कि सीन को रेजिस्ट किया मतलब नहीं एक्सेप्ट किया कि ये क्यों हुआ ऐसे, तो उसका इफेक्ट कितना लंबा चला।
1: नर्व्स ब्रेकडाउन हो गया था मुझे
0: 3 साल तक, इतना दर्द क्यों? क्योंकि हम उस सीन के डिनायल मोड में चले, हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सीन क्यों हुआ था, तो क्वेश्चंस गिल्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड द पेन, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ओनली पेन ऑफ द डेथ ऑफ अ पर्सन, उतना दर्द होता, लेकिन ये दर्द इतना लंबा क्यों चला? बिकॉज हमारे पास ड्रामा की, ज्ञान की वो पॉइंट नहीं थी कि ड्रामा की हर सीन हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार एक्यूरेट है। ये लाइन इतनी पावरफुल है कि हमें हर सीन में फुल स्टॉप लगाना सिखा देती है, कोई प्रश्न उठते नहीं उसके बाद चित्त के ऊपर, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों, वी कैन गो ऑन क्यों हुआ, इवन लाइक यू सेड गिल्ट, कई बार

0: अपने आप से हमारे से कोई गलती हो जाती है. एक्सेप्टिंग सिचुएशंस, एक्सेप्टिंग पीपल, व्हाट अबाउट एक्सेप्टिंग माय ओन सेल्फ, हमारे से भी गलतियां होती हैं.
1: मैं कहाँ एक्सेप्ट किया अपने आप को? अपने आप को तो पूछता रहा, तू क्यों किया ऐसा, तू क्यों फोर्स किया, क्यों लाना था.
0: अपने आप से भी अगर कुछ हो जाए, बड़े से बड़ी गलती हो जाए, ये तो खैर गलती नहीं कहेंगे इसको, ये तो अनइंटेंशनल है, लेकिन गलती भी अगर हो जाए, हमें उस गलती के बाद आगे मूव होना है. कई बार एक गलती के बाद हम इतने गिल्ट में चले जाते हैं कि उसके बाद आगे मूव होने में बहुत डिफिकल्टी होती है. क्यों हुआ ये मेरे से? अपनी गलती को भी एक्सेप्ट, अपने संस्कार को भी एक्सेप्ट, अपनी आदत को भी एक्सेप्ट. जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको चेंज नहीं कर सकते.
1: एक्सेप्ट करेंगे तो चेंज करने का सवाल कहाँ पैदा होता है?
0: एक्सेप्ट करेंगे मीन्स इस क्षण तक ये मेरे अंदर था, इट्स फाइन, आई कैरीड इट. एक्सेप्ट क्यों है, क्यों था, मैं हूं ही ऐसा, मैंने ऐसा ही किया, मैं बार बार ही ऐसे करता हूं. ये करने से हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है. एनर्जी डिप्लीट होने से जो फ्यूचर में हम सोल्यूशन लाना चाहते हैं कि आगे से मुझे नहीं करना है, उसके लिए जो ताकत चाहिए वो गिल्ट क्रिएट करके ही खत्म हो जाती है. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्टेंस ओनली मीन्स, एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि सिचुएशन वैसे के वैसे रहेगी, मैं वैसे के वैसे रहूंगा, लोग वैसे के. एक्सेप्टेंस डजंट मीन दैट. एक्सेप्टेंस मीन्स मेरे मन में अपने लिए, दूसरे के लिए, सीन के लिए कोई नेगेटिव थॉट, कोई क्वेश्चन मार्क, कोई भी प्रश्न अब नहीं होगा. मेरा मन अब सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन पर वर्क करेगा कि हाँ ये ऐसा है, अब क्या करना है. हाँ मेरे अंदर ये आदत है, अब क्या करना है. सिचुएशन हाँ ऐसी है, अब बताओ क्या करना है.
1: दैट मीन्स सोल्यूशन.
0: दैट मीन्स नो वेस्टेज ऑफ थिंकिंग,
1: ओनली सोल्यूशन,
0: ओनली सोल्यूशन. तो कितनी एनर्जी बची हमारी, कितनी एनर्जी बची. मेरे अंदर ये बहुत गलत आदत है, हाँ है, तो आज से क्या करना है. लाइक दिस, मेरे से ये इतना बड़ा पाप हो गया, हो गया, आगे से क्या करना है. दिस इज इट. लेकिन क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ करने से वो गिल्ट में इतनी पावर डिप्लीट होती है, एंड फिर हम जो सोल्यूशन के लिए पावर चाहते थे वो पावर हमारे पास नहीं होती है. इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू एक्सेप्ट. ये जो एक्सेप्ट करने की शक्ति है, ये हमें हमेशा, जो आपने पिछली बार कोटेशन पढ़ी, हमें सोल्यूशन और फ्यूचर में एक चेंज लाने के लिए उस डायरेक्शन में लेके जाएगी. और रेजिस्ट जो हम करेंगे वो हमेशा हमें पास्ट में अटका के रखेगी. जैसे आपने कहा ना तीन साल वो चला, तो एक्चुअली आप तीन साल उस ट्रॉमा के पास्ट में ही अटके हुए थे.
1: तब तक जहाँ ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट तकलीफ हो गई, क्या कहते हैं उसको, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम्स हुई.
0: ओनली बिकॉज ऑफ दिस वन लैक ऑफ नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि हमने उस चीज का पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरी वजह से हुआ. वेयर एज द ट्रूथ वॉज, उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट ऐसा था, मतलब वो आत्मा की स्क्रिप्ट में ही वो लिखा हुआ था. हमारी स्क्रिप्ट एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है ना, उनके स्क्रिप्ट में अगर लिखा था कि उन्होंने ऐसे जाना है, तो उनके साथ आपके स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि गाड़ी में आपने उनको बिठाना है. कार्मिक अकाउंट क्यों बोलते हैं?
1: दो साल तीन साल तक जब लोग देख रहे थे, तो एक डॉक्टर हमारे साथ शूटिंग कर रहे थे, एक डॉक्टर लागू एक्टर, उन्होंने बोला सुरेश आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और मैं ज्यादा कोई रूड नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम जो इतना सोच रहे हो ना, तुम क्या भगवान हो? तुम क्या अपने आप को समझ रहे हो कि तुम स्थिति बना सकते हो, सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो, किसी के कर्म क्रिएट कर सकते हो, किसी की जिंदगी लिख सकते हो?
0: और भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. कोई आत्मा तो खैर कुछ भी नहीं कर सकती उसमें, लेकिन परमात्मा कहता है मैं भी नहीं रोक सकता था वो चीज होने से, क्योंकि वो चीज हरेक के कार्मिक अकाउंट के अनुसार ही होनी है. इसीलिए मुझे वो लाइन हमेशा इसलिए बहुत

0: रहती है, ना भगवान की गलती, ना उस इंसान की गलती। वो ड्रामा में कार्मिक अकाउंट के अनुसार सीन एक्यूरेट था, फुल स्टॉप। तो ये पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, जिसको हम कहते हैं समाने की शक्ति, इसके बारे में मुरली में परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा की महावाक्य वो एक बार सुनते हैं। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी, मतलब थॉट में भी, किसी की बातों और भाव का आंशिक रूप भी समाया ना हुआ हो, मतलब मन में कोई भी किसी की बात का, किसी परिस्थिति का एक भी थॉट ना आए। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहा जाता है। मतलब कोई अकल्याण का बोल भी बोले, हमारी स्थिति इतनी स्टेबल है, इतना अनइन्फ्लुएंस्ड होंगे हम, इतना एक्सेप्ट कर लेंगे उनको कि वो अकल्याण का बोल जैसे था ही नहीं, तो वो उस स्टेज को कहते हैं विश्व कल्याणकारी स्टेज। मतलब अपना भी कल्याण किया, अनेकों का भी कल्याण किया।
1: ये भी तो विश्व ही है,
0: ये भी विश्व ही है, वेरी ट्रू। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को भी गुण में बदल दे, क्योंकि अवगुण का इन्फ्लुएंस ही नहीं हुआ हमारे ऊपर। जैसे आपने शुरू में कहा कि कोई हमारे साथ गलत करे उसको भी दुआएं दे, कि उस अवगुण का हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाले स्वयं कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सिर्फ समाने की शक्ति से, पावर टू एक्सेप्ट।
1: ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। ओम शांति।
2: Everything that is happening to us was predestined. Based on our past karma, this consequence was destined for us. We cannot blame God or any soul for what happens to us. We had chosen this consequence and it is our responsibility. We cannot create questions on any scene happening in our life. Every scene unfolding before us is accurate. It is fixed in the script of the drama of our life. How we respond to that scene now is our present choice. Accepting the scene of life's drama means understanding that everything is happening accurate. This is exactly how it was meant to be. Our thoughts, other people and situations will manifest in that way to make it happen the way it is meant to be. Even if we have made a mistake or have a difficult sanskar, we need to accept it. Accept it means understand we have carried the sanskar. Understand the mistake that happened was a karmic account, and now focus on what to do next. Guilt and regret depletes soul power. Accept and move towards transformation.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-6 6 0.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफ स्टाइल कहते हैं। लाइफ स्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफ स्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माई लाइफ स्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वांट, सो देन इट्स माय चॉइस, सो नाउ इट्स योर चॉइस। आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल ओ जमूरे। एक दिन तेरे मेरे ख्वाब होंगे पूरे, ऐसी कोई बात कर चल ओ जमूरे। रह जाए सब दिल थाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सब

0: मेरे लिए?
1: अगर आप कबूल करें तो।
0: मेरी जरूरत नहीं कि इनकार करूं, आइए। लेकिन अचानक मुझे कैसे इस बात समझ गया?
1: आपने मुझे जिंदगी का मुकाबला करने की हिम्मत दी, बदले में ये बहुत छोटा सफर।
0: खोल के देख सकता हूँ।

0: नहीं।
1: शालिनी देवी, अगर आप मुझे अमर बनाना चाहती हैं तो ये आपकी भूल है। अगर आप मेरे साथ इसलिए मुलाकात बढ़ाना चाहती हैं कि मुझ में आपका अमर नजर आता है, तो आप समझ सकती हैं कि मेरे आत्मसम्मान को कितनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं आपको अमर की याद दिलाता हूं तो आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। हाँ, अगर अमर को बुलाने में आपकी कुछ मदद कर सकूं तो मुझे अपना साथी समझिए।
0: गलती से मैं आपको प्रतोष।

मुझे तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ।

बाबू जी तुम ऐसा दिल पाओगे कहाँ, कहाँ जाते हो।

मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना, मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।

बनती बात पुरानी नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तान।

के यहाँ नजदे उठा नजरा देख के। जब उसकी मोहब्बत में गुम है तू वही सूरत नजर आएगी चार तू कौन क्या है मन के सिवा ये।

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

他咋着把不着心开是那个地心你敢好没